0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी।

एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 39 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आप जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 6:02 पर आपके साथ ज्योति आनंद रहेंगे प्रोग्राम सुप्रभात लेकर। 7 बजे हिंदी में मुख्य समाचार आप सुनेंगे। 7:02 से आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली पूजा शुक्ला के साथ। और 8:02 पर ज्योति आनंद रहेंगी आपके साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। 9 बजे समय रहेगा हिंदी में मुख्य समाचारों का। और 9:02 पर प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर आपके साथ रहेंगी पूजा शुक्ला। ग्यारह बजे का समय हिंदी में मुख्य समाचारों का। और 11:02 पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ आपके साथ रहेंगी ज्योतिका। 12 बजे अंग्रेजी में न्यूज़ हेडलाइंस आप सुनेंगे। और 12:02 पर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक में आपके साथ तलीहा रहेंगी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

नमस्कार, 6 बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाग्ट द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है, जिसमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री भी शामिल है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। और आज देश भर में जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: और अब वक्त है स्पॉन्सर प्रोग्राम सत्य वचन का।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय FR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब हमारी नजरें अपने पिता परमेश्वर की ओर उठती हैं, तो वो हमारे मन की आंखों को खोलकर अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है कि वो

हम सब गुनहगार इंसानों से कितनी मोहब्बत करता है, और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो अनायास ही हमारे होंठों पे उसकी महिमा और आराधना प्रखर होने लगती है और हम उसका गुणगान ऊंचे स्वर से करने लगते हैं।

जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब हम अपने प्रभु की आराधना सच्चे मन से करते हैं तो हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है, निराशा भी आशा में बदलने लगती है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारा प्रभु महान और अति पवित्र है। स्वर्ग में मौजूद सब स्वर्गदूत भी दिन रात उसकी महिमा करते रहते हैं और ऊंचे स्वर से हालेलुया पुकारते रहते हैं, जिसका मतलब होता है सदा सदा उसकी महिमा होती रहे।

दोस्तों, जब हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं और जय जयकार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु की कृपा और अनुग्रह हम पर बना रहता है। प्रभु का सामर्थ्य हाथ आप पर सदा बना रहे। हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन दोस्तों, आप हमें मैसेज या फोन करके ये अवश्य बताएं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते यानी गुरुवार हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा।

0: नमस्कार, सुप्रभात, सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर। आप सुन रहे हैं 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर किसे ज्योति को कार्यक्रम सुप्रभात, और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, और हिंदू परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के कारागार में हुआ था। और भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जन्माष्टमी सिर्फ श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि उनके जीवन से सीख लेने का अवसर भी है। वो सारी क्या सीख हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे एक और खूबसूरत से इस गाने के बाद।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

हम सब के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा कृष्णा होता है जो हमें समय समय पर वो सीख देता रहता है और नहीं तो हम श्री कृष्ण की जीवन से ऐसी बहुत सारी सीख हैं, बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि जन्माष्टमी सिर्फ श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं बल्कि उनके जीवन से सीख लेने का अवसर भी है। और आज वो अवसर हमें फिर से मिला है ताकि हम उन सभी चीज़ों को याद कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें। तो धर्म का साथ कभी भी ना छोड़ें, मुश्किल परिस्थितियों में भी कभी उम्मीद ना खोएं, हमेशा उम्मीद बनाए रखें, अपने एक्शंस अपने कर्म करते रहें, परिणाम की चिंता बिल्कुल ना करें क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है नहीं। बुद्धि और धैर्य से समस्याओं का सामना करें, प्रेम करुणा और मित्रता को महत्व दें। और इसीलिए जन्माष्टमी का सबसे सुंदर संदेश है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का रास्ता विजय की ओर लेकर जाता है। और एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बात कि कृष्ण हमें ये नहीं सिखाते कि ज़िंदगी में मुश्किलें ही नहीं आएंगी, वो सिखाते हैं कि मुश्किलों के बीच भी अपना धर्म, अपना धैर्य और अपनी दिशा हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ। यूँ ही बने रहे मेरे साथ और भी बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए।

0: सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी में भी हमें जादू और ये मैजिक फील होता है जब हमारे जीवन में कोई कृष्णा होता है या कृष्णा की वो सारी लेसन्स और लर्निंग्स हमारे जीवन में हम समझ जाते हैं और अपने जीवन में उसे पल पल हम अप्लाई करते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई कृष्णा नहीं है तो आप अपने कृष्णा खुद बन सकते हैं, अपने मन को खुद काबू कर सकते हैं। बस ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन्हें अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे ना तो ज़रूर अपने जीवन में उतार सकते हैं। और ये तो आप मानते हैं कि कितना भी हम सोच लें, सपोज़ हम सोचें कि हमें भूख लगी और खाना हमें मिल जाए, हमारे पेट में चला जाए, तो क्या चला जाएगा? नहीं ना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कर्म, यानी कि आपको रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा, आपको खाना बनाना भी पड़ेगा, उसके बाद अपने हाथों से निवाला बनाकर उसे अपने मुंह में डालना भी होगा, तभी आपका पेट भरेगा। सिर्फ सोचते रहने से और अच्छी अच्छी डिशेज़ को सोचते रहने से आपके मुँह में सिर्फ पानी आएगा, पेट नहीं भरेगा। तो कर्म तो करना पड़ेगा, इसलिए कर्म पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके रिजल्ट्स पर नहीं। और हमें पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, बस वही हमारे नियंत्रण में है कि अपना हम कर्म करते जाएं। और सबसे बड़ी बात कि जब भी मुश्किल समय आए ना तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेशेंस रखिए, क्योंकि सिचुएशंस कभी हमारे पक्ष में हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती हैं, मगर हमारा बिहेवियर, हमारा रिएक्शन और हमारा पेशेंस, ये सब हमारे हाथ में है। और एक और बात, सही समय का इंतज़ार करना भी बुद्धिमानी है। हर लड़ाई को आप उसी समय नहीं लड़ सकते हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और कभी कभी तो मौन और धैर्य सबसे अच्छी रणनीति होते हैं। तो ये वो कृष्णा की कुछ सीख हैं, कुछ लेसन्स हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, और इसके बारे में हम इसीलिए बात करते हैं ताकि हमें ये याद रहे, और जब हम समय समय पर भूल जाते हैं तो हम इसको फिर से याद करके, इसके बारे में बात करके अपने जीवन में उतार सकें। आप सुन रहे हैं सुप्रभात, आपके जीवन में आपके कृष्णा कौन है? अगर आप चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं सुप्रभात ज्योति के साथ।

ना ही बेखबर रहेंगे अगर कृष्णा की सारे लेसन अपने जीवन में उतारते जाएंगे। कभी कभी सबसे ज्यादा थकान हमें काम से नहीं अपने विचारों से होती है। एक ही बात पर बार बार सोचना, पुरानी बातों को याद करके परेशान होते रहना और भविष्य को लेकर डरते रहना। ऐसे में खुद से कहिए कि जो मेरे हाथ में है मैं उस पर ध्यान दूंगा। मन को दिशा मिल जाए तो रास्ते आसान लगने लगते हैं, और अगर दिशा भटक जाए तो मन बेचैन रहता है। और हमेशा हमेशा चाहे कुछ हो जाए, नो मैटर वॉट, सही के लिए हमेशा खड़े रहने का साहस रखिए। हर कोई आपकी बात से सहमत हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई बात सही है तो सिर्फ लोगों के डर से अपनी वो सही सोच मत छोड़िए, क्योंकि कई बार ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी लड़ाई पता कौन सी होती है? दूसरों से नहीं होती है, अपने डर से होती है। और बहुत सारे खूबसूरत मैसेजेस आपके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि कौन है आपके जीवन के कृष्णा। पंकज लिखते हैं हमें महाराष्ट्र से, और लिखते हैं कि मेरे जीवन में मेरे कृष्णा हैं, पता है कौन? आकाशवाणी के सभी आरजेज जो हर अच्छी बातें करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं और सही मार्गदर्शक होते हैं, और दिन की शुरुआत में ही अच्छे विचार के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा सुप्रभात कार्यक्रम सुनता हूँ। इस बात पे तो मैं कहूँगी सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। और बिल्कुल सही बात है, आपसे बातें करके हमें भी वो प्रेरणा मिलती है, और हम भी कोशिश करते हैं कि इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में उतारें, और उतारने की कोशिश करते रहेंगे। और एक और मैसेज हमारे साथ जुड़ा है, कृष्ण जन्मोत्सव की पूरी FM टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और लिखते हैं कि भागवत गीता कृष्णा जी की जीवन जीवनी है, उसे हर किसी को ग्रहण करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं आलोक पवार और मिन्नी, आपका दिन भी शुभ हो। जन्माष्टमी का आज उत्सव है, और कृष्णा को अपने जीवन में हम उतारेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपके जीवन में कोई कृष्णा नहीं है तो आप अपने कृष्णा खुद बन सकते हैं, और उसके लिए बस आपको अपने मन को काबू करने की ज़रूरत है।

आज का दिन इतना खूबसूरत है, आज जन्माष्टमी है और इसीलिए फिर से आपको मैं बधाई देती हूँ आज के दिन की। और काफ़ी लोग आज के दिन व्रत रखते हैं और बहुत सारे उत्सव होंगे, तो आप पूरा दिन उसे एंजॉय कीजिएगा। बस चलते चलते आपको ये बोलना चाहती हूँ कि शायद यही बात सबसे खूबसूरत है कि प्रेम कीजिए लेकिन अपनी शांति को कभी मत खोइए। रिश्ते ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा है लेकिन आपकी ज़िंदगी, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं। किसी को प्यार कीजिए, सम्मान दीजिए लेकिन अपनी खुशी की चाबियाँ पूरी तरह किसी और के हाथ में मत दीजिए, अपने पास रखिए। और एक बहुत प्यारा सा मैसेज, मेरा कृष्णा मेरी सुख शांति भरोसा निरंतर प्रयास सच्चाई के साथ रहना, ये है और ये उसे महसूस करते हैं। लिखते हैं हमें अनिल शर्मा जी सरिता विहार से। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सभी बधाई भी दे रहे हैं और गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं और साथ ही साथ जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आसाम से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और बस अब आपको बता देती हूँ कि बस कुछ देर में आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR पूजा शुक्ला के साथ 7:02 से। तो बस मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के सेकेंड सेगमेंट में। तब तक आप बस यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई।

लीजिए पेश है अब तक के मुख्य समाचार। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाग द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ नागरिक अधिकारी शामिल होंगे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चाइना मास्टर सुपर 750 के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेउक यू से खेलेंगे। मौसम विभाग ने आज मध्यप्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश का अनुमान है। और आज देशभर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

पग पग पर मिले कान्हा का साथ, सिर पर रहे हमेशा मुरलीधर का हाथ, आपके परिवार पर सदा बाल गोपाल की बनी रहे कृपा। भाई बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का ये पावन जन्मोत्सव है, हमारे जीवन में प्रेम लाए, सुख समृद्धि लाए, सकारात्मकता लेकर आए। कान्हा की मुरली की धुन हमारे जीवन के हर संकट को दूर करे और घर आंगन को खुशियों से महकाए। तो अपने बाल गोपाल को सजाएं प्यार से और उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएं और उनके प्यारे प्यारे मुखड़े का उनकी बलाएं ले। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

जी करे देखता रहूं। अपने नंदलाला को देखकर, अपने कान्हा को देखकर, अपने बाल गोपाल को देखकर आज सब यही कहेंगे। तो बस जन्माष्टमी की इस धूम में खो जाइए। और वैसे भी इस बार जन्माष्टमी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग लेकर आई है, और सबका कहना यह है कि ऐसा संयोग करीब 15 वर्ष बाद आया है। तो मंदिर जाइए, नंदलाल के दर्शन कीजिए, धूमधाम से एक दूसरे को शुभकामनाएं दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ सुनते रहिए FM रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ये पागलपन बेहद जरूरी है अगर कुछ बड़ा करना है। इसी जिद के साथ, इसी दीवानगी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ काम करते हैं, अपना नाम करते हैं, और जो ऐसा काम करते हैं इतिहास में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाता है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। तो आज का दिन जो है, यानी 4 सितंबर का दिन है, वो उनके नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1888 में बंबई से, जो इस समय मुंबई है, स्टीमर जहाज एसएस क्लाइट के जरिए महात्मा गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड की अपनी पहली ऐतिहासिक समुद्री यात्रा उन्होंने शुरू की थी, और उनकी उम्र उस समय मात्र 18 वर्ष की थी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऐसे ही एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन लगातार आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। मेरा नाम पूजा शुक्ला, ये गीत आपके लिए।

दिल से दुआ आपके लिए, दिल से दुआ उन सभी के लिए जिनका है आज जन्मदिन। और इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो आज है बुद्धिजीवी शिक्षा शास्त्री दादा भाई नौरोजी जी का भी जन्मदिन। जी हाँ, 4 सितंबर को मनाया जाता है। 1825 को गुजरात के नवसारी में उनका जन्म हुआ। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय एशियाई थे। 3 बार 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को उन्होंने संभाला। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। तो नमन दादा भाई नौरोजी को। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

प्यार मोहब्बत इश्क में दिल की दीवानगी या पागलपन तो अच्छा लगता है, लेकिन जीवन यात्रा में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो गंभीरता से लेनी चाहिए। उन्हीं में से एक अहम विषय है नेत्रदान। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जाए, कॉर्निया की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करना, अधिक से अधिक लोगों को मृत्यु के बाद नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेत्रदान में पूरी आंख नहीं बल्कि केवल कॉर्निया का दान या प्रत्यारोपण किया जाता है, और मधुमेह या उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं, और नेत्रदान हमेशा व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही होता है। तो खुद तो आप जागरूक हैं ही, और आइए हम भी संकल्प लें कि इस पूरे पखवाड़े के दौरान हम दूसरों को भी जागरूक करें। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

ये दीवानगी यूं ही बनी रहे। एफएम रेनबो पर दिल से दिल का कनेक्शन आपका और हमारा यूं ही चलता रहे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

जैसे शायर की शायरी उसे बेजोड़ बना देती है, ऐसे ही हमारा स्वास्थ्य हमारे जीवन को कर जाता है लाजवाब। और स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है? जी, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है अच्छा पोषण। और इसी बात पर फोकस करता है 1 से 7 सितंबर भारत में हर साल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को संतुलित आहार, सही पोषण के प्रति जागरूक करना, कुपोषण को दूर करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। शरीर के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, इनके महत्व को समझाना, क्योंकि हम सब जानते तो हैं ना कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मजबूती के लिए ज़रूरी है, विटामिन्स मिनरल्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है, और फाइबर हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, और हेल्दी फैट ऊर्जा और कोशिकाओं के सही कामकाज के लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम तो ये बात समझते हैं, लेकिन जो नहीं

0: जरूर होगा जादू बच्चों के स्वास्थ्य पर भी, वो स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे, बस जंक फूड से उन्हें दूर रखिए। कर क्या सकते हैं हम, घर पर हेल्दी विकल्प रखें, बच्चों की पहुंच में हमेशा स्वस्थ चीजें रखें, जैसे मखाने, फल, भुने हुए चने या घर का बना ताजा नाश्ता। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आप सुन रहे हैं, इसके सफर को आगे बढ़ाएंगे अब ज्योति आनंद, लेकिन 9 बजे फिर जुड़िए मेरे साथ, दिल के तराने, गाने नए पुराने, तब तक दीजिए इजाजत, पूजा शुक्ला का नमस्कार।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ESO-05 का सफल प्रक्षेपण किया। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस माह राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतिज्ञा का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। आज देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चाइना मास्टर सुपर 750 के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के लीच

विवेक लियो से खेलेंगे। और मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश का अनुमान है। तो ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

Hey listeners, good morning. जिंदगी ने आज फिर एक नया पन्ना खोला है और अब इस पन्ने पर क्या लिखना है ये फैसला आपका है. सुबह की शुरुआत शिकायत से नहीं शुक्रिया से कीजिए. नजर बदलेगी तो नजारा भी बदल जाएगा. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपका फिर से स्वागत करती हूँ. मैं हूँ ज्योति आपके साथ. 8:09 हो चुके हैं और मौसम आज बड़ा प्यारा सा हो रखा है. यहाँ पर बात करेंगे मौसम की. बस यही सुनते रहे मेरे साथ. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर.

हाँ जी, यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया है। और वैसे बताऊँ आपको कि दिल्ली NCR में आज मौसम का फ्री ट्रायल चल रहा है, धूप भी मिलेगी, बारिश भी। मौसम खुद इतना कंफ्यूज है कि खुद उसे नहीं पता है कि अगला अपडेट क्या होगा, मगर मैं आपको अपडेट ज़रूर बताऊँगी। आसमान में बादल हैं, हवा में नमी है और लोगों के चेहरे पर फिर वही सवाल कि भाई छाता लें या चश्मा। वेल, अपना ख्याल रखना है तो सभी चीज़ें लेकर चलें, एक बैग ले लीजिए, उसमें सब चीज़ें डाल दीजिए अपनी ज़रूरत की, तो उसमें आपका क्या जाएगा। फिलहाल मेरे यहाँ पे खिड़की के बाहर मौसम बहुत खूबसूरत है, काले काले से बादल छाए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। बस उस टाइम पे आपके हाथ में होना चाहिए चाय का गर्मा गर्म प्याला, जो मैं तो एक बार तो पी चुकी हूँ, एक बार फिर पीऊँगी शो के बाद। और आप अपना चाय अपने साथ ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और जैसा मैंने बताया कि आज बारिश भी होगी और कहीं कहीं बादलों से बहुत ज़्यादा आसमान घिरा रहेगा, तो बस आप रेडी रहिए। और मौसम और टेम्परेचर बताऊँ आपको तो 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो बस यूँ ही सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, मौसम को इन्जॉय करते रहिए और ले लीजिए चाय का एक बढ़िया सा प्याला।

आकाशवाणी रेनबो के साथ यूं ही बने रहिए 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर। ज्योति आपके साथ है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, और बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है बस एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी।

0: और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर टीएमटी बार।
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार।
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

जब हवा साफ होती है तो सांस लेने में कितना मजा आता है ना, हमें प्यार हो जाता है उस मौसम से, जब खुली साफ सुथरी हवा हमारे लंग्स में जाती है और हमें तसल्ली होती है कि हाँ हम बीमार नहीं पड़ेंगे। दिल्ली एनसीआर की हवा को बेहतर बनाने के लिए सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका फोकस है दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत हैं उन पर इसका ध्यान रहेगा। और इस अभियान में बहुत सारी चीज़ें खास होने वाली हैं, जैसे कि दिल्ली में स्कूल्स और जो RWA के जरिए लोगों में इसकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की समस्या पर विशेष जागरूकता बढ़ाई जाएगी, हरियाणा में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी जोर दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में हर महीने करीब 16,000 वाहन मालिकों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है और राजस्थान में भी होगा। इसके लिए पराली प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सर्दियों में बढ़ने वाले जो वायु प्रदूषण को कम करना है और लोगों को प्रदूषण रोकने में सक्रिय भागीदार बनाना है। बहुत सारे हमारे ऐसे काम होते हैं कि हम उसमें भागीदार बन जाते हैं, हमारे भी कोई ऐसे काम है जो प्रदूषण को बढ़ाते हैं, तो बस सिर्फ इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, साफ हवा की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सबकी भागीदारी से ही दिल्ली NCR की जो हवा है ना वो साफ होगी और हमें सांस लेने में मजा आएगा। और सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और इस अभियान को सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक चलाया जाएगा।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। और अगर आपको डीयू से जुड़ी दो इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहिए तो सुनते रहिए गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर। और जो ये डीयू के अपडेट्स है ना, ये पता है मिलेनियल्स के लिए भी है और जेनजी के लिए भी है तो बस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है, तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके साथ फिर से जुड़ती हूँ 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
8: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
9: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
10: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं और सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग रियल एनसीआर विद मी ज्योति। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि डीयू से जुड़ी दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं और एक मिलेनियंस के लिए है और एक जेंजी के लिए है। तो सबसे पहले जेंजी के लिए बताती हूँ, आने वाले एक साल में 10,000 स्टूडेंट्स को AI की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है और ये डीयू ने कोलैबोरेशन किया है AMD कंपनी के साथ और इसका मकसद ये है कि AI टैलेंट्स को तैयार करना। एक MOU साइन हुआ है इसके लिए और जैसे कि हम सब जानते हैं कि AI हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से आ चुका है और उसके बिना अब काफ़ी सारे काम नहीं होते हैं। और जैसा हम कहते थे ना कि AI काफ़ी सारी जॉब्स ले लेगा, तो AI जॉब्स नहीं लेगा अगर आप AI से कुछ करना सीख जाएंगे, AI से AI की टूल्स आप अच्छी तरह से चलाना सीख जाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मकसद सिर्फ AI को पढ़ाना नहीं है बल्कि छात्रों को AI एप्लीकेशंस को बनाना, उन्हें टेस्ट करना और उन्हें लागू किस तरह से करना है उसका अनुभव देना है। और इसके लिए जो इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से मजबूत कड़ी बनाने वाला ये कदम बताया जा रहा है। तो DU अब सिर्फ AI पढ़ाने पर नहीं बल्कि AI बनाने वाले युवाओं की नई पीढ़ी तैयार करने पर जोर दे रहा है, जो आई थिंक जेंजी को बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्ट करता है ये चीज़, ये टॉपिक वो सीखना चाहते हैं और सीख भी रहे हैं। तो सिर्फ AI को यूज़ मत कीजिए बल्कि AI किस तरह से आप नए नए ऐप्स बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, उस पर भी जोर दे रहा है। तो ये ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और इसका मकसद वही है कि एक साल में कम से कम 10,000 तक DU स्टूडेंट्स को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी।

हम आपके साथ हैं फलक तक, दुनिया के हर कोने में, दुनिया की हर हिस्से में आप कहीं भी हमें सुन सकते हैं हमारे ऐप न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। और फिलहाल एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि आई थिंक बहुत से लोग जानते हैं, शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं कि डीयू की एक स्कीम है, कॉम्पिटेंस एनहेंसमेंट स्कीम CES, और ये शुरू हुई थी जब डीयू के 100 साल पूरे हुए थे, उस मौके पर इसे शुरू किया गया था। और सबसे अच्छी बात है स्कीम की कि इसमें ना, मतलब अगर आप संस्थान के छात्र नहीं हैं बल्कि आप कोई सीनियर सिटीज़न हैं या फिर आप होम मेकर हैं, तो भी आप किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं या नई स्किल्स सीख सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताती हूँ, www.admissions.uod.du.ac.in। इस पर क्लिक करके, इस पर लॉगिन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसके तहत यूनिवर्सिटी में किसी भी उम्र के शख्स को किसी भी कोर्स से 1 से 2 पेपर पढ़ने का मौका मिलता है, और इसके लिए DU आपको सर्टिफिकेट भी देता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है जिन लोगों की पढ़ाई छूट गई है या फिर भी सपना रखते हैं कि DU में ही पढ़ना है, DU से ही कुछ करना है, क्योंकि DU में पढ़ने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं। तो शायद अपने ज़िंदगी में DU से पढ़ाई ना की हो और आपका यह सपना रह गया हो, तो अब इसमें एज कोई लिमिट नहीं है। तो बस आपको ये बताने का मकसद यही था कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें किसी भी उम्र के लोग अपनी पसंद के 1 या 2 पेपर पढ़ने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और दाखिला लेने वालों को DU के रेगुलर स्टूडेंट के साथ बैठकर पढ़ने का मिलेगा खास मौका। और ये तो आप जानते हैं कि जो आज की जनरेशन है वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत फास्ट और बहुत स्मार्ट है, तो शायद उनसे भी हमें कुछ और सीखने को मिले। तो आप में से जिनका ये सपना है ना कि मुझे DU में पढ़ना है, तो अब एज कोई लिमिट नहीं है, आप इस स्कीम के तहत उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए जल्द से जल्द।

एक बार आज और दूर जान वाली है। वैसे मेरे तो जाने का टाइम हो चुका है, 8:57 हो चुके हैं और पूजा शुक्ला आ चुकी हैं लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो आगे का सफर उनके साथ आप जारी रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर इन्हीं एयरवेव पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और आपने और हमने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है।

लीजिए पेश है अब तक के मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर 2020 एशिया कप के सेमीफाइनल्स में पहुंची। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

छोटी सी जिंदगी, नन्ही सी जिंदगी, हंस के जियो, भुला के सारे गम, दिल से जियो, अपने लिए ना सही तो अपने लिए जियो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम सब सिर्फ ये सोचकर कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दूजे को खो दें। वक्त मिले तो देख लेना रिश्तों के किताब खोलकर, मेरी चाहत हर रिश्ते से लाजवाब मिलेगी, और ये दावा है हमारा क्योंकि हम हैं एफएम रेनबो, जो है स्टेशन ऑफ द नेशन। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल की तराने, गाने नए पुराने।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
8: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

आंखें भूरी हों, नीली हों, काली हों, चेहरा सफेद हो, गोरा हो या सांवला, आप अगर कहीं निकल रहे हैं तो अपने चेहरे को बचाकर ढक कर निकलें, और ख़ास तौर पर अगर आप अस्पताल जा रही हैं तो। जी हाँ माइयों बहनों, जैसा हम सब जानते हैं कि दिल्ली में इस समय स्वाइन फ्लू की दस्तक है और संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। हर रोज़ तकरीबन 80-100 नए मामलों की पुष्टि हो रही है, तो ऐसे में जब भी आप बाहर निकलें तो भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें। अस्पताल जा रहे हैं तो डॉक्टर्स ने साफ एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं और ये गुजारिश की है कि अस्पताल अगर आप जा रहे हैं तो अपने चेहरे को कवर करके जाएं, मास्क ज़रूर ज़रूर ज़रूर पहने और सुनते रहें FM रेनबो जो है स्टेशन ऑफ द नेशन। फिलहाल कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, एक छोटे से ब्रेक के बाद एक शानदार पुराना गीत आपके लिए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: करता रहूं।
1: बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, हमें सुनते रहिए और हम एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई नई मेट्रो लाइन पर पैदल यात्रियों के लिए पुल अंडर पास का जल्द ही जाल बिछेगा। जी हाँ, मेट्रो स्टेशन के अंडर पास और फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल सिर्फ मेट्रो के यात्री के लिए नहीं होगा बल्कि पैदल यात्रियों के लिए भी सड़क पार करने में काम आता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो फेज चार में निर्माणाधीन गोल्डन लाइन जो कि तुगलकाबाद से एरोसिटी और मजेंटा लाइन एक्सटेंशन जो कि जनकपुरी पश्चिम से आर के आश्रम है, 13 स्टेशंस पर FOB और अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण पूरा होने पर जो बाहरी रिंग रोड और मेहरोली बदरपुर जैसे जो व्यस्त रोड हैं जहां पर पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करना बहुत बहुत बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपका जीवन यूं ही आसान सुगम बना रहे, यही कामना हमारी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल की तराने, गाने नए पुराने, मैं पूजा शुक्ला आपके साथ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और मेरे बाद रेनबो पर जो जो आने वाले हैं आप उन्हें अच्छे अच्छे तरीके से पहचानते हैं, जैसे कि आप सुनेंगे तालिहा को। तालिहा आने वाली हैं अब कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर लेकर, तो उनके साथ जुड़िए और गीत संगीत का आनंद लीजिए। ज्योति सिंह आपको मिलेंगी 11 से 12 कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पूजा शुक्ला का नमस्कार, लेकिन आप सुनते रहिए FM रेनबो जो है स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, यू ट्यून इन टू द मैचलेस म्यूजिक आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। दिस इज योर होस्ट तालेहा खान वेलकमिंग यू टू द शो। On the auspicious occasion of Janmashtami, warm greetings to everyone celebrating today. Let's begin this Friday morning.

0: खेल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: Welcome back after the break. You're tuned into the Matchless Music Hour on Akashwani Rainbow Broadcasting on 102.6 MHz. And now it's time for another beautiful track in the voice of Frank Sinatra from 1966. This one went on to become one of his signature songs. The track is called Strangers in the Night.

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: 1971 फिल्म दिस वॉज खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों फ्रॉम खेल खेल में फीचरिंग द मच लव पेयरिंग ऑफ ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह एंड ऑन दैट नोट इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है. ये है जनगणना का अभियान. यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है. साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है. जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है. सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है. घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है. वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे. साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है. आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी. आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं. जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है. यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है. बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं. इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती. समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है. साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है. साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है. आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है. जनगणना 2027 को सफल बनाए.
0: Welcome back after the break. You're tuned into the Matchless Music Hour on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. And now it's time for us to bring back memories of an iconic song, which was the song that celebrates musical memories themselves. This is The Carpenters with the 1975 classic, Only Yesterday.

0: from the 1973 movie Heera Panna. This was Panna Ki Tamanna, a lovely blend of Kishore Kumar and Lata Mangeshkar voices with R.D. Burman's composition. And with that, it's time for us to take a short break.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: Welcome back after the break. You're tuned into the Matchless Music Hour on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. And from one memorial harmony to another, let's turn to the unmistakable sound of the Bee Gees with the track called Too Much Heaven.

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्य संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालय ने कहा, जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ के उपलक्ष में इस माह राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतिज्ञा का आयोजन किया जाएगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री के साथ 2 और विमान भेजे। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीयों के DNA प्रोफाइलिंग करवाएगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं क्रिकेट की अगर बात करी जाए तो क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और मैं हूं ज्योतिका। और अब अगले एक घंटे तक आप मेरे साथ हैं बॉलीवुड ट्रेल्स में, जहां हम फॉलो करते हैं बॉलीवुड की वो ट्रेल्स जो हमें ले जाती हैं नए गानों, नए चेहरों और नए सिनेमा की तरफ। और दोस्तों, आज का दिन तो और भी खास है, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के इस पावन मौके पर आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जी की तरह मैं चाहती हूं कि आपकी जिंदगी में प्रेम हो, मुस्कुराहट हो, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी पॉजिटिविटी हो। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। तो बस इसी फेस्टिव मूड के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये बॉलीवुड ट्रेल्स का सफर। देखिए, सितंबर की शुरुआत हो चुकी है तो बॉलीवुड का कैलेंडर भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। एक्शन है, थ्रिलर है, कॉमेडी है और कुछ बड़े स्टार्स की मच अवेटेड फिल्म्स भी लाइनअप में है, जैसे मिर्जापुर द मूवी, अक्षय कुमार सैफ अली खान की जोड़ी, करीना कपूर खान की दायरा और कुणाल खेमू की वाइब। इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज का ये जो बॉलीवुड ट्रेल्स है बहुत ही मजेदार होने वाला है, नए अपडेट्स के साथ और ऑफ कोर्स बहुत सारे बॉलीवुड म्यूजिक के साथ। बने रहिए बस मेरे साथ यहाँ, क्योंकि कुछ ही देर में पूछूंगी बॉलीवुड सरताज बनने का वो बड़ा ही खास सवाल।

What a beautiful and energetic start of the day. दोस्तों, एक कहानी जो OTT पर शुरू हुई और धीरे धीरे पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई, अब वो पहुंच गई है बड़े पर्दे पर. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स विद मी ज्योतिका, ओनली ऑन FM रेनबो. तो फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर मिर्जापुर द मूवी की, जो आज 4 सितंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. जी हाँ, आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस मूवी ने दे दी है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में दस्तक. छुट्टी का दिन है, चेक करो कहाँ शो अवेलेबल है. तब तक मैं आपको कुछ और बताती हूँ. देखिए, पंकज त्रिपाठी हमारे कालीन भैया, अली फजल हमारे गुड्डू, और दिव्येंदु जो मुन्ना के नाम से बड़े फेमस हुए, हम सबके फेवरेट बन गए. ये आपको बिग स्क्रीन पर भी बहुत अच्छे लगेंगे, बड़ा मजा आएगा. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रवि किशन और जितेंद्र कुमार भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा है. वैसे देखा जाए तो OTT से थिएटर तक का ये जो ट्रांजिशन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है. जिन कैरेक्टर्स को ऑडियंस ने अपने फोन्स पर, टेलीविजन स्क्रीन पर इतना प्यार दिया है, अब उन्हीं को लार्जर देन लाइफ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस में देखना फैंस के लिए डेफिनेटली एक नया एक्सपीरियंस होगा. और जब बात हो पावर, एटीट्यूड और थोड़े से स्वैग की, तो अगला गाना भी इसी मूड में है. बने रहिए सिर्फ यहां मेरे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में.

0: possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स विद मी ज्योतिका. देखिए, अब इमेजिन करो, एक तरफ अरशद वारसी और ऊपर से डबल रोल का ट्विस्ट बॉलीवुड ट्रेल्स में. आप सोच नहीं सकते आज क्या क्या होने वाला है. जी हाँ, बॉलीवुड में डबल रोल्स का तो अपना मजा होता ही है. कभी कॉमेडी, कभी कंफ्यूजन और कभी सस्पेंस. आज 4 सितंबर को, जी हाँ, आज हॉलिडे के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रिलीज हुई है जीवन भीमा योजना, जिसमें अरशद वारसी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म को अभिषेक डोगरा ने डायरेक्ट किया है और कास्ट में संजीदा शेख भी हैं. फिल्म कॉमेडी, ड्रामा और थ्रिलर एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आई है. और अरशद वारसी की एक खासियत तो हमेशा से रही है कि वो सीरियस सिचुएशन हो या कॉमिक मोमेंट, उनकी डायलॉग डिलीवरी और टाइमिंग जो होती है ना स्क्रीन पर, एक अलग एनर्जी ले आती है. इसीलिए जब स्टोरी में कंफ्यूजन और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो तो अरशद का जो प्रेजेंस है नेचुरली क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है. अब इसी लाइट को और इसी केयरफ्री मूड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. इमेजिन करो ना यार, बड़ा पर्दा, अरशद वारसी और डबल रोल. आर यू सीरियस?

पता सच कहाँ है ना, बॉलीवुड की भी एक्चुअली यही स्टोरी है, एक कहानी खत्म तो दूजी, मतलब एक फिल्म खत्म होती है तो दूजी आ जाती है, कहानी भी डिफरेंट होती है ना। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेगल्स और अब बात एक ऐसे पेयरिंग की जो नेचुरली क्यूरियोसिटी ना क्रिएट कर ही देती है। अक्षय कुमार के साथ इमेजिन करो सैफ अली खान, ओहो हो, सोच के ही मजा आ जाता है ना। दोनों हैवान में साथ नजर आने वाले हैं जो 11 सितंबर इसी महीने रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड। फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं और कास्ट में बुमन ईरानी, सयामी खेर, श्रेया पिलगोंकर और शारिब हाशमी भी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रियदर्शन ने कहा है कि इस फिल्म में वो अक्षय कुमार को एक डार्कर और मोर विलेनियस अवतार में प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हमेशा तो हम अक्षय कुमार को देखते हैं ना उछलते कूदते या तो एक्शन करते हुए या हमें हंसाते हुए, इमेजिन यहाँ पर अगर अब वो विलन का किरदार निभा रहे हैं तो ओहो मज़ा ही आ जाएगा। और अक्षय और जो सैफ हैं इनकी पेयरिंग भी काफ़ी वक्त बाद स्क्रीन पर वापस आ रही है। दोनों की प्रीवियस कोलैबोरेशन आपको अगर याद हो सो इट वाज टशन 2008 में जो आई थी, है ना। फिल्म के सॉन्ग जो थे आपकी रंगीरिया, सैफ के कैरेक्टर का एक कंपैरेटिवली कलरफुल और म्यूजिकल साइड भी इस मूवी में सामने आएगा। तो एक तरफ नॉस्टैल्जिया है और दूसरी तरफ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये रीयूनियन स्क्रीन पर क्या लेकर के आ रहा है। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत जल्द पूछूंगी वो सवाल जो आपको बना सकता है बॉलीवुड सरताज। सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स विद मी ज्योतिका।

दोस्तों, एक्टर से डायरेक्टर बने कुणाल खेमू अब अपनी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म वाइब लेकर आ रहे हैं, जो 18 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। कुणाल ने फिल्म को लिखा है, डायरेक्ट किया है और वो खुद भी आपको यहां एक्टिंग करते नजर आएंगे। फिल्म में कुणाल के साथ प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर जैसे नाम जुड़े हैं, लेकिन यहां पर प्रीति जिंटा को मेंशन करना पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वाइब में वो मैडम एच का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। एक कमांडिंग फिगर है जो हार्दिक और बग्स को एक डेंजरस मिशन में लेकर आती हैं। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो आई एम प्रीटी श्योर आप इस मूवी का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, प्रीति को हमने रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी में तो बहुत बार देखा है, लेकिन एक्शन उनके लिए कंपैरेटिवली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी रही है। कुणाल खेमू ने भी ट्रेलर लॉन्च पर कहा कि कास्टिंग के वक्त उन्हें लगा कि ऑडियंस ने प्रीति को एक एक्शन करते हुए पहले कभी नहीं देखा है, और इसी अनएक्सपेक्टेड क्वालिटी ने कास्टिंग को और इंटरेस्टिंग बनाया। प्रीति ने ये भी बताया कि फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस फिजिकली डिमांडिंग थे और उन्होंने इसका क्रेडिट फिल्म की एक्शन टीम को दिया है। तो एक फेमिलियर मच लव्ड फेस को एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में देखना फैंस के लिए डेफिनेटली स्पेशल होगा। प्रीति जिंटा की वो फेमिलियर स्क्रीन एनर्जी तो है ही, लेकिन इस बार उसके साथ एक्शन और अथॉरिटी का एक नया फ्लेवर भी जुड़ चुका है, और टाइटल भी आपको समझ आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वाइब। तो अब बॉलीवुड ट्रेल्स की वाइब को भी थोड़ा अपबीट करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ, और इस धुन के उस पार मैं आपसे पूछूंगी वो सवाल।

दोस्तों, अब वक्त है आपको ये जानने का कि सिर्फ आप बॉलीवुड सुनने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पर, है ना, अपनी बॉलीवुड नॉलेज को टेस्ट करने भी तो आए हैं, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेल्स में अब बारी है हमारे बॉलीवुड सरताज सवाल की। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, आज का सवाल जुड़ा है अरशद वारसी से। इस महीने यानी सितंबर 2026 में उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें वो डबल रोल में नजर आएंगे, दो अलग कैरेक्टर्स लेकिन एक ही चेहरा। और ये फिल्म सितंबर, जी हाँ, जैसे मैंने कहा, इस महीने रिलीज हो रही है। मेरा सिंपल सा सवाल है कि इस फिल्म का क्या नाम है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। अगर आपको जवाब पता है तो देर मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अपना करेक्ट आंसर एफएम रेनबो को 9868107070 इज द नंबर। क्या है उस फिल्म का नाम जिसमें अरशद वारसी डबल रोल में इस महीने नजर आएंगे, और सही जवाब देने वाले लकी लिसनर को मिलेगा आज का टाइटल बॉलीवुड सरताज। चलिए देखते हैं बॉलीवुड के असली सरताज कौन है भाई।

वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी स्मॉल ब्रेक और बॉलीवुड ट्रेल्स का सफर अब यहाँ से जारी करते हैं। एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जिसकी कॉम्बिनेशन ही काफी इंट्रीगिंग है। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन और डायरेक्टर हैं मेघना गुलजार। फिल्म है दायरा, एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर जो 18 सितंबर को इस महीने वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है। करीना और पृथ्वीराज फिल्म में पुलिस ऑफिसर्स के रोल्स में आपको नजर आएंगे और ये करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की पहली ऑन स्क्रीन पेयरिंग भी है। मेघना गुलजार के सिनेमा में जनरली कैरेक्टर्स और सिचुएशंस को काफी लेड ट्रीटमेंट मिलता है, तो एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर में इन दोनों को परफॉर्म करते देखना किसी ट्रीट से कम तो नहीं लग रहा है। कभी कभी फिल्म की एक्साइटमेंट सिर्फ स्टोरी से नहीं बल्कि उस क्रिएटिव टीम से भी आती है जो उस कहानी को स्क्रीन तक लेकर आ रही होती है, और दायरा डेफिनेटली उन्हीं फिल्मों में से एक लगती है। बने रहिए सिर्फ यहाँ बॉलीवुड सरताज के सवाल का जवाब। ओहो हो, बहुत ज्यादा मिल रहा है मुझे।

इस म्यूजिक को सुनते ही लगता है करीना कपूर खान की ये फिल्म एक बार दोबारा देखी जाए। बॉलीवुड में हमेशा ऐसे ही होता है ना। अब एक और फिल्म की आपसे बात करते हैं। फोकलोर इंस्पायर्ड स्टोरीज का स्पेस काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसी दुनिया में आ रही है द वन, द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल्स में आपको नजर आएंगे। ये फिल्म 25 सितंबर, जी हाँ 25 सितंबर इस महीने थिएटर्स में रिलीज होगी। ये आपकी फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री जैसे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आती है। सिद्धार्थ ने अपनी प्रिपरेशन के बारे में ये भी बताया है कि उनके लिए ट्रेनिंग सिर्फ फिट दिखने तक लिमिटेड नहीं थी। कैरेक्टर किस तरह मूव और रिएक्ट करेगा उस फिजिकैलिटी पर भी उन्होंने काम किया है और उनके मुताबिक जो

होता है ना फंटास्टिकल फैंटेसी वाला जो वर्ल्ड है, उसके बावजूद कैरेक्टर को बिलीवेबल, जी हाँ, आप तक रियलिस्टिक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिल्म एक फेमिलियर बॉलीवुड सेटिंग से थोड़ा हटकर हमें लेजेंड्स, मिस्ट्री और फैंटेसी की दुनिया में लेकर जाने के लिए तैयार है। तब तक के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा का कुक्कड़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

देखिए कुकर तो कमाल का होता ही है, लेकिन आज जो बॉलीवुड सरताज का सवाल था ना, उसका जवाब भी बड़ा ही कुकर जैसा मिला है मुझे। देखिए आपके आंसर्स आ चुके हैं और क्या कमाल का रिस्पांस रहा है। बहुत सारे लिसनर्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज जीवन बीमा योजना। सबके नाम लेना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आप सभी के नाम यहाँ पर शामिल कर सकूँ, क्योंकि मैसेजेस की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन कुछ नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी तरुण कोहली साहब का। सूरज कुंड से लिखते हैं। योजना सलीम मलिक लिखते हैं हमें यहाँ से। कान्हा जी लिखते हैं मेरठ, और मेरठ से ये बात कर रहे हैं। सबने सही जवाब दिए हैं। विनर का नाम मैं बस अब थोड़ी देर में लेने वाली हूँ। अरुण सेन ये लिखते हैं मध्य प्रदेश से। पंकज जी लिखते हैं हमें अमरावती महाराष्ट्र से। गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विनोद सोनी लिखते हैं हमें मेहना चौक भटिंडा से। और पूजा कोमल हमें हरिनगर नई दिल्ली से सुन रही हैं। इरशाद हमें लिखते हैं आप कहाँ से लिखते हैं, हाँ जी नागौर राजस्थान से। और बहुत सारे मैसेजेस हैं। रमन भी लिखते हैं हमें हरियाणा से। गुड मॉर्निंग मैम, ये वैभव जायसवाल हमें सुन रहे हैं। हमें आपने अपनी जगह नहीं लिखी है यहाँ पे। तनुजा जी हमें महाराष्ट्र से सुन रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी, जिन लोगों ने हमें यहाँ पे मैसेजेस दिए हैं, हमसे बातें करी हैं, और अपने यहाँ पर आपने हमें सही जवाब दिया है। द करेक्ट आंसर इज जीवन बीमा योजना एंड द विनर इज निकिता पारिकर। जी हाँ, ये हमें पुणे से लिखती हैं और इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो आज के बॉलीवुड सरताज का, आपने सही सवाल अपने सही जवाब दिया है। और इसी के साथ आज के बॉलीवुड का ये जो क्वेश्चन था, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं हूँ ज्योतिका और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी FM रेनबो पर। चलिए सेलिब्रेशन का म्यूजिक कंटिन्यू रखते हैं ना फिर।

देखिए फर्स्ट क्लास तो मैं भी हूँ, फर्स्ट क्लास तो आप भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि आज का ये जो छुट्टी वाला दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है, आपके लिए एकदम फर्स्ट क्लास रहे। इसी के साथ आज की बॉलीवुड ट्रेल्स की जर्नी को यहीं एक छोटा सा हम पॉज देते हैं। आज हमने देखा कि बॉलीवुड का सितंबर कितने डिफरेंट कलर्स लेकर आ रहा है, और मुझे लगता है कि सिनेमा की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, स्टोरीज बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते हैं, फिल्म मेकिंग का अंदाज बदलता है, लेकिन फिल्मों के साथ हमारा कनेक्शन कहीं नहीं जाता। कभी एक डायलॉग याद रह जाता है तो कभी कोई कैरेक्टर, और कभी एक गाना हमारी कोई बहुत ही प्यारी याद बन जाता है। हर फ्राइडे एक नई कहानी, हर फिल्म के साथ एक नई दुनिया, और हर एक गाने के साथ आपकी वो स्पेशल मेमोरी। अब मैं लेना चाहूंगी आपसे इजाजत, मिलूंगी आपसे 1 बजे लेकर के मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर होगी आपकी रिक्वेस्ट और उसे प्ले करूंगी मैं। तब तक के लिए मैं ज्योतिका आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।

0: Harry Styles with the track called Watermelon Sugar. It's time for us to take a short break.
1: आज फिर लेट हो गए?
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: Great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi,

0: व्यक्ति जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर ट्यून्ड इनटू प्ले इट कूल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। नाउ व्हाइल वी टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस, द प्रिंटिंग प्रेस कैन नॉट बी मिस्ड बिकॉज द प्रिंटिंग प्रेस मेड नॉलेज फार मोर एक्सेसिबल, व्हाइल रेफ्रिजरेशन ट्रांसफॉर्म्ड द वे फूड कुड बी प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। डिफरेंट इन्वेंशंस हैव सॉल्व्ड वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट Every invention has eventually changed something fundamental about our everyday life. Truly, we can say that every invention has been purely gold for us.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 3 घरेलू

एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास कल रात अरब सागर में एक नाव के इंजन में खराबी आने के बाद 38 लोगों को बचाया गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं क्रिकेट की अगर बात करी जाए तो क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर 2020 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। एक बजे का वक्त है और ये वो घंटा है जहां गानों की चॉइस मेरी नहीं आपकी होती है। मेरा वाला सॉन्ग, आपकी फरमाइशों और आपके फेवरेट गानों के नाम। लेकिन अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट का सिलसिला शुरू करने से पहले वक्त है कैंसर अवेयरनेस पर आधारित हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम को सुनने का। एक जरूरी जानकारी, एक जरूरी अवेयरनेस, तो इस प्रोग्राम को जरूर सुनिए। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी और उसके तुरंत बाद शुरू होगा मेरा वाला सॉन्ग। तब तक अपनी फेवरेट सॉन्ग रिक्वेस्ट आप रेडी रखिए। मिलते हैं इस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के तुरंत बाद।
2: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं मीनाक्षी चड्डा, डायरेक्टर जागृति, इंडियन कैंसर सोसाइटी। आज मैं आप सबसे ये बात करने आई हूँ उस दिन के विषय में जो पूरी दुनिया में विश्व कैंसर अनुसंधान दिवस के रूप में 24 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और आज की वार्ता के स्पॉन्सर्स हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी, उनका दिल से धन्यवाद। जिंदगी की जंग में उम्मीद ही सबसे बड़ा हथियार है और उम्मीद का रास्ता रिसर्च से होकर गुजरता है। ये विषय न सिर्फ विज्ञान और चिकित्सा से जुड़ा है बल्कि हर एक परिवार, हर एक जीवन से जुड़ा है। कैंसर अनुसंधान 24 सितंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक याद दिलाने वाला दिन है कि कैंसर जैसी चुनौती से लड़ने के लिए हमें रिसर्च यानी अनुसंधान की ताकत चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कैंसर रिसर्च हमारे जीवन में क्यों इतनी अहमियत रखता है? आइए आज हम इसे ठीक से, पूर्ण रूप से, दिल से समझते हैं, जानते हैं कि कैंसर की हकीकत क्या है। आप में से कितने लोग हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे कैंसर हुआ है? शायद अधिकतर लोग। दोस्तों, कैंसर कोई एक अकेली बीमारी नहीं है, ये लगभग 200 से अधिक तरह की बीमारियों का समूह है। इसमें शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं। WHO के आंकड़े कहते हैं कि हर साल दुनिया में लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर से अपनी जान गंवाते हैं। भारत में हर

14 से 15 लाख नए केसेस सामने आते हैं। सोचिए तो, हर दिन इतने सारे घरों में ये खबर जाती है। और अनुमान ये भी है कि 2030 वर्ष तक ये संख्या और भी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ अच्छी खबर भी तो है। वो क्या? यही कि रिसर्च की वजह से आज कई तरह के कैंसर्स में इलाज के नतीजे बेहतर हुए हैं, सर्वाइवल रेट्स बढ़ गए हैं, मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, बहुत से लोग ट्रीटमेंट के बाद सामान्य जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर पूर्ण रूप से क्यूरेबल है। अब प्रश्न ये है कि रिसर्च जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए मान लीजिए कि अगर 20 साल पहले किसी को फेफड़ों का कैंसर हुआ तो डॉक्टर्स के पास विकल्प बहुत सीमित थे, लेकिन रिसर्च की वजह से आज हमारे पास कई नए विकल्प हैं, जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और प्रिसीजन मेडिसिन। ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में भी रिसर्च ने मेमोग्राफी स्क्रीनिंग को बढ़ावा दिया, जिससे कैंसर शुरुआती अवस्था में ही पकड़ में आने लगा। और दोस्तों, यही शुरुआती पकड़ इलाज का सबसे बड़ा हथियार है। रिसर्च सिर्फ दवाओं की खोज नहीं, ये हमारे खानपान, हमारी आदतों, हमारी जीन्स और पर्यावरण के असर को भी समझने का विज्ञान है। कैंसर होने के कारण, इसकी रोकथाम, इलाज और रिकवरी, इन चारों क्षेत्रों पर रिसर्च ही हमें बेहतर समाधान देती है। कुछ उदाहरण है इसके, जैसे कि पहले फेफड़ों के कैंसर के मरीजों की औसत जीवन अवधि बहुत कम होती थी, लेकिन रिसर्च से कई नई थेरेपीज विकसित हुई हैं, जिनके प्रयोग से जीवन बेहतर हो रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली डिटेक्शन और हार्मोन थेरेपी के परिणाम रिसर्च से ही तो सामने आए। रिसर्च जीवन शैली, खान पान और जेनेटिक फैक्टर्स के अध्ययन को भी शामिल करती है। हर सवाल का जवाब किताबों में नहीं मिलता, कुछ जवाब प्रयोगशालाओं में जन्म लेते हैं। अब जानते हैं कैंसर रिसर्च में भारत की भूमिका क्या है। भारत में टाटा मेमोरियल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे कई संस्थान और बहुत से विश्वविद्यालय कैंसर रिसर्च में अग्रणी हैं और साथ में इलाज भी तो कर रहे हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कैंसर रिसर्च के लिए फंड्स भी प्रोवाइड करती है। इंडिजिनस रिसर्च से कम लागत पर किफायती इलाज और स्क्रीनिंग टूल्स भी विकसित किए गए हैं। फिर वैक्सीन की बात करें तो HPV वैक्सीन, जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को रोक सकती है, इसका भारत में स्थानीय उत्पादन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय पर भी कुछ शोध जारी है। सोचिए, ऐसी खोजें न सिर्फ भारत के लोगों बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बचा सकती है। प्रश्न ये है कि हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जनता की इसमें क्या भागीदारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिसर्च तो वैज्ञानिक करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यही ना? पर दोस्तों, सच तो ये है कि हम सब इसमें बहुत सा योगदान दे सकते हैं। जैसे कि अगर डॉक्टर सलाह दे तो क्लिनिकल ट्रायल्स में भाग ले सकते हैं, लाइफस्टाइल स्टडीज यानी अपने लाइफस्टाइल डाटा, खान पान, अपनी आदतों जैसे व्यायाम और स्मोकिंग छोड़ने जैसे बदलावों पर हो रही रिसर्च में भाग ले सकते हैं। ब्लड टिश्यू जेनेटिक सैंपल्स डोनेशन में, भविष्य की चिकित्सा खोजों में आप अपने ब्लड का योगदान दे सकते हैं। तरह तरह की गलत फहमियां और मिथ्स को दूर करने में मदद कर सकते हैं, ताकि लोग रिसर्च में भाग लेने से डरे नहीं।

और सबसे जरूरी बात है फंड्स की। रिसर्च के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो हम मनी दान देकर, समर्थन देकर और जागरूकता फैलाकर कई तरह से मदद कर सकते हैं। याद रखिए, आज एक छोटा सा योगदान कल किसी का जीवन बचा सकता है। जब एक खोज जन्म लेती है तो हजारों उम्मीदें सांस लेती हैं। हमारे जिम्मेदार बनने से ही तो भविष्य में सुधार होगा और हमारा भारत सशक्त होगा। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार, वैज्ञानिक, चिकित्सक और आम जनता सबको साथ मिलकर काम करना होगा। रिसर्च फंडिंग बढ़ाना, रिसर्चर्स को प्रोत्साहन देना और समाज में विज्ञान के प्रति भरोसा जगाना बहुत ही जरूरी है। भविष्य की तस्वीर देखें तो आने वाला समय वर्तमान से भी बेहद रोमांचक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायग्नोस्टिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जेनेटिक एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजी कैंसर से लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाएगी। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक, ये सब कैंसर के इलाज में क्रांति ला सकते हैं। लेकिन ये सब तभी तो संभव है जब हम रिसर्च को प्राथमिकता दें, उसके फंड्स बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास करें और अपने वैज्ञानिकों का हरदम साथ दें। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च डे हमें याद दिलाता है और सिखाता भी है कि ये लड़ाई हम वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स पर नहीं छोड़ सकते, ये हम सबकी लड़ाई है कैंसर के खिलाफ। भारत को कैंसर मुक्त करना ही होगा। जब हम रिसर्च को समर्थन देते हैं तो हम केवल विज्ञान को नहीं बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने की राह भी दिखाते हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ी दवा है और रिसर्च इसका नुस्खा। आज बोएंगे बीज जिज्ञासा के, कल खिलेंगे फूल जीवन के। ये कैंसर से युद्ध अकेले ही किसी लेबोरेटरी में नहीं लड़ा जाता, ये हम सबकी भागीदारी से जीता जाएगा। हम सबको इसमें आगे बढ़कर काम करना होगा। रिसर्च उम्मीद का दूसरा नाम है और उम्मीद जीवन की सबसे बड़ी दवा। ज्ञान की रोशनी से अंधेरा मिटेगा और हर खोज से एक जीवन खिलेगा। अब हम बात करते हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी के कैंसर मुक्त भारत बनाने के प्रयासों की, जो आप लगातार हर फ्राइडे की हमारी श्रृंखलाओं में सुनते रहते हैं। इंडियन कैंसर सोसाइटी जागृति फैलाने के हर तरह के भरसक प्रयास करती है। ये एक वॉलंटियर बेस्ड एनजीओ है। वॉलंटियर्स दिल्ली एनसीआर में आरडब्ल्यूएस, स्लम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, आईटीआईज, कॉर्पोरेट्स, यू नेम इट, हर जगह जाकर अवेयरनेस टॉक्स करते हैं। हमारा एक डिटेक्शन सेंटर है बाबर रोड पर, जहां कम कीमत पर टेस्ट किए जाते हैं। एड्रेस है CDC 42 बाबर रोड, दिल्ली। ये सेंटर मंडे से फ्राइडे तक 9:30 से 12:30 बजे तक खुला रहता है, जहां 3 डॉक्टर्स अपनी टीम के साथ सदा तत्पर रहते हैं। अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट फ्री किए जाते हैं, जनवरी मंथ में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन फ्री होता है। वॉलंटियर्स डिफरेंट हॉस्पिटल्स जैसे कि R&R, एम्स, RGCIRC, मेदांता एक्सेट्रा में कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए भी विजिट करते हैं। पेशेंट नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं। हमारी एक डिटेक्शन वैन भी है जो जगह जगह डॉक्टर्स और उनकी टीम के साथ कैंप लगाती हैं और प्री टेस्ट करते हैं। हमारा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है चितरंजन पार्क में, जहां ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, सर्वाइवर्स, वायरल वॉरियर्स मिलते हैं। उनका एक सपोर्ट ग्रुप है जहां वो आपस में अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफें साझा करते हैं। सेंटर पर कैन किड्स के बच्चे ट्यूसडे को

0: नमस्कार।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: वेलकम बैक, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। अब वक्त है आपके अपने शो मेरा वाला सॉन्ग का, जहां अगला पूरा टाइम, जी हां, 2 बजे तक चलेगी आपकी पसंद, आपकी फरमाइश और आपके फेवरेट गाने। तो फोन उठाइए और व्हाट्सएप पर भेजना शुरू कीजिए अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट। कोई गाना जो आपके दिल के करीब हो, किसी खास को डेडिकेट करना हो, या सिंपली आज जिस गाने को सुनने का आपका मन हो, आप फरमाइश भेजिए और मैं आपकी डीजे बनकर उसे प्ले करूंगी। 9868107070 इज द नंबर। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, 9868107070। और क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज के म्यूजिकल सफर की शुरुआत कान्हा के नाम से करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा की बांसुरी की तरह आपकी जिंदगी भी प्यार, सुकून और खुशियों से भरी रहे।
1: चली गोकुल की राधा, चली चली चली चली गोकुल की।

हो चुका है और अगली रिक्वेस्ट के साथ जुड़ा है बहुत सारा प्यार और एक स्पेशल बर्थडे विश। ये फरमाइश भेजी है हमें सिमी महेंद्र जी ने अपने हस्बैंड मिस्टर महेंद्र कुमार जी के लिए दिल्ली से, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। सिमी जी की तरफ से महेंद्र जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं ना, जिंदगी का सफर और भी खूबसूरत हो जाता है जब साथ चलने वाला इंसान दिल के इतना करीब हो। दुआ है कि आप दोनों का ये साथ यूं ही प्यार, हंसी और खूबसूरत यादों से भरा रहे। और महेंद्र जी, आने वाला साल आपके लिए नई खुशियां, अच्छी सेहत और ढेर सारी मुस्कुराहटें लेकर आए। सो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और सिमी जी की तरफ से ये प्यारा सा, ये खास गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आज फिर लेट हो गए।
3: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी वेरी वेरी स्मॉल ब्रेक. आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग विद मी ज्योतिका. देखिए, आपकी रिक्वेस्ट मुझे लगातार मिलती जा रही हैं. आप एक बार अगर अभी अभी ट्यून इन करें हैं, नंबर नोट कर लीजिए 9868107070. भेजिए अपना फेवरेट गाना और मैं यहाँ उसे पूरी कोशिश करूँगी प्ले करने की. फिलहाल मैं अगली रिक्वेस्ट लेना चाहूँगी दिनेश कुमार जी की तुलसीपुर नेपाल से. वो लिखते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, उनको बड़ी पसंद है इस मूवी का. आप कोई भी गाना प्ले कर दीजिए तो मैं बहुत ही हौले हौले इस गाने की तरफ बढ़ रही हूँ. आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट जल्दी भेजिए ना.

देखिए, हर चीज़ में, हर बात में हौले हौले ही वक्त लगता है। जैसे हौले हौले तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ही तेज़ स्पीड से मुझे आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट आ रही है 9868107070 पर। और अगली रिक्वेस्ट में लेना चाहूँगी राजेश शर्मा जी की, जो हमें ख्याला से लिखते हैं। जन्माष्टमी के दिन वो बहुत ही प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं, यशोमती मैया फ्रॉम द मूवी सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, क्या कहा जाता है ना कि मोर मुकुट की शान निराली है, सबके प्यारे हैं बाकी बिहारी। जन्माष्टमी पर्व की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। राजेश शर्मा जी, ये गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में जो खो जाता है जीवन का हर दुख छोटा सा हो जाता है। आप सभी को जन्माष्टमी की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली रिक्वेस्ट में लेना चाहूंगी, सृष्टि लिखती हैं दिल्ली से, कहती हैं कि आज मौसम मुझे बहुत पसंद आ रहा है, जगजीत सिंह की आवाज़ में मैं ये गाना सुनना चाहूंगी, ऐसी आंखें नहीं देखी। ये प्यारा सा गीत सिर्फ और सिर्फ आपके नाम।

माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी। आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देखिए इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं जन्माष्टमी से रिलेटेड सॉन्ग्स की। अगला हमें मैसेज मिला है हरिमणि वर्मा का, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा, माफ़ कीजिएगा अगर आप का नाम मैंने गलत लिया हो। ये लिखते हैं भट्टापुरा छत्तीसगढ़ से और सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गाना। आई एम श्योर अगर आप भी इस गाने को सुनेंगे तो पुरानी यादें आपको आपके सामने आ जाएंगी।

इस गाने की इतनी रिक्वेस्ट आई है, इतनी रिक्वेस्ट की अभी तक मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वन आफ्टर द अदर, जैसे मैं आपसे अभी भी बात कर रही हूँ दोबारा से ये जो पीछे मैसेजेस आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी गाने के लिए आ रहे हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपका नाम मिस कर दूँ। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, ये हमें लिखते हैं मुरादाबाद से। और मैं और भी नाम लेना चाहूँगी, कंचन सोनिया लिखती हैं दिल्ली से। एंड वी हैव वन मोर पर्सन, रमेश कुमार विश्वास विश्वकर्मा जी, माफ़ कीजिएगा वंस अगैन। आप सभी को हम साथ साथ हैं का ये गीत आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा होगा। आई एम स्टिल गेटिंग मैसेजेस फॉर द सेम सॉन्ग और ये गाना मैं आप सभी के लिए प्ले कर चुकी हूँ। अगला मैसेज मैं लेना चाहूँगी गुड्डू धाकर जी का, उज्जैन से लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं, मेरी पसंद तो एज सच नहीं है लेकिन आप जो सुनाना चाहें सो मेरी प्ले लिस्ट में अगला रेस 3 का ये ट्रैक है, आई होप आपको पसंद आएगा।

0: और इसी सब म्यूजिक के बीच मैं रुकना चाहूंगी, बहुत ही माफ कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा सच्ची में बहुत ही छोटे एड ब्रेक के लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बब्बल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

वेलकम बैक. जैसे मैंने कहा था, बहुत ही छोटा सा एड ब्रेक लूंगी. आई एम श्योर आप अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट का यहाँ इंतजार कर रहे हैं. और अगला मैसेज हमें भेजा है ज्ञान प्रकाश जी ने किशनगंज बिहार से. ये प्रेम रोग मूवी का कोई भी गाना सुनना चाहेंगे, सो दिस वन इज फॉर यू.

आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग विद मी ज्योतिका एंड द रिक्वेस्ट आर कमिंग इन एवरी मिनट. अगली रिक्वेस्ट मैं लेना चाहूंगी श्वेता जी की. ये लिखती हैं हमें आगरा से और ये अपनी फैमिली के साथ हैं और इनको फैशन मूवी काफी पसंद है. मोहित चौहान और नेहा भसीन की आवाज में ये गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए.

0: बहुत ही छोटे इनी मिनी टाइनी मिनी ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुकना चाहूंगी.
1: A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in three categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest Common Service Center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award.
0: देखा कहाँ था ना, बहुत ही छोटे मिनी ब्रेक के लिए जा रही हूँ और अगला मैसेज मैं यहाँ लेना चाहूँगी. वैभव जायसवाल का, ये छत्तीसगढ़ से लिखते हैं कि ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं संतोषी साहू को, उनका आज जन्मदिन है. संतोषी साहू जी, आपको बहुत बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड वैभव, आपके लिए ये सॉन्ग डेडिकेट करते हैं फ्रॉम द मूवी फिजा.

दोस्तों, देखते ही देखते मेरा वाला सॉन्ग का ये खूबसूरत सफर यहीं खत्म होता है। आपकी फरमाइशों, डेडिकेशंस और इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जन्माष्टमी की एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी रिक्वेस्ट आपने हमारे तक पहुंचाई, थैंक यू सो मच। यूं ही म्यूजिक से जुड़े रहिए। मैं हूं ज्योतिका, आपसे इजाजत लेती हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। अ वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी वंस अगैन। नमस्कार।

नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा करा सकते हैं। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और खाने पीने के स्थानों पर विशेष निगरानी और खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाई को बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली के युद्धवाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास कल रात अरब सागर में एक नाव के इंजन में खराबी आने के बाद 38 लोगों को बचाया गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आप सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूं आज के इस प्रोग्राम आशियाना में। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपको प्रेम करुणा और धर्म आपके जीवन में समृद्ध हो और आपका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो और बहुत सी समृद्धि लेकर आए आज का ये दिन। हम जानते हैं कि आप सभी आज व्रत कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का। ये दिन हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन का दिन है क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें हमेशा ही सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। तो मैं गीतिका उनियाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम आशियाना में। जब कृष्ण जन्माष्टमी की बात हो तो मथुरा वृंदावन इसका जिक्र हम ना करें ये कैसे हो सकता है। तो आज के कार्यक्रम आशियाना में जहां हम आपको ले चलते हैं कि ऐसी स्थल पर जहां आप आनंद महसूस कर सकते हैं, सुख महसूस कर सकते हैं। तो आज के इस पावन दिन में आज हम मथुरा और वृंदावन जाने वाले लोगों के लिए बहुत सारी डेस्टिनेशन का जिक्र करेंगे। जब आप मथुरा और वृंदावन जाना चाहते हैं तो आपको लगता है कि कृष्ण जन्मभूमि में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी स्थल हैं, वहाँ हम जाकर उनको साक्षात अपनी आंखों से देखें। तो जिक्र करेंगे आज के इस प्रोग्राम आशियाना में हम उन्हीं स्थलों का जो है मथुरा वृंदावन में। तो बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए अपनी इस दोस्त गीतिका को और कृष्ण भक्ति में खुद को डुबोइए। फिर देखिए जैसे जैसे आप गोते मारते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रेम महसूस होगा, करुणा महसूस होगी और आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। और कृष्ण ने तो प्रेम करना सिखाया है हमेशा और यही प्रेम आपको और हमें जोड़ता है। मैं हूँ गीतिका, सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर कार्यक्रम आशियाना।

बिल्कुल, वो किसना है, वो कृष्णा है जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें प्रेम है और जिसने हमें प्रेम करना सिखाया, चाहे वो राधा के प्रेम से हो या फिर यशोमती मैया, यशोदा मैया के प्रेम से हो। लेकिन देवकी का प्रेम तो सबसे ज़्यादा अतुल्य है, जिसने अपने गर्भ से कृष्ण को जन्म दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पुत्र को अपने से दूर किया। ये माँ का एक अलग रूप है और आज की नारी इस रूप से भली भांति कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जितनी भी माताएं नौकरी पेशा हैं, वो कैसे अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाती हैं घर पर, ये सोचकर कि वो अपने बच्चे के लिए सुख अर्जित करेंगी, क्योंकि अपने बच्चे की परवरिश के लिए कहीं ना कहीं वो खुद को भी जिम्मेदार समझती हैं। अब माँ के रूप तो अनेक है, लेकिन पुत्र तो पुत्र है। पुत्र माँ के दिखाए हुए रास्तों पर, पिता के दिखाए हुए रास्तों पर चलता है और कृष्ण भी ऐसे ही हैं। कृष्ण भी सतमार्ग दिखाते आए हैं हमें हमेशा। अब मथुरा वृंदावन की अगर हम बात करें, और अब मथुरा वृंदावन आप जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाने के बाद सबसे पहले जा सकते हैं श्री कृष्ण भूमि जन्म भूमि टेम्पल, और ये स्थित है दीघ गेट चौराहा मथुरा में। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है, रात 9:30 बजे तक आप कभी भी जाकर श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। और ये वो जगह है जहां देवकी और वासुदेव ने जेल में कारागर में जन्म दिया था यहां श्री कृष्ण को। वहीं आप जा सकते हैं बांके बिहारी के मंदिर। बांके बिहारी, श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है, और बांके बिहारी को आप यहाँ एक अलग रूप में देख सकते हैं, यानी कि उनके बाल रूप को यहाँ देख सकते हैं। और कहा जाता है, जितना हमने पढ़ा है, हमने जितना कृष्ण को जाना है, कि हमारे कृष्ण जो हैं बहुत ही नॉटी बहुत ही मनचले, बहुत ही अल्लड़, बहुत ही शैतानियों से भरपूर, लेकिन उनकी शैतानियों में भी कहीं ना कहीं जीवन का सार छुपा हुआ। तो इनके अल्लड़पन को, इनके जीवन को अगर आप और जानना चाहते हैं, उससे विस्मित होना चाहते हैं, तो आप बांके बिहारी के मंदिर जा सकते हैं और आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं सुबह 7:45 बजे से दिन के 12 बजे तक, और फिर शाम को 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक। और ये स्थित है

वृंदावन बांके बिहारी कॉलोनी में। वहीं आप प्रेम मंदिर जा सकते हैं, जब प्रेम की बात होती है, प्रेम रस की बात होती है, तो आप इस मंदिर में पहुंच कर यहाँ प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। ये स्थित है चतिकारा रोड वृंदावन में। यहाँ 5:30 बजे सुबह मंदिर पहुंच आप दर्शन कर सकते हैं। 8:30 बजे तक का समय आपके पास है। प्रेम रस में घुल जाइए और फिर देखिए कि आपको कितना आनंद प्राप्त

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

एक दिन मुकम्मल आप कर सकते हैं, आप जब चाहें तब मथुरा वृंदावन जा सकते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत खास है तो मैंने सोचा क्यों ना आज मथुरा वृंदावन का जिक्र किया जाए। अब मथुरा वृंदावन में आप विश्राम घाट जा सकते हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। ये स्थित है विश्राम बाजार रोड मथुरा में और ये 2400 घंटे खुला रहता है। आप जब चाहें तब यहाँ जा सकते हैं, आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल है स्थित भगवती वेदंता स्वामी मार्ग रमन रीति वृंदावन में। ये सुबह 4:30 बजे से रात 8 बजे तक आपके लिए खुला हुआ है। आप जाएं और यहाँ कृष्ण बलराम और राधा के दर्शन करें और श्री कृष्ण के उपदेशों से खुद को अवगत कराएं। अगला मंदिर द्वारकाधीश। द्वारकाधीश ये स्थित है गताश्रम टीला मथुरा। गताश्रम टीला में ये स्थित है मथुरा में और सुबह 6:30 बजे ये खुल जाता है और आप यहाँ जा सकते हैं। सुबह 6:30 से सुबह 10:30 तक आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं कृष्ण के, और वो भी कृष्ण के एकदम राजा रूप के, यानी कि एकदम राजा के समान कृष्ण यहाँ आपको नजर आएंगे। यही खास बात है द्वारकाधीश मंदिर की। शाम 4 बजे से 7 बजे तक भी आप कृष्ण के इस दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। और द्वारकाधीश में चाहे होली हो या जन्माष्टमी हो, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अगला है निधिवन तुलसी मार्ग वृंदावन में ये स्थित है और ये कहा जाता है कि हर राज जो है कृष्ण और राधा यहाँ रास लीला रचाते हैं। कहते हैं कि पेड़ों के नीचे अपने प्रेम को एक दूसरे के समक्ष कहीं ना कहीं वो दर्शाते हैं और कृष्ण प्रेम की अद्भुत लीला को आप यहाँ अपने मन से अवगत कर सकते हैं निधिवन में जाके। जी अगली जगह है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर स्थित है गोवर्धन राधा कुंड के पास और यहाँ का कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है यहाँ कि जिस तरह से नक्काशी की गई है मंदिर की, ये काबिले तारीफ है। और जब यहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आपको भाव विभोर कर देती हैं। तो सुबह सूर्य उदय से आप सूर्य के जाते उसको जाता हुआ देख यहाँ देख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ सुबह सुबह भी पहुँच सकते हैं और आप चाहें तो सूरज को यहाँ से, यानी कि सूर्यदेव को यहाँ से बाय बाय भी कर सकते हैं। और कहते हैं कि जहाँ पर सूर्य अंत होते हैं, यानी कि जहाँ वो आपसे कहते हैं कि मैं फिर आऊँगा, वहीं से आपका उदय होता है, यकीन मानिए। अगला है राधा रमन टेम्पल और ये है वृंदावन में। ये सुबह 8 बजे से आपके लिए खोल दिया जाता है। दिन में 12 बजे तक आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, फिर शाम को 6 बजे से शाम के 8 बजे तक आप यहाँ पहुंच सकते हैं। अगला जो मंदिर है वो है कांस किला। अगर आप चाहें तो यहाँ यमुना नदी के किनारे मथुरा में ये स्थित है। आप जब मथुरा वृंदावन जा ही रही हैं तो इसे भी देखिए। और ख़ास है मथुरा म्यूज़ियम और यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं। सुबह 10:30 बजे से आप यहाँ आगमन कर सकते हैं शाम के 4:30 बजे तक, और सोमवार को और पब्लिक हॉलीडेज पर ये बंद रहता है। गोवर्धन हिल्स जा सकते हैं जो 22 किलोमीटर दूर है मथुरा से। तो गोवर्धन नहीं देखा तो क्या देखा, उसकी परिक्रमा नहीं की तो क्या की, तो 21 किलोमीटर की आपको यात्रा करनी पड़ती है परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन पर्वत की। तो आप यहाँ भी पहुँच सकते हैं, 2400 घंटे आपके लिए ये खुला हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि आप जब यहाँ जाएं तो बहुत सारी यादें लेकर आएं, कृष्ण प्रेम लेकर आएं। जा सकते हैं आप बरसाना, होली पर अक्सर लोग जाते हैं बरसाने होली देखने के लिए, नंदगांव जा सकते हैं, गोकुल जा सकते हैं। तो तमाम जगहें हैं जहाँ आप श्री कृष्ण के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।

बैक में हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और इस वक्त आप सुन रही हैं आशियाना, जहाँ हम आपको लिए चले हैं मथुरा वृंदावन। जो लोग मथुरा वृंदावन में आज के दिन हैं, आपको ढेरों शुभकामनाएं। और अगर आप नहीं भी हैं आज वहाँ, तो अगली मर्तबा आप जरूर जाइएगा। वैसे कृष्ण को पाने के लिए ना हर

आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, एनसीईआरटी पर आधारित। एनसीईआरटी का एक कार्यक्रम है जो विशेष रूप से हम आपके लिए यहाँ पेश कर रहे हैं।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
3: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
3: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
3: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
3: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग

0: टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए।
0: जी
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की,
0: जी
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
0: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
0: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
0: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
0: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
1: जी श्रोताओं, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
0: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
0: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
0: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
1: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
0: जी।
1: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
0: जी।
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें, यानी सत्यानंद स्टोक्स को, हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी जी?
1: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
0: जी,
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
0: श्रोताओं, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें जो सैमुअल इवांस

0: स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहां कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-440-559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो? अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा? ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिंगार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।

0: ज्योतिष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा।
1: दासी, दासी।
2: जी, जी, जी राणा जी महाराज।
0: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
2: जी महाराज।
0: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
2: रानी सा की जय हो।
3: आओ सखी, भीतर आओ।
2: जी, वो
3: क्या हुआ सखी? तनिक चिंतित सी लग रही हो।
2: वो कुछ नहीं।
3: कहो ना सखी, क्या बात है?
2: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
3: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
2: पर हमें तनिक शंका होती है।
3: दो दो हमें, हम अभी पिएंगे।
2: रुकिए रानी सा, जरा ठहरिए रानी सा। क्या मालूम विश्वत तो?
4: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो सो।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: आह हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई।
11: जय श्री कृष्ण।
12: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
11: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
11: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
11: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थीं, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं।
5: क्या सच? गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती है।

0: हीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मिड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती है।

0: सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: इतनी मधुर आवाज। हाँ। सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
2: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा यार।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
6: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
7: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
8: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
2: सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
8: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
9: हाँ, ये बात तो ठीक है,
7: हो गई दुगनी।
5: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
2: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
8: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
2: हाँ, 60 किलोग्राम है।
3: अगर तुम 30 किलोग्राम

0: 50 ग्राम की होती तो
1: अरे बस किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं, वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
2: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
0: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
3: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
1: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
4: 300 किलोग्राम?
5: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है।
3: और चीटी की मम्मी, उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
0: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
1: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो? तुम छोटे डायनासोर की बात, हम तो मिठाई खाते हैं।
0: हाँ, कहिए 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर, जहां सेहत से जुड़ी हर उलझन का मिलता है सटीक समाधान। आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल, और आज के हमारे इस फोन इन कार्यक्रम का विषय है बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और आयुर्वेद। इस विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रीना अरोरा, जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। नमस्कार डॉक्टर।
4: नमस्कार जी,
3: स्वागत है आपका हमारे इस फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
4: धन्यवाद जी।
3: कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गाना।

0: आशा करते हैं ये गाना आपको भी पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब कैसा था ये गाना?
1: बहुत बढ़िया।
0: तो डॉक्टर रीना अरोरा जी, आपसे पहला सवाल, जैसा हमारा विषय है बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण, इसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका है, इस बारे में आप क्या कहेंगी?
1: जी, आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, अगर उसको लोग माने। आयुर्वेद में बच्चों का स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ वर्णित है। उनका डेली मसाज होनी चाहिए, उनकी एक प्रॉपर दिनचर्या होनी चाहिए, और उसके बाद डाइट की अगर बात करूं तो प्रॉपर रेनबो पूरा डाइट मिलनी चाहिए उनको, सात रंग जैसे होते हैं
0: जी, जी।
1: तो अलग अलग सब्जियां उनको सारी खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, देसी घी खाना चाहिए, बट इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: ये सब चीजें अगर बच्चे करें तो वो स्वास्थ्य में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे।
0: और ये जो डाइट प्लान है हमारा, वो डाइट प्लान मतलब बच्चों को कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल जाने के कारण उनकी जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि मुझे कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ है कि उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए?
1: हाँ, एक बेसिक डाइट प्लान बच्चों का बता देती हूँ। सुबह सुबह अक्सर बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं, 6 बजे या

0: 7 बजे बसेस आ जाती हैं,
1: जी
0: तो सुबह दूध पी के जा सकते हैं बच्चे, क्योंकि अक्सर वो बोलते हैं मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खा के जाऊंगा, ये बहुत कॉमन है।
1: जी जी
0: च्यवनप्राश दे सकते हैं सुबह बच्चों को हम, वो बहुत पौष्टिक है सबके लिए। और उसके बाद उनको आप एक फ्रूट जरूर पैक करके दीजिए, उनको आदत डालिए बचपन से कि आपको एक फ्रूट खाना है। प्रॉपर न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट दीजिए जिसमें दाल का चीला हो सकता है, बॉयल्ड चने हो सकते हैं, कोई ना कोई परौंठी हो सकती है, लेकिन सेम मोनोटोनस मील रोज नहीं देनी चाहिए। कभी आप दलिया दे सकते हैं बहुत सब्जियां डाल के, चेंज कर करके, और एक बच्चों को सुंदर खाना बना के दीजिए, हेल्दी और सुंदर। अगर आप कहें कि नहीं बेटे आपको सिर्फ घिया और खिचड़ी है हेल्दी वो खाना है, तो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा।
1: जी, जी, जी,
0: तो इसमें मैं गलती बच्चे की नहीं आपकी मानूंगी। तो आप बच्चे को हेल्दी खाने को इस तरह बना के दीजिए कि उसका दिल करे खाने का। आप जैसे आजकल बच्चों को बहुत शौक है मोमोज खाने का, तो आप रागी के आटे के मोमोज बनाइए, उसके अंदर सब्जी फिल कीजिए, उसको स्टीम करके दे दीजिए, रोटी सब्जी तो है वो, और क्या है।
1: जी जी।
0: तो ऐसे ही अगर स्प्रिंग रोल्स खाते हैं बच्चे, उसमें भी आप मिलेट्स का आटा यूज करके उसका बेस बना के बीच में सब्जी स्टफ करके उनको देसी घी में फ्राई करके कभी कभी दे दीजिए, कम से कम बाहर के गंद खाने से तो बचेंगे। बेसिकली क्या है, रोटी सब्जी तो है ये।
1: जी जी।
0: लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो आप बच्चे को बहुत पौष्टिक खाना दे सकते हैं।
1: जी। और डॉक्टर साहब, आजकल देख रहे हैं कि बच्चों में मोटापा ओबेसिटी जो है एक आम समस्या बनती जा रही, तो ऐसे में क्या बच्चों को फैट फ्री खाना देना उचित होगा? आयुर्वेद क्या कहता है इसमें?
0: बच्चों को कभी भी फैट फ्री खाना आयुर्वेद नहीं एडवाइस करता।
1: जी।
0: ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन का काम जिनका होता है उनको देसी घी बहुत जरूरी है उनके लिए, इसमें बहुत रिसर्च हो चुकी है। और इसका जो वेट जो बढ़ रहा है उसका बहुत बड़ा एक कारण फोन भी है। छोटे छोटे बच्चों को हम अपनी जान छुड़ाने के लिए कई बार फोन पकड़ा देते हैं, उसके बाद तो खैर बच्चों को उसकी आदत पड़ चुकी होती है। आप जैसे ही फोन खींचोगे बच्चा रोना शुरू कर देगा, चिल्लाएगा, अलग अलग तंग करेगा आपको बुरी तरह से।
1: छोटे छोटे बच्चों में भी ये देखा
0: जाता है। तो गलती कुछ हमारी भी है ना, हमारे पास टाइम नहीं होता बच्चों को। पहले बच्चों को पेरेंट्स संभालते थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, एक ने दूसरा बंदा संभाल लेता था। तो ये न्यूक्लियर फैमिलीज भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि उनके पास बात करने के लिए और टाइम किसी के पास है नहीं, तो वो अल्टीमेटली घर पे कई बार अकेले बच्चे मेट्स के पास होते हैं या वैसे अकेले हैं तो फोन पे लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जीरो हो जाती है। तो वो एक कारण है वेट बढ़ने का फैट्स की बजाय। और जंक फूड्स भी एक बहुत बड़ा कारण है। प्रॉपर मील, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको बता रही थी कि ये अपना एक मील, एक फ्रूट और एक मील लेके जाएं, आने के बाद दाल प्रॉपर एक कटोरी भर के दाल, एक सब्जी और रोटी बच्चों को मिलनी चाहिए, साथ में छाछ या दही जो सीजन है उसके अकॉर्डिंगली, शाम को दूध दें, फिर रात का डिनर दें जिसमें रोटी सब्जी दें। तो ये एक मिनिमम एक डाइट है जो बच्चों को मिलनी चाहिए। अलग अलग क्वांटिटी वेरी कर सकती है, किसी का पित्त प्रकृति है, किसी की वायु है, किसी की कफ है, एक्टिविटी लेवल, डिजीज के अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली, बट ये बेसिक इतनी मिनिमम डाइट सबको कम या ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए।
1: जी।
0: और अगर वो सब्जियां खाएं बहुत ज्यादा तो वेट नहीं बढ़ता। आजकल के बच्चे मैंने देखा है बहुत, अगर वो उन्होंने कहा कि मैं घिया, तोरी, टिंडे, करेले, बीन्स वगैरह नहीं खाऊंगा तो मदर्स मान लेती हैं। हमारे टाइम में मदर्स कहाँ सुनती थी, वो जो बना है वो खाना है,
1: वो खाना है। जी जी।
0: तो ये भी एक रीजन है।
1: मैम, एक मैसेज आ रहा है, ये अनमोल गुप्ता सरिता विहार से बता रहे हैं कि इनका लड़का 4 साल का है, 2 महीने पहले उसे गले में चोट लग गई थी, इसके बाद आवाज में हकलाना आ गया था, क्या करें, पहले सही था, तो ये जानना चाह रहे हैं। हालांकि ये हमारे विषय से इतर है, लेकिन चूंकि ये जानना चाह रहे हैं तो इनको आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए।
0: गले में चोट लग गई थी तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वोकल कॉर्ड्स में कोई ना कोई दिक्कत हुई है, वहीं पे चोट लगी है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिपोर्ट्स के मैं भी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसकी आवाज वापस आ जाएगी। प्रॉपर आप इलाज कीजिए, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी मिल सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स लेके जाइए और आप कंसल्ट कीजिए।
1: तो मैम, अपने विषय पर लौटते हैं फिर से। बच्चों में मैम स्ट्रेस और एंग्जाइटी ये बढ़ रही है और उनकी दिनचर्या इससे प्रभावित हो रही है, तो कैसी हो उनकी दिनचर्या, उनके मानसिक विकास के लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है?
0: इसमें हमें थोड़ा सा, मैं 2-3 चीजें बोलूंगी। एक तो कि फोन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। बच्चे हर चीज पेरेंट्स से डिस्कस करने के बजाय इंटरनेट पे ढूंढते हैं उसका सोल्यूशन, और वो हमें उनको ये चीज दोबारा बचपन से ही कन्विंस करना शुरू कर देना चाहिए कि हम तुम्हारे वेलविशर हैं, कुछ अच्छा हो या बुरा हो बताइए, बताइए हमें, मत छुपाइए हमसे, क्योंकि बाहर एक छोटे बच्चे ने दुनिया नहीं देखी, उसको नहीं पता बाहर कैसे लोग हैं। कोई उसको उसके बदले में ब्लैकमेल कर सकता है, इल ट्रीट कर सकता है,

0: उसका उसको स्ट्रेस हो सकता है।
1: जी।
0: पेरेंट्स सपोर्टर होते हैं बच्चे के, अगर वो हर बात पेरेंट्स से कर रहा है तो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। तो टाइम चाहिए उनको, बजाय हमारे महंगे महंगे गिफ्ट्स या इन चीजों से हम अगर उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें तो आपको बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम ही नहीं पता। ये भी एक स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण होता है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीजें बच्चे छुपा रहे होते हैं हमसे, वो हमारे लिए बड़ी नहीं है बट उनके लिए उनकी एज के अकॉर्डिंगली बड़ी है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरा, अगर डाइट के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो देसी घी बहुत इफेक्टिव है मेंटल हेल्थ के लिए। गाय का दूध बहुत अच्छा है, बच्चों को पीना चाहिए। सीताफल जो होता है, दिस इज वेरी गुड ब्रेन टॉनिक, ये बच्चों को खाना चाहिए। चाहे उसका मीठा बना के खाएं, सब्जी बनाएं, रोटी में डालें, जैसे भी बनाएं, बहुत सारी उसकी रेसिपीज जो यूट्यूब पे मिल जाएंगी तो वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों को किसी भी तरह उसको खिलाइए सुंदर तरीके से।
1: तो बच्चे तो ज्यादातर आलू या फिर चने,
0: यही तो वेट बढ़ने का कारण है आलू।
1: तो वो मतलब सीताफल तो देखना नहीं चाहते। भिंडी, एक भिंडी है जो सब्जी देखती हूँ कि बच्चे मतलब चाव से उसकी भुजिया खा लेते हैं, लेकिन सीताफल जरूरी है।
0: सीताफल का अगर सूप बनाए तो शायद उनको पता नहीं लगेगा, रोटी में आटे में गूंदिए तो उनको पता नहीं लगेगा। यही मैं बोल रही हूँ कि उनको हमेशा बताना नहीं कि सीताफल दे रहे हैं, उसको चेंज कर दीजिए, उसका कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन चेंज कर दीजिए आप।
1: हाँ, तो वो प्रेजेंटेशन चेंज करने से जैसा मतलब अच्छा दिखेगा, अच्छा तो अट्रैक्ट होगा और वो खाने के। मैम, एक और मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर कि मेरा बेटा 6 साल का है, वो अब भी नाइट में जब सोता है मॉर्निंग में मतलब उसे बिस्तर में पेशाब हो जाता है। ये राहुल कुमार जाटव जी हैं, गाजियाबाद से पूछ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब?
0: इसका कारण है, एक तो बच्चे को डांटिए मत, कई बार बच्चा डर के भी उसका टॉयलेट निकल जाता है बेड पे, वो रात में नींद में भी डरता है वो उस डांट से कि मेरा सुसुना निकल जाए। तो उसको प्यार कीजिए, आप बिल्कुल मत डांटिए उसको। सेकेंड है कि 6-7 बजे के बाद कोई लिक्विड ना दे। कई लोग सोते टाइम दूध देते हैं, वो भी एक कारण हो जाता है टॉयलेट आने का रात को। पानी भी बहुत ज्यादा, 6 बजे के बाद लिक्विड थोड़ा कम दें और इतना करके देखें। अगर फिर भी नहीं ठीक हो तो प्लीज एक बार डॉक्टर को विजिट कीजिए, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप आसपास किसी आयुर्वेदिक सलाहकार से मिल सकते हैं।
1: जी, तो आयुर्वेद में मतलब इसके लिए कोई दवा?
0: बिल्कुल है दवाएं, बट मैं नाम इसीलिए नहीं बताना चाहती कि बच्चे को देख के, उसका वेट देख के डोज वगैरह हम डिसाइड करते हैं। कई चीजें और होती हैं जिसकी हिस्ट्री लेने के बाद हम मेडिसिन बताते हैं, इसलिए जो बेसिक ये कर सकते थे वो मैंने बता दिया। अगर इससे नहीं ठीक हो तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
1: और अगला सवाल ले लेते हैं मैम, बच्चों के, छोटे बच्चों की मालिश कितनी जरूरी है और इसके लिए कौन सा तेल उपयुक्त होता है और मालिश कितने मतलब कब करें, समय उसका क्या होना चाहिए?
0: मालिश छोटे बच्चों के लिए क्या, बड़े के लिए भी बहुत जरूरी है। आप बच्चे की जब मालिश करते हो ना, एक तो उसको नींद अच्छी आती है, एक उसका बॉडी अच्छे से ग्रो करती है, मसल्स रिलैक्स होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, स्किन बेटर होती है। और तेल जो आपने पूछा है मेरे से, तिल का तेल एक अच्छा किसी भी ब्रांड का बहुत इफेक्टिव है मालिश के लिए। कोई बहुत हाईफाई ऑयल्स लेने की आपको जरूरत नहीं है उसके लिए। कोई किसी को बीमारी है तो अलग बात है, जैसे किसी का वेट बहुत कम है तो हम अश्वगंधा तेल कहेंगे, या ऐसे किसी ने वेट लूज करना है तो अलग तेल कहेंगे। अदरवाइज एक जनरलाइज वर्जन पूछो तो तिल का तेल। और थर्ड आपने पूछा किस टाइम करनी चाहिए, हमें रात को मालिश करनी चाहिए बच्चे की, ताकि वो आराम से सो जाए, आप भी डिस्टर्ब ना हो और उसको वो ऑयल जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, सुबह नहाने से 10 मिनट पहले मालिश कर देते हैं, वो गलत है। हमेशा रात को मालिश कीजिए ताकि बच्चा आराम से सोया रहे, तेल अंदर एब्जॉर्ब हो, उसका इफेक्ट आए उस पर।
1: जी, तो रात की मालिश, और मालिश के लिए सबसे अच्छा तिल का तेल।
0: ये बड़ों के लिए भी पूरा वाजिब है ये। अच्छा। एडल्ट भी अगर मालिश करवाएं तो उनको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है।
1: जी जी, तो मैम एक गाना सुन लें?
0: बिल्कुल जरूर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। इसमें जैसे अभी हमने गाना सुना कि देखो मैंने देखा एक सपना, तो हर एक औरत का सपना होता है माँ बनना।
2: बिल्कुल।
1: और लेकिन इसमें एक कहावत भी आपने सुनी होगी ना कि अगर तूने माँ का दूध पिया है तो बड़े होने पर स्वास्थ्य और पोषण में बचपन में मिले माँ के दूध की बड़ी भूमिका होती है। और बच्चों के लिए माँ के दूध का महत्व क्या होता है ये जरा बताइए आप।
2: इसके लिए एक श्लोक जरूर सुनाना चाहूंगी, मातुरेव पिबेत स्तन्यम तत्परम देह वृद्धे। यानी जो माँ का दूध है ये सिर्फ एक ऐसा आहार है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए चाहिए।
1: डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको रोक ले, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं।
2: जी।
1: हेलो।
3: हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार जी।
1: नमस्ते, अपना नाम बता दें।
3: मैं ना प्रभ पंजाब से बोल रही हूँ मैम।
1: जी जी, अपना सवाल बताएं।
3: मैम मेरा बेटा है, 13 साल का मेरा बेटा है।
1: जी जी।
3: मैम वो कुछ खाता नहीं है, जैसे कि सब्जी, कोई फ्रूट्स, जैसे सैलड वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं वो खाता है मैम।
1: अच्छा,
3: और वो
1: अच्छा।
3: बहुत दुबला और पतला बहुत है मैम, और मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। वो कुछ ऐसा नहीं, उसको जैसे दिन की अलग से बनाती हूँ उसका, जिधर लिक्विड कुछ, जिधर चने की तरी होगी राजमा, वैसे ऐसे में खाता है मैम।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताएं इनके सवाल का समाधान।
2: नमस्कार प्रभ जी।
3: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
2: इसको आप ना, एक तो जैसे कि मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुकी हूँ इसमें, कि कुछ सुंदर बना के खिलाएं, और दूसरा आप अदरक पे नमक लगा के, थोड़ा सा नींबू लगा के, छोटा सा टुकड़ा खाने से पहले उसको डेली सुबह शाम दें, धनिये और पुदीने की चटनी दें, ये थोड़ा एंजाइम्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं डाइजेस्टिव, तो उसका पाचन शक्ति बेटर होगी। और अभी उसको हैवी खाने देना बंद करें ताकि उसको भूख लगे अच्छे से, और बाकी और भी कुछ आप कर सकते हैं ऐसा।
1: ठीक, तो इनके सवाल का समाधान तो डॉक्टर अरुण जी ने दे दिया है। अब मैम आ जाते हैं अपने विषय पर, जो था कि माँ के दूध की क्या भूमिका होती है बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में, और इसका महत्व क्या है।
2: जी, माँ के दूध में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत होते हैं।
1: जी जी।
2: जो आपको टोटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। पूरे 6 मंथ्स तक आपको पानी तक नहीं देना बच्चे को, खाली ब्रेस्ट मिल्क पे रखना है बच्चे को। आजकल जो कई ऐसी लेडीज होती हैं जिनको पता नहीं होता, तो वो बहुत फोर्स करती हैं कि नहीं गर्मी बहुत है, लिक्विड उसमें पूरा सफिशिएंट है ब्रेस्ट मिल्क में, वो काफी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए 6 मंथ्स, और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग

0: एक स्वर्ण प्राशन संस्कार वर्णित है जिसको इस पीरियड में करना चाहिए बच्चों को, वो बच्चे की हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो 16 संस्कार आयुर्वेद में वर्णित है उसमें से एक जातकर्म संस्कार है जो पैदा होते ही बच्चे को शहद चटाने का ट्रेंड है, और एक स्वर्ण प्राशन संस्कार है जिसमें स्वर्ण भस्म होती है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, थोड़ा सा एक और मेडिसिन होती है बना बनाया मिलता है मार्केट में
1: जी, जी.
0: और उसको आप बच्चे को दें ताकि उसका ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो, इम्यूनिटी बेटर हो और उसका मेंटल आईक्यू बेटर हो।
1: जी जी और एक सवाल हमारे एक श्रोता पूछ रहे हैं, ये अनूप कुमार हैं रांची से, ये पूछना चाह रहे हैं कि टेल पोस्टम पोस्टम प्रोग्राम इफ इन इन्फेंट नॉट एबल टू लैक्टेशन, तो अगर बच्चा कुछ खा नहीं रहा है तो उसको कैसे मतलब खिलाना चाहिए, छोटे बच्चे के लिए शायद ये पूछ रहे हैं।
0: नहीं मतलब बच्चा जो ये डाइट दे रहे हैं वो नहीं खा रहा,
1: वो खा नहीं रहा है तो मतलब अगर बच्चा फीड नहीं कर रहा है, अगर दूध नहीं पी रहा है, छोटा बच्चा है, तो उसे पोषणम पोषणम का क्या कोई आयुर्वेद में कुछ ऐसा प्रोग्राम है?
0: मैं एक चीज बताना चाहूंगी इससे रिलेटेड, कई बार क्या होता है कुछ डिजीजेस भी ब्रेस्ट मिल्क के ठीक ना होने से बच्चों को होती हैं, आयुर्वेद में वर्णित हैं ऐसी बीमारियां, तो उसके लिए मदर्स का जो दूध है उनको भी उस पीरियड में जंक फूड्स नहीं लेने चाहिए, कुछ भी ऐसी डाइट्स ना लें जिससे उनके दूध में वो टेस्ट आए, क्योंकि दूध किससे बनना है जो मदर ने डाइट ली है। तो जैसे कि हम दूसरे प्राणियों में चीज देखते हैं कि हम डाइट उनको अच्छी दें ताकि दूध अच्छा आए, ऐसे ही मदर में भी वही है, तो मदर्स की डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, बीच बीच में मेथी का सेवन करें, शतावरी ले सकते हैं दूध कम आए तो, ताकि वो दूध में स्तन्य दोष भी आयुर्वेद में वर्णित हैं कि वो आपका दूध जो आ रहा है वो दूषित तो नहीं है, बच्चा इसलिए भी कई बार वो नहीं पी रहा या फिर बच्चा बीमार है इसलिए दूध नहीं पी रहा, तो दोनों केसेस में किसी आप आसपास के डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि कोई दिक्कत है तो आप उसका इलाज करवा सके।
1: जी जी तो है ना कि 6 महीने तक कहते हैं कि माँ का दूध सबसे ज्यादा चाहिए, जैसा आपने भी बताया कि उसे पानी तक नहीं देना चाहिए माँ के दूध के अलावा, तो 6 महीने के बाद किस तरह बच्चों को खाना देना, जैसे थोड़ा थोड़ा करके क्या क्या खिलाना चाहिए?
0: आयुर्वेद में 3 स्टेजेस वर्णित हैं बच्चे की, एक शीर, एक शीर अनाद, एक अनाद शीर, जिसमें जो फर्स्ट 6 मंथ है सिर्फ दूध देना है, शीर अनाद जिसमें दूध और अन्न थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देते हैं, और अनाद है फिर खाली जो खाना ही खाते हैं दूध बीच बीच में लेते हैं, तो इसमें 6 मंथ के बाद हमारी एक बुक में मेंशनड है कि आप उसको लेहन करवाएं, यानी फ्रूट्स का आप मैश फ्रूट्स दे सकते हैं ताकि उसका विटामिन सी कंटेंट बहुत ज्यादा और आयरन वगैरह की एब्जॉर्प्शन हो और उसको वीकनेस नहीं हो, दलिया मैश करके दे सकते हैं, घिया तोरी वगैरह आप मैश करके बॉयल करके देसी घी डाल के नमक डाल के थोड़ा सा वो दे सकते हैं, ऐसे ही दाल चावल को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए, जो बेबी फ्रूट्स आते हैं उसकी बजाय इसको आप पानी में घोल के थोड़ा सा नमक और देसी घी डाल के दें तो ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है।
1: एक बार और बता दीजिए मैम कि मतलब क्या देना चाहिए, शुरुआत किससे करनी चाहिए बच्चों?
0: उसमें आप मैश फ्रूट्स दीजिए, जैसे आप मौसमी का रस थोड़ा दे सकते हैं, मैश करके केला थोड़ा बहुत दे सकते हैं, मैश करके सेब दे सकते हैं, उसको मिक्सी में चाहे ग्राइंड कर लीजिए उसको, बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाइए, ऐसे करके ये मैश फ्रूट्स दे सकते हैं ताकि उसका विटामिन सी कंटेंट बढ़े और बाकी विटामिन मिनरल्स भी उसके अंदर जाए और उसको वीकनेस नहीं हो, धीरे धीरे उसकी टेस्ट बड्स और बेटर होंगी, फिर टीथिंग डेवलप हो जाती है, दांत आने शुरू होते हैं, तभी आप थोड़ा सेमी सॉलिड भी स्टार्ट करेंगे, उसमें सूजी की खीर दे सकते हैं, नमकीन खीर भी बना सकते हैं सूजी की, सब्जियां ग्राइंड करके मिक्सी में इसमें थोड़ी थोड़ी डालनी शुरू कीजिए ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो, दालें बॉयल करके इसमें डालिए, दालें मैश करके उसको देसी घी और नमक डाल के दे सकते हैं, और रोस्ट करके दाल और चावल को रख लीजिए, उसको भून के एक बंद डिब्बे में ग्राइंड करके भी रख सकते हैं, उसको गर्म पानी डालिए उसमें घोलिए थोड़ा सा नमक और घी डाल के बच्चे को आप ये जो आजकल पैक्ड फूड्स की बजाय आप ये दे सकते हैं, ज्यादा हेल्दी चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें मूंगफली का पाउडर भी भून के आप डाल सकते हैं रोस्टेड, तो इससे उसका स्वास्थ्य जो है ज्यादा बेटर रहेगा, और इसके बाद तो फिर नेक्स्ट स्टेज अनाद है, उसमें नॉर्मल आपकी तरह 9वें-10वें महीने में बच्चे वही खाना शुरू कर देते हैं जो पेरेंट्स खाते हैं,
1: तो वो खाना जो खाना देंगे वो जो टेस्ट लग जाएगा वही वो खाएगा,
0: तो इसलिए उस टाइम आपको भी डिसिप्लिन में रहना है, आप सिर्फ बच्चे को कहते हैं कि वो हेल्दी नहीं खाता, उसको खिलाने वाला कौन है? अगर आप उसके सामने डेली चाउमीन पिज्जा ला रहे हैं फिर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटा तू घिया क्यों नहीं खा रहा, तो गलती तो फिर हमारी भी है, तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, और डिसिप्लिन बचपन से बच्चे को शो कीजिए कि आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, तो दूध भी पीना है, तो उसको समझ आएगा कि ये बैलेंस न्यूट्रिशन है।
1: और मैम एक इसमें एक सवाल है कि जब बच्चों के दांत आते हैं तो उनकी तबीयत कुछ

0: गड़बड़
1: बिगड़
0: हो
1: जाती
0: जाती है,
1: है।
0: बिगड़ जाती है। तो इसकी क्या वजह है और आयुर्वेद में इसके लिए क्या समाधान ऐसा है?
1: ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो बच्चों के डेंटिशन के टाइम ये होते हैं कुछ चेंजेस, तो उस टाइम एक दो मेडिसिन्स हैं आयुर्वेद में, वो हम उनको दे सकते हैं और उससे उनका स्वास्थ्य बेटर रहता है। रागी का आटा यूज कीजिए उस टाइम, उसकी ग्रेवी बना के थोड़ा सा ऐसे ही लपसी टाइप बना के दे सकते हैं, चीला बना के दे सकते हैं
0: जी
1: उनको। और कुछ एक दो मेडिसिन्स भी हैं, मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाहूंगी, अपने आप मत लीजिए, किसी डॉक्टर से मिलिए,
0: जी
1: वो स्पेसिफिक स्टेज के लिए आयुर्वेद में वर्णित है जो
0: जी
1: आप बच्चे को दे सकते हैं।
0: जी मैम, एक और मैसेज आ रहा
1: जी
0: है कि अभी का जो समय है उसमें लेट मैरिजेस हो रहे हैं, मतलब 30 के बाद शादियां हो रही हैं, जिससे माँ के दूध में इसमें कमी आती है क्या लेट मैरिजेस होने से? तो ये पूछ रहे हैं नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड से, तो इसमें क्या बताएंगे आप?
1: इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, डाइटरी चेंजेस भी हैं आजकल, वो डाइट्स लोग कम खाते हैं जो पहले सारे लोग लेते थे,
0: जी
1: प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट टाइम नहीं है बनाने का, तो रेडी टू ईट मील्स होते हैं कई बार, ये भी कुछ कारण है। एक्सरसाइज कीजिए और अपनी डाइट को वैसा रखिए, आप दूध का इंटेक ज्यादा कीजिए, फ्रूट्स लीजिए, सब्जी दाल अच्छे से लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। फिर भी अगर दूध कम आता है तो
0: जी
1: स्ट्रेस भी उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है, कई
0: जी
1: बार वर्किंग लेडीज को जॉब का भी स्ट्रेस होता है, घर का भी स्ट्रेस होता है, तो
0: जी
1: इसलिए भी दूध कम आता है। उसके लिए कई मेडिसिन शतावरी वगैरह ले सकते हैं और कई मेडिसिन भी हैं जो दूध बढ़ाने में काम करती हैं, मोरिंगा बहुत अच्छा है वो ले सकते हैं रूटीन में, वैसे सब्जी में यूज कीजिए, लहसुन है, मेथी है, ये चीजें ले सकते हैं।
0: नहीं तो जैसा मैम ये पूछ रहे हैं कि 30 साल के बाद अगर शादी होती है तो क्या उससे
1: ऐसा सबके साथ नहीं है।
0: सबके साथ नहीं होता है? और मैम एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं अमर रमेश कुमार
1: जी
0: खत्री, इनका पूछना है कि न्यूबॉर्न बेबी का मदर फीड के अलावा और कोई मिल्क या शेक दे सकते हैं क्या? मतलब न्यूबॉर्न बेबी है अगर और माँ का दूध नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए?
1: अगर माँ का दूध नहीं आ रहा
0: जी
1: तो उसका, बिल्कुल नहीं आ रहा तो
0: जी
1: उसका सब्स्टिट्यूट फिर गाय का दूध है या बकरी का दूध है, ये दोनों की स्टडी हुई हुई है, काफी हद तक वो मैच करते हैं, ये आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपका दूध आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी
0: जी
1: तब आप दीजिए, और अगर कम आ रहा है तो आप मेडिसिन लीजिए, उससे आपका प्रॉपरली ठीक हो जाता है वो।
0: हाँ, तो मतलब न्यूबॉर्न बेबी का अगर माँ का दूध नहीं है तो फिर वो गाय का दूध या बकरी का दूध, ये दोनों वो दे
1: यस
0: सकते हैं।
1: यस
0: तो
1: यस,
0: मैम मात्रा क्या होनी चाहिए, क्योंकि बेबी
1: मात्रा नहीं
0: को?
1: बता सकते, वो बच्चे पे
0: अच्छा
1: डिपेंड करता है कितना वो
0: जी,
1: पचाएगा, कितनी उसको भूख
0: कितनी
1: है।
0: कितनी ले सकता
1: हाँ
0: है? तो मैम ये तो माँ का दूध कहते हैं अमृत समान होता
1: जी
0: है, और पहला दूध वो जो पीला दूध होता
1: हाँ
0: है वो कहते हैं कि बीमारियों से लड़ने में अगर हम बड़े होते हैं ना तो वो लड़ने में वो इम्यूनिटी को कहते हैं कि बूस्ट करता है,
1: बिल्कुल
0: तो उस दूध को की पहचान कैसे हो, बच्चे को कैसे पिलाना चाहिए, ये अगर नई नई कोई माँ बनी है तो उनके लिए बता दीजिए आप।
1: उस दूध की पहचान कोई नहीं जो पहली बार निकलता है, बस आप डायरेक्ट बच्चे को लगाइए ब्रेस्ट को ताकि उसको वो सक करे और वो दूध फर्स्ट वाला पी सके। ठीक है।
0: जी, और मान लीजिए कि बच्चा अगर सक नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका क्या, उसको पिलाने का क्या उपाय होना चाहिए, क्योंकि वो दूध कहते हैं कि कुछ देर ही रहता है शायद?
1: नहीं, थोड़ा 3-4 दिन रहता है, सो उसको
0: जी
1: 2-3 बार लगाएंगे तो बच्चा अपने आप करता है सक उसको।
0: जी उसको शक करता है। और तो कहते हैं गर्भवती माँ को क्या क्या करना चाहिए जो होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य और पोषण सही रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों का जो स्वास्थ्य और पोषण होता है वो गर्भावस्था में ही तय हो
1: बिल्कुल,
0: जाता है।
1: इसमें आयुर्वेद में मासानुमासिक परिचर्या बताई गई है,
0: जी
1: गर्भिणी परिचर्या बताई गई है
0: जी जी
1: कि गर्भिणी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हर मंथ की अलग डाइट है। मैं इसमें मेन मेन चीजें बताऊंगी
0: जी जी
1: कि ज्यादातर इसमें मधुर रस का यानी थोड़ा मीठा खाना, मीठे का मतलब ये है कि स्पाइसी बहुत ज्यादा ना लें इस पीरियड में,
0: जी
1: दूध का सेवन ज्यादा करें,
0: जी
1: मक्खन भी बीच बीच में किसी किसी मंथ में बताया गया है, कुछ प्लांट्स हैं जैसे गोखरू वगैरह है पर्टिकुलर मंथ्स में उनका सेवन करना चाहिए,
0: जी
1: जिससे जो फीटल ग्रोथ है वो प्रॉपर होती है, उसके पूरे अंग प्रॉपर होते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। तो इसलिए ये कुछ चीजें जो आयुर्वेद में गर्भिणी परिचर्या है, जो आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर है,
0: जी
1: उसको
0: जी
1: भी अगर आप फॉलो करेंगे तो फीटल हेल्थ बच्चे की बहुत बढ़िया रहेगी,
0: जी
1: आप इस पीरियड में स्वस्थ रहने के लिए खुश रहें, मदर को देखिए आप सिर्फ डाइट की बातें कर रहे हैं कि उसको क्या खाना चाहिए
0: जी जी।
1: अगर वो प्रेग्नेंट लेडी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, आप उसको कंटिन्यूसली स्ट्रेस दे रहे हैं, जॉब का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी का स्ट्रेस है
0: जी जी।
1: तो आप 20 बार अच्छी बार डाइट दे दें, आप उसका असर नहीं होना है। जो एक मानसिक खुशी

0: भी होती है ना, जो दिल से आदमी पहले खुश होता था वो चीज साथ में होनी चाहिए डाइट के। खाली आपके बहुत अच्छी डाइट से फर्क नहीं पड़ेगा। लेडीज का आयुर्वेद में ये वर्णित है, किसी गर्भवती स्त्री का ध्यान ऐसे रखना चाहिए जैसे आप एक तेल की भरी हुई कटोरी को लेके चल रहे हैं। तो देखिए आप कितने ध्यान से चलेंगे कि तेल गिरे ना। ऐसे ही गर्भवती स्त्री का ध्यान रखिए कि वो उसका खान पान का, उसकी मानसिक, उसकी स्थिति खुश रहे वो, और उसकी वैसे बाकी हेल्थ का भी। तभी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि फीटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जैसा माँ वैसा
1: बच्चा, है ना।
0: तो इसलिए खाली डाइट की बात ना करें, बाकी चीजों को भी देखें कि उसको खुश भी रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तभी अंदर बच्चा भी आपका ठीक रहेगा।
1: तो मैम अभी जो है वर्किंग लेडीज हैं
0: जी,
1: ऑफिस जिनको जाना है, तो उनको अपने खान पान का, अपने मेंटल स्ट्रेस का, इन सब के लिए आयुर्वेद में कोई ऐसी दवा हो जिससे वो दवा लेने से उनके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहे, पोषण बेहतर रहे, और साथ साथ गर्भवती का भी।
0: इसमें आयुर्वेद में जो मैंने अभी जैसे पिछली बार उसमें बताया है
1: जी,
0: जो मासानुमासिक वटी भी आती है, आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर है, जैसे हम एलोपैथिक में करते हैं वैसे आयुर्वेद में एंटीनेटल केयर है।
1: अच्छा,
0: हर मंथ के लिए आपको क्या डाइट है, क्या करना चाहिए, तो आप उसके साथ साथ आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर भी लें, ताकि आपकी हेल्थ भी ठीक रहे और आपके बच्चे की भी ठीक रहे। और जो प्रेगनेंसी योगा है वो साथ में कीजिए, खुश रहिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, डाइट लीजिए। तो इससे मेरे को नहीं लगता वर्किंग लेडीज को कोई एक्स्ट्रा फर्क पड़ेगा कि मैं वर्किंग हूं तो, बल्कि उससे मैंने देखा है वर्किंग लेडीज थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोड बहुत होता है।
1: जी मैम, एक गाना सुन ले मैम।
0: जी जी जी
1: एक अच्छा सा गाना सुनवा देते हैं आपको
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, ये गाना माँ को समर्पित, मतलब कहते हैं ना कि माँ में तो पूरी दुनिया ही समाई हुई
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो और माँ के लिए बच्चों की देखभाल करना, बच्चों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, क्योंकि एक मतलब छोटे बच्चे की तबीयत अगर खराब हो जाए तो माँ की नींद खराब हो जाती
1: बिल्कुल,
0: है,
1: बिल्कुल,
0: रात में सो नहीं पाती वो।
1: बिल्कुल।
0: और अभी जो मौसम चल रहा है, ये बारिश का मौसम, इसमें है कि छोटे बच्चे क्या, बड़े बच्चे जो बाहर खेलने जाते हैं, वायरल फीवर है, डायरिया है, मतलब छोटी छोटी बीमारियों से परेशान हो जाते हैं, और उनकी तो ऐसे मौसम में उनकी देखभाल कैसे करें हम?
1: इसमें एक तो हमें पानी जो है या तो बॉइल्ड वाटर पिए, क्योंकि अक्सर वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं। बच्चे अगर पानी में भी खेल रहे हैं, आके अच्छे से उनके साबुन से हाथ पैर धुलवाएं उनको, और क्योंकि स्किन डिजीजेज भी बारिश के पानी से हो जाती है गंदगी की वजह से। और अगर एक किसी को आजकल वायरल भी बहुत फैला हुआ है, कोई अगर स्नीजिंग हो रही है तो उससे एटलीस्ट बारिश से बचें और मास्क लगा के रखें। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है, बीच बीच में हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं, ताकि आपको खांसी जुकाम और ये वायरल जो आजकल फैला हुआ है ये ना हो। पेट खराब है बहुत ज्यादा तो मसूर की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, क्योंकि डायरिया भी हो जाता है इस सीजन में बच्चों को अक्सर, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाती है।
0: स्कूल में गए, खेलने गए, खेलने के मैदान में।
1: हाँ, और कुक्ड मील्स लें, कच्चे कुछ भी कटा हुआ बाहर से ना लें, वो भी एक इन्फेक्शन का कारण है। सैलड्स या फ्रूट्स कटे हुए बाहर से ना खरीदें।
0: मैम, और आजकल है ना कि बाहर से, मतलब कल एक बच्चा आया तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल हो रही थी, तो ये आंखों में लाली आ जाना तो क्या कोई बड़ी समस्या तो नहीं?
1: कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, वही मैं बोल रही हूँ, इस सीजन में मैक्सिमम डिजीजेस फैलती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए या तो आप स्पेक्स लगा के जाएं अगर आपको प्रॉब्लम है, अदरवाइज आइसोलेटेड रहें तो बेटर है, ताकि दूसरों को ना हो।
0: और मैम, आपने बताया काढ़ा, तो ये काढ़ा मतलब हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि अगर मौसम अगर कुछ जुकाम वाम हो गया तो काढ़ा बना के दे दिया जाता था, तो हम तो जैसे तैसे पी लेते थे, लेकिन आज के बच्चे वो काढ़ा मतलब कैसे बनाए जो उनको स्वाद लगे?
1: उनको एक काम करो, काढ़ा बना के उसकी चाय बना के दे दो थोड़ी सी।
0: जी,
1: मत कहो कि ये काढ़ा है,
0: ये काढ़ा है। तो उसमें काढ़ा में क्या क्या, जैसे तुलसी पत्ता है,
1: मुलेठी डाल सकते हो, तुलसी डाल सकते हो थोड़ी सी, जरा सी एक चुटकी भर काली मिर्च डाल सकते हो, बस इतना काफी है,
0: बस उसका काढ़ा बन गया।
1: हाँ,
0: और उसे मतलब मीठा डाल के दें या नमक थोड़ा,
1: उसको बॉयल करने के बाद जब आपने गैस से उतार लिया, थोड़ा सा कोसा रह गया, तब उसमें जरा सी शहद डाल के दे दीजिए, तो ये काफी है, उससे बच्चे को थोड़ा सूदिंग वो मिलेगा। और गार्गल्स कर सकते हैं गर्म पानी में नमक और शहद डाल के या हल्दी डाल के।
0: और तुलसी का पत्ता तो कहते हैं कि अभी के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए,
1: तुलसी के पत्ते को कभी चबाना नहीं चाहिए, उसमें मरकरी होता है, तो इसलिए उसका काढ़ा में, इसीलिए मैंने बोला है। और दूध में तुलसी बॉयल नहीं करनी चाहिए।
0: जी, ये बहुत बड़ी बात है कि दूध में तुलसी बॉयल मत कीजिए और तुलसी का पत्ता कच्चा मत दीजिए।
1: हाँ, चबाना नहीं,
0: चबाना नहीं, मतलब उसका तो वो जूस निकाल के,
1: हाँ,
0: जैसे शहद के साथ,
1: हाँ,
0: उसको दे सकते हैं, या नमकीन पसंद है तो कुछ नमक डाल के, या अदरक या कुछ गोल
1: अदरक भी डाल सकते हैं इस काढ़े में थोड़ी सी।
0: जी जी,
1: वो भी अच्छी है गले के लिए, तो बस इतना काफी है। बच्चा फिर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो बच्चे पीते नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा चीजें नहीं बनाती।
0: ये काढ़ा सुन के ही लगता है ना कि काढ़ा,
1: इसको बॉयल करके थोड़ा सा इसी में चाय बना के थोड़ी सी चाय दे सकते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी, ऐसे तो वो मतलब कहते हैं कि बचपन में ऐसे ही स्ट्रांग होते हैं बच्चे, जैसे अगर उनका पालन पोषण अगर सही किया गया हो, अगर उनके पोषण पर ध्यान दिया गया हो, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया हो, तो बच्चे मजबूत होते हैं शायद। तो लेकिन अगर कोई बच्चा कमजोर है, बार बार बीमार हो रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद में क्या कोई ऐसी दवा हो जो बच्चा भी, जैसे सवाल भी किसी ने पूछा था कि बच्चा खाता नहीं है, तो आपने बताया कि ये बना के खिलाइए, तो ऐसे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या कोई इम्यूनिटी बूस्टर भी जरूरी होता है?
1: जैसे मैंने अभी बताया था ना, स्वर्ण प्राशन बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए, च्यवनप्राश भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए। और इसके अलावा प्रॉपर खाना खाएं सुबह दोपहर शाम, उससे एक्सरसाइज करें, तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, वो भी एक कारण है इम्यूनिटी कम होने का।
0: और बच्चों

0: देखते हैं ना कि आजकल है ना कि आउटडोर गेम्स छोड़ के वो
1: हाँ
0: इंडोर गेम्स मतलब
1: फोन
0: घर
1: पे
0: में
1: सारी
0: रह के
1: गेम्स
0: फोन
1: खेलते
0: पे
1: हैं।
0: खेलते रहते हैं, तो बाहर जाना, खेलना,
1: हाँ
0: मिट्टी में भी
1: सनलाइट
0: खेलना,
1: लेना,
0: जी उतना ही
1: हाँ
0: जरूरी
1: उतना
0: होता
1: ही
0: है।
1: जरूरी है।
0: और पहले तो था कि हम तो बस स्कूल से आए, रखा
1: हाँ
0: बैग रखा और होता रहता था कब खेलने जाए।
1: हाँ
0: लेकिन आजकल बच्चों को देखते हैं ना कि वो घर में रह के ज्यादा खेलना, कैरम खेलना है, लूडो खेलना है, ज्यादातर समय उनका मोबाइल में भी चला
1: बिल्कुल
0: जाता
1: बिल्कुल
0: है। तो मोबाइल से दूरी कैसे बनाए, ये भी एक टिप्स दे दीजिए
1: हाँ,
0: कि बस।
1: इसमें तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आप आजकल इतना माहौल खराब है कि आप किसी अननोन के पास बच्चे को छोड़ेंगे भी, सोचेंगे उससे पहले। तो पेरेंट्स उनके साथ खेलें आउटडोर गेम्स, उनको
0: जी
1: पिकनिक पे लेके जाएं, तो उनका ध्यान डाइवर्ट होगा कि ये भी अच्छा लग रहा है, तो वो इंटरेस्टेड होंगे इस काम को करने में भी।
0: तो ये तो अच्छी टिप्स रही। और एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
2: जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अमित त्यागी बात कर रहा हूँ, ग्राम नंगोला यूपी से।
0: नमस्ते नमस्ते, अपना सवाल पूछिए।
2: डॉक्टर मैम, मेरे सवाल है कि मेरी भतीजी है 6 साल की, और वो खाने पीने से पीछे हटती है, मतलब हमें तो खाना देंगे वो भागे खाने को देख के, तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए, और इस तरह के तो बच्चे उनके लिए भी थोड़ा सा हो जाएगा।
1: आप एक तो उनको कुछ भी, मैंने पहले भी बताया है, कुछ टेस्टी सा बना के रखिए सामने, ताकि वो बच्चे उसको खाएं। जैसे अब चाउमिन है, सारी दुनिया कहेगी अनहेल्दी है, आप उसको हेल्दी तरीके से बनाइए। आप उसके वो आटे में पालक मिक्स करके और उसको गूंद के, जैसे चाउमिन की जो मशीन है या कोई ऐसी घर पे और भी चीजें हैं, उनसे वो चाउमिन की वो बना के
0: जी
1: बॉईल करके चाउमिन की तरह उसको सब्जियां डाल के बना दीजिए। बेसिकली ये क्या हुआ, रोटी सब्जी तो हुई, तो थोड़ा सा अपने कुकिंग एबिलिटीज को चेंज कीजिए। अब दाल है, मैं बोल रही हूँ दाल का चीला खिलाओ, और वो बच्चा अगर नहीं खा रहा, उसको स्टीम करके उसकी किसी भी तरह से उसकी प्रोपोर्शन चेंज करके कुछ नई रेसिपीज बना के उसको दो। बेसिक्स तो चीजें वही रहेंगी। और अगर उसको बिल्कुल भूख नहीं लगती, तो आप जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा आप नमक लगा के दे सकते हैं, धनिए पुदीने की चटनी दीजिए, सूप बनाइए डिफरेंट टाइप्स के, ताकि वो कुछ उसका नमक, काली मिर्च डालिए उसमें, थोड़ा लहसुन डालिए। उसका अगर पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो वो भी बेटर होगा। और इसके बावजूद भी अगर बच्चा खाना नहीं शुरू करता, तो कृपया किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए, वो उसकी नाड़ी देख के आपको सब कुछ बता सके और डाइट बता सके, किससे उसकी डाइट स्टार्ट करनी है।
0: मैम, एक सवाल है इनका। इनका नाम शहनवाज है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा 7 साल का है, बरसात में उसके हाथों पैरों में कुछ खुश्की सी होती है या कुछ चकत्ते से आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए ये क्या करें?
1: ये एक डिजीज है, अगर चकत्ते से आते हैं, शीतपित बोलते हैं आयुर्वेद में, और अगर ड्राइनेस है तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए अगर बारिश में ही स्पेसिफिक आती है, तो हो सकता है किसी इन्फेक्शियस वाटर में वो खेलता हो, उसकी वजह से होती हो। नीम के पानी से एक बार वॉश करके देखिए, आप उसको नहलाइए नीम के बॉइल्ड वाटर से 3-4 बार। अगर फिर भी नहीं ठीक होता, तो कृपया किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाइए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए।
0: मैम, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं।
1: जी
0: हेलो
3: जी, नमस्कार।
0: जी
1: नमस्कार जी,
0: नमस्ते नमस्ते।
3: दीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी अपना सवाल
3: हमारी
0: पूछिए।
3: जो गर्भवती माताएं हैं, आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या, अब वर्षा ऋतु चल रही है, तो हमारी जो गर्भिणी माताएं हैं उनके लिए कौन सा उचित आहार विहार है, कृपया विस्तार से बताएं।
1: गर्भिणी के लिए अगर पूरा स्पेसिफिक वर्षा ऋतु की बात करूं तो नहीं चलेगा। गर्भिणी में मासानुमासिक परिचर्या चलती है, किस मास में क्या आहार देना है, वो मैंने पहले भी बताया है कि उसमें दूध देते हैं अलग अलग प्लांट्स के साथ, मक्खन के साथ, और एक हेल्दी डाइट उसको लेनी चाहिए। वर्षा ऋतु में एक जनरलाइज्ड वर्जन में बता देती हूँ सबके लिए, कि आपको इस सीजन में शहद का सेवन करना चाहिए, स्प्राउट्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायु बढ़ती है सबकी तो वो और ज्यादा बढ़ेगी। मटर, गोभी और व्हाइट चने इस सीजन में थोड़े से कम लीजिए। हल्का खाना खाइए, क्योंकि मंदाग्नि हो जाती है, यानी भूख कम लगती है सबको, स्पाइसी खाने का दिल करता है, तो आप नमक, काली मिर्च डाल के सूप्स ले सकते हैं थोड़े थोड़े, और फ्रूट्स का इंटेक बीच बीच में कीजिए, ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। एनीमा भी थोड़ा थोड़ा करवा सकते हैं सारे। तो ये एक बेसिक सी मैंने वर्षा ऋतु की जो ऋतुचर्या है वो बताई है, ये सब कर सकते हैं, बट गर्भिणी के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर से कंसल्ट करके फॉलो करें।
0: जी जी जी मैम, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आजकल बच्चों में देखती हूँ कि पैरों में दर्द की शिकायत, जैसे थोड़ा सा भी खेल कर आएंगे तो बोले पैरों में दर्द है, तो ये क्या कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की कमी, ऐसा होता है क्या? और आयुर्वेद में इसका क्या उपाय, क्या करें
1: इसके लिए? एक तो मालिश जरूर करें ऐसे बच्चों की, एक वो सनलाइट जरूर लें, खेलें, धूप में भी थोड़ा इधर उधर चलें ताकि बाहर निकले।

0: घर से सारा दिन एसी में, गाड़ी में एसी, घर में एसी, तो
1: जी
0: बिल्कुल सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, ये भी एक कारण है। हेल्दी डाइट लें, जिनकी डाइट में प्रॉपर देसी घी होना चाहिए, दाल सब्जी रोटी और दूध पिए। खाली जंक फूड्स खाते हैं कुछ बच्चे और बहुत टेंट्रम्स होते हैं अगर वो ना दो आप, तो ये भी एक कारण है। वीकनेस होती जाती है धीरे धीरे करके, तो जब बच्चे को वीकनेस होती है, पेन हो रही है, तो वो इरिटेट होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि वो प्रॉपर खेल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, सनलाइट ले रहा है, डाइट ले रहा है और मसाज, ये सब करेंगे तो ये सब चीजों से निजात पा सकते हैं।
2: मतलब बच्चों को मसाज जरूरी है।
0: बिल्कुल।
2: और मैम खान पान में जैसे कि कभी कभी, मतलब ऐसे तो जनरली खाएंगे ही, घर का खाना तो देना ही चाहिए, लेकिन क्या एक कभी कभी हमें दे देना चाहिए?
0: बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर पूरा एक महीना बच्चा तीनों टाइम आपके हिसाब से रेगुलर खाना हेल्दी खा रहा है, तो कभी कभार चीटिंग करोगे तो इट्स ओके, वो पच जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आप हेल्दी नहीं खा रहे रोज यही, और दूसरा अगर आप खेलते हो अच्छे से जो रिग्रेस एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है, तो वैसे भी कुछ कभी कभार चीटिंग की हुई चल जाएगी।
2: मतलब जंक फूड कभी कभी कभी कभार दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं जंक फूड में?
0: अच्छा, ये
2: मतलब
0: भी
2: क्या है जो ज्यादा नुकसान न करे? क्योंकि ये जो मसाले होते हैं, मुझे लगता है कि वो मसाले खतरनाक होते हैं।
0: इडली खिलाइए बच्चे को बाजार से, बहुत हेल्दी है वो।
2: तो वो इडली तो खैर मैम, घर में अगर इडली बनाए तो वो कौन सा, मतलब जो जनरल बनाते हैं चावल दाल वाली इडली या फिर सूजी के?
0: चावल दाल वाली ज्यादा बेटर है, फर्मेंटेड है
2: जी।
0: सूजी वाली इंस्टेंट होती है वो, अगर सूजी को देखा जाए थोड़ा सा वेट बढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प करती है। चावल दाल वाला जो पुरुष है वो एक्चुअल फर्मेंटेशन होती है, तो वो थोड़ा ज्यादा हेल्दी है। और सांबर भी हेल्दी ऑप्शन में आता है, तो वो भी दे सकते हैं। रसम भी है, जैसे कुछ लोगों ने बोला बच्चे को भूख नहीं लगती, खाता नहीं, तो उससे भूख स्टिमुलेट होगी।
2: और रसम जो इमली का बना होता है या
0: इमली
2: टमाटर,
0: काफी चीजें और डलती हैं उसमें, वो दे।
2: रसम जरूरी है? मतलब रसम खाए तो वो तो चटपटा
0: पीते
2: भी
0: लगता है। हाँ,
2: पीते भी है।
0: छल्ली आजकल आ रही है, भुट्टा जो है,
2: भुट्टा,
0: दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, उसको बॉयल करके पिए तो जिनको यूरिन नहीं आता वो पी सकते हैं। तो इसलिए भुट्टा खाइए, नमक, काली मिर्च, नींबू लगा के एंजॉय कीजिए। जंक फूड देखिए मैंने बता दिया हेल्दी।
2: और या फिर उसको जैसे वो स्वीट कॉर्न आता है,
0: स्वीट कॉर्न थोड़ा मीठा ज्यादा कईयों को नहीं पसंद, तो भुना हुआ जो भुट्टा है वो अच्छा,
2: जो है जो हम खाते थे, जो हमें पसंद था, वो सड़क के किनारे ऐसे भी मिल जाया करता था और इतना टेस्टी होता था। तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके वो आदत दिलानी चाहिए, उन्हें ले जाएं बाहर। तो और पानी पूरी
0: ये घर पे बनाइए आप, फिर ये बहुत हेल्दी है
2: जी। फिर ये हेल्दी है।
0: हाँ, उसमें धनिया पुदीना डाल के, नींबू डाल के आप पानी बनाइए उसका
2: जी, जी, जी।
0: तो वंस एक महीने में एक बार खा लीजिए, मैं अलाउ कर रही हूँ, पर बनाइए घर पे
2: जी। घर पे बना हुआ जो भी खाना है वो स्वास्थ्य के लिए,
0: क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं ना। आप सफाई से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे। अब बाहर वाले ने 100 लोगों के लाना है, उससे ज्यादा उम्मीद क्या करोगे
2: जी। जी, तो बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में जितना, मतलब हमारे घर का, घर के खाने का योगदान होता है, वो बाहर के खाने तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, और कभी कभी चल सकता है ना। तो मैम ये मौसम जो है, ये मौसम बहुत बदल बदल सा रहा है, और इस बदलते मौसम में बच्चों की बीमारियां, बड़े भी बीमार होते हैं, बुजुर्ग जो हमारे घर में हैं वो भी बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे में एक कुछ ऐसा हो जो इम्यूनिटी वाला हो, जो सबके लिए बेहतर हो, तो वो आप कौन सा, मतलब कौन सी रेसिपी ऐसी बता देंगी आप?
0: उसमें एक तो जैसे मैंने बोला था ना, शहद का सेवन करें
2: जी जी जी।
0: अगर आपको मीठा, मान लो कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं, उसमें आप चीनी डालते हैं या गुड़ डालते हैं, तो उसमें शहद डाल के पीजिए इस सीजन में, ठीक है। अदरक का सेवन कीजिए थोड़ा बहुत, ताकि आपका जो पाचन शक्ति है वो ठीक रहे। सूप पीजिए, भुट्टा खाइए
2: जी,
0: और बहुत हैवी मत खाइए हमेशा, बीच बीच में लाइट डाइट्स लीजिए। इतना सब करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे आप
2: जी। और एक क्वेश्चन इनने, रितु है ये दिल्ली से है, ये पूछ रही है कि अगर एनीमिया हो तो कौन सा फ्रूट और ड्राई फ्रूट कौन सा खाना चाहिए?
0: इसके लिए किशमिश लीजिए आप एनीमिया के लिए। आयरन की कढ़ाई में आया, आयरन के यूटेंसिल्स में खाना बनाइए आप। फ्रूट्स में अनार ले सकते हैं, चुकंदर भी खाइए आप, उससे भी, गाजर से आपका बढ़ेगा ये आयरन। और काले छोले अगर काली कढ़ाई में बनाएंगे, आंवला भी अच्छा है, अंजीर ले सकते हैं आप। और इसके अलावा एक्सरसाइज जरूर कीजिए, और सिट्रस फ्रूट्स कुछ ना कुछ साथ में जरूर लीजिए, ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। एनीमिया के लिए देसी घी भी बहुत इफेक्टिव है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, उसका भी सेवन कीजिए और प्रॉपर डाइट लीजिए, ताकि आपका एनीमिया ठीक हो जाए।
2: हाँ, ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम हाँ। है, औरतों में कुछ ज्यादा होती है ये एनीमिया, मतलब खून की कमी हो गई तो खून की कमी को।
0: देसी घी भी बहुत अच्छा है इसके लिए।
2: मैम देसी घी तो हम सुन रहे हैं, लेकिन होता रहता है कि देसी घी ज्यादा खा लेंगे तो कहीं मोटापा न बढ़ जाए।
0: ये एक मिथ है, आप एक्सरसाइज कीजिए और एंजॉय कीजिए थोड़ा बहुत देसी घी
2: जी। और तेल में सरसों तेल या रिफाइंड?
0: तिल का रिफाइंड तो बिल्कुल नहीं, तिल का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, गाय का देसी घी, चारों किचन में रखिए, मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं कभी कोई कभी कोई।
2: तो ये पोषण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी भी मिल गई है, और बच्चों को अलाउ हो गया है कि ठीक है महीने में एक बार जंक फूड भी खा लेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हमने बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और आयुर्वेद, इस विषय में डॉक्टर रीना अरोरा से बातचीत की। इन्होंने हर सवाल का जवाब आपको दिया। हमने आपसे आज बहुत कुछ जाना डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको भी पसंद आया होगा, डॉक्टर साहब आपको भी पसंद आया होगा। अगर आप कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर से संबंधित कोई भी फीडबैक देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है health@delhi.gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, आप पेश हैं एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा करा सकते हैं। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बनी रहिए हमारे साथ।

आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। आप सभी आज हर्षोल्लास के साथ आज का ये पावन दिन मना रहे हैं और देखिए मौसम भी कितना खूबसूरत है। बारिश की जब बात होती है और श्री कृष्ण का ताल्लुक इससे बहुत ज़्यादा गहरा है। अगर श्री कृष्ण के बारे में आपने पढ़ा है तो आप कहीं ना कहीं इस बात से अवगत होंगे कि जब श्री कृष्ण जन्मे तो किस प्रकार वर्षा हो रही थी और किस प्रकार वासुदेव उन्हें अपने सर पर एक टोकरी पर बिठाकर ले जा रहे हैं माँ यशोदा के हाथों सौंपने के लिए। तो कृष्ण ने हमेशा से ही हमें मुश्किल समय में भी अपने आप को संतुलित रखने का संदेश दिया है। कर्म करता चल, यही तो जीवन का आधार है। और कृष्ण ने हमेशा हमें प्रगति मार्ग पर चलने के लिए आश्वस्त किया है और कहा है कर्म ही प्रधान है। समय अब हो गया है 4:05 और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं यह अगला कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम जिसका नाम है लम्हे, जहां पर आपको कुछ टिप्स दी जाएंगी, पॉजिटिव टिप्स जो आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत काम आएंगी।

नमस्कार शानदार श्रोताओं, नए प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, यह समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहां एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है, एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहां बच्चा प्यार, स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करता है। एक अच्छे माता पिता वह होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्ते को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और ना ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम
तय कर सकते हैं, जिसमें दिन के 3 मील में से कम 1 मील साथ खाए। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है, ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक, जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांट कर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चों से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं, जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है, जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीते कहानी आलोर लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही का फेवरेट शो। फेवरेट शो इसलिए क्योंकि इस शो को सुनते हैं हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर्स, और यंगस्टर्स के साथ साथ पापा मम्मी भी सुनते हैं जानने के लिए कि हमारे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, क्या मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे हैं। वैसे आपके पेरेंट्स की सबसे अच्छी बात यही है कि वो अपने बच्चों के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है जब आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी मॉडर्न हैं। मॉडर्न यहाँ इसका अर्थ बस इतना सा है कि हमें अपनी सोच को बड़ा करना है, खुला रखना है, लेकिन अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को कभी भी अपने हाथों नहीं गंवाना है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और बस आपसे छोटी सी दरख्वास्त, छोटी सी गुजारिश कि बने रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए इस नाचीज यानी कि अपनी इस दोस्त गीतिका उनियाल को। तो होंगी आपके साथ बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारे यूथ हमेशा यही सोचते हैं कि वो कैसे बहुत ज़्यादा हैपनिंग दिखे, उनके पास कैसा स्टाइल हो, कैसा स्वैग हो, कौन सी ऐसी चीज़ हो जो उनके पास हो। जिंदगी की लग्जरीज को ढूंढ रहे हैं आप, लेकिन आपसे बस यही कहेंगे कि लग्जरीज के साथ साथ करना है आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम।

भाई हुक्का भी तो कर रहे हैं आजकल और कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे ये जो मोबाइल फोन्स हैं ना, हमें किसी से भी दुनिया में कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, फोन तो जैसे इनकी जान है। फोन वैसे सबकी जान है, चाहे हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, फोन के बिना जीना मुश्किल है। और फोन से ज्यादा सोशल मीडिया के बिना जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब वो इसलिए मुश्किल भी इसलिए है क्योंकि हमें दुनिया में किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, पूरी दुनिया एक साथ आपको एक ही जगह पर मिल जाती है, जिसकी वजह से भले ही सोशल कनेक्शंस हमारे ख़त्म क्यों ना हो रहे हों, हम किसी से मिल रहे हों या ना मिल रहे हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया इतना एंगेजिंग है कि हम 24 घंटे उस पर बिता सकते हैं। अब हमारे जो यूथ है, सिर्फ यूथ का बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम है ही यूथ के लिए, तो इसलिए यहाँ पर बार बार यूथ कह रही हूँ। हालांकि आप ये कहेंगे कि हमारे घर में तो सभी ऐसा करते हैं, जी आपके घर में सभी ऐसा करते हैं, पर हमारे जो यूथ हैं दे आर वेरी एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं दिल से दिमाग से, और वो ये सोचते हैं उन्होंने लाइफ में जो भी स्किल्स सीखी हैं टिल एज, तो वो क्यों ना सोशल मीडिया के सहारे अपनी स्किल्स को दुनिया तक पहुँचाएँ, जो किसी मायने में अच्छा भी है और गलत भी है। अच्छा इसलिए है, आप इतने टैलेंटेड हैं, आप दुनिया को अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। अब आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास ये टैलेंट है, स्किल है, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी स्किल्स को दिखा रहे हैं और बहुत छोटी उम्र में, कम उम्र में कमा भी रहे हैं। बस एक छोटा सा सजेशन आपके लिए, अपनी मेंटल हेल्थ का अपना खूब ख्याल रखिएगा। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो, और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब बहुत सारी तारीफें मिलती हैं तो उसके साथ बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। तो क्रिटिसिज्म को अपने साथ दोस्त बनाकर रखिए, उससे आपकी मेंटल हेल्थ पर कोई असर नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया है तो आप उससे निकलने का रास्ता भी ढूंढिए, और अपने दिल को बार बार समझाइए, जानी क्यों दिल ये जानता है आई विल बी ऑल राइट। क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, ये घर में अपने मम्मी पापा तक को भी समझा देते हैं, आप परेशान मत होइए, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब संभल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो जब आप उनको समझा सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं, आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है। सच कहा ना, बिल्कुल 100%।

यस यू विल बी ऑल राइट, यू आर ऑल राइट, आप एकदम चुस्त हैं, आप दुरुस्त हैं, बार बार अपने आप को ये समझाते रहिए। और लाइफ में तो चलता रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन बस हर मुश्किल घड़ी में अपने आप को ये समझाते रहना कि हम बेहतर हैं और कल हम बेहतरीन होंगे, लाइफ जीने का सबसे सबसे आसान तरीका है। भले ही मुश्किल वक्त में खुद को समझाना बहुत मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए मुश्किलों में ही तो मुश्किलों से लड़ने का मजा है। वैसे मुझे वो यंगस्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत कम उम्र में ना कमाने लगते हैं, कमाने के साथ साथ जो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते, दे कीप ऑन लर्निंग, वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। कमाते इसलिए हैं क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने घर में पैसे नहीं मांगना चाहते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब बड़े हो गए हैं, अब पापा मम्मी से घर पर पैसे नहीं मांगेंगे, कमाएंगे भी, पढ़ाई भी करेंगे और कुछ सीखेंगे भी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं नहीं, दिल लगाकर अभी सिर्फ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद जो नतीजे आएंगे ना वो बाकमाल होंगे और उसके बाद तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे ही कमाएंगे। तो हमारे सोचने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है। चाहे मंजिल को तय करने के लिए हमने अपने लिए कोई भी राह क्यों ना चुनी हो, मुश्किल चुनी हो, आसान चुनी हो, लेकिन जिस रास्ते पर नहीं जाना है, यानी कि लाइफ में हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ नहीं जाना है। जब ये पता होता है ना कि हमें कहाँ नहीं जाना है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ये निर्धारित करना कि हमें कहाँ जाना है। तो भाई मैंने तो बचपन से ही ना अपने लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया मतलब कि जब मैं यंग हुई, मैं कॉलेज जाने लगी, तो मैंने अपने लिए डूज और डोंट्स की लिस्ट पहले ही बना ली। उससे मेरे लिए आसान हो गया कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप लिस्ट बनाते हो ना वो सिर्फ अच्छा और बुरा देखकर ही नहीं बनाते, आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अपने आप से बार बार बात कर कर वो लिस्ट बनाते हो, और फिर उसके बाद जिंदगी में आपके तक वही पहुंचता है जो आपके लिए बेहतरीन होता है। फिलहाल ये गाना आपके लिए फिल्म अनजाना अनजानी से विशाल डडलानी और शिल्पा राव की आवाज में। तो ये जिंदगी एक सड़क सी है और जब हम यंग होते हैं तो जिंदगी सच में सड़क सी लगने लगती है, और कहते हैं कि जीवन में मंजिल से बेहतर रास्ते होते हैं, तो उन रास्तों पर निकल पड़िए जिनकी चाह आपने अपने दिल में रखी हुई है।

वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल, और प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना अल्फा जेन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी, फ्राइडे का नाम सुनते ही या फ्राइडे को फील करते ही, और ख़ास तौर पर इस वक्त जब शाम का वक्त होने लगता है, लगता है कि जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए बदल सी गई है। दो दिन ना बस, यानी कि आने वाले दो दिन धमाल होने वाला है। वो तो संडे इवनिंग को जाकर महसूस होता है कि अच्छा, कल से कॉलेज जाना है, क्लासेस जानी है, जो बच्चे यंगस्टर्स ऑफिस जाते हैं उनको ऑफिस जाना है। लेकिन फ्राइडे इवनिंग ना बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है, और नज़र आती है तो इसलिए उसको एंजॉय भी किया जाता है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए कुछ फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर द मूवी, एक एक्शन क्राइम ड्रामा है जिसमें है पंकज त्रिपाठी, अली फैज़ल और रवि किशन। जीवन बीमा योजना, ये कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है जिसमें अरशद वारसी और विजय राज हैं। साथ ही साथ इमॉर्टल तमिल फिल्म है, हॉरर फिल्म है, जीवी प्रकाश कुमार इसमें नज़र आ रही हैं, और आई एम गेम मलयालम में फिल्म है जिसमें दुलकर सलमान नज़र आ रहे हैं। तो भाई, फिल्म्स किसी भी भाषा में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप शौकीन हैं ना फिल्मों को देखने के, तो आप ज़रूर देखेंगे। और चाहे वो बॉलीवुड की फिल्म हो या साउथ की, फिल्म्स देखने के शौकीन, ड्रामा देखने के शौकीन, क्राइम थ्रिलर कॉमेडी देखने के हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो हमेशा शौकीन रहते हैं और देखते भी हैं। और नहीं तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ओटीटी पे फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप गांधारी देख सकते हैं। और इस फिल्म में आपको नज़र आएंगी तापसी पन्नू। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की फिल्मों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आप कहीं भी, आप जब चाहे उन फिल्मों को देख सकते हैं। आपका मन नहीं है, लेजी इवनिंग है, आज देर रात तक फिल्म देखेंगे और उसके बाद फिर आराम से सो जाएंगे, कल देर से उठेंगे, बिल्कुल नहीं, अपने रूटीन को ख़राब क्यों करना। या फिर आप देख सकते हैं जेंटलमैन सीजन 2, धमाल 4, ये तमाम फिल्में हैं जिनको आप देख सकते हैं OTT पर। तो भाई, मेरा काम था यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देना, और आपका काम ये है कि वो करना जिसको करने के लिए आपका दिल चाहता है। क्योंकि कहा तो हमसे बहुत कुछ जाता है ना जनाब, लेकिन एक उम्र ऐसी होती है जहां हम करते बस वही हैं जिसके लिए हमारा दिल धड़कता है, जैसे कि धड़क रहा है फरहान अख्तर का, ऋतिक रोशन का इस गाने में। समझ गए ना कौन सा गाना है। अब भाई, दिल का मिजाज जो है हमेशा ना आपके दिमाग के मिजाज के साथ मिलना चाहिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। फ्राइडे इवनिंग्स को आप ना दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे आज के दिन की खास बात है कि जन्माष्टमी का दिन है, और अगर आप कृष्ण भक्त हैं, नहीं भी हैं, घर का माहौल इतना खूबसूरत, इतना खुशनुमा होगा कि मन करेगा कि थिरके जरूर। तो ये गाना बस आपके लिए।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। हर किसी को फ्राइडे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इस दिन हम प्लान करते हैं और प्लानिंग के साथ साथ अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं कि हम आज क्या करेंगे। हम तो घर जाकर त्यौहार मनाएंगे, फेस्टिवल मनाएंगे और खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। आप क्या करेंगे? आप डांट तो नहीं खाएंगे? हम तो बहुत खाते थे जब हम यंग हुआ करते थे, हर बात पे डांट खाया करते थे, इतना खाया करते थे कि उसी से हमारा पेट भर जाया करता था। खैर, अब उस डांट के लिए हम तरसते हैं क्योंकि अब हम डांटते हैं। सो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जब हम पेरेंट्स होते हैं तो हम सिर्फ डांटते हैं और जब हम बच्चे होते हैं तो सिर्फ डांट खाते हैं। खैर, खाने खिलाने का सिलसिला तो बरकरार रहेगा, लेकिन आप क्या खाते हैं आजकल? जंक फूड खाना छोड़ा नहीं है, है ना? जंक फूड के बिना तो जीवन चलता ही नहीं है। लेकिन लेकिन लेकिन आप जिस एज में हैं, यकीन मानिए, यू आर द मोस्ट चार्मिंग, सबसे खूबसूरत हैं आप। जो आप अपने आप को फ्लॉन्ट करते हैं, अपनी स्किन को फ्लॉन्ट करते हैं, आप बॉडी वॉडी बनाते हैं, आप ठीक हैं, आप अच्छा खाते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो वो बस कुछ भी खाकर अपना काम चलाते हैं। तो हेल्दी माइंड जो है ना कहीं कनेक्टेड है आपकी बॉडी से, और आपकी बॉडी क्या मांगती है? अच्छा खाना। जीभ तो बहुत कुछ मांगती है, सच में बहुत कुछ मांगती है कि हमेशा कुछ चटपटा खाने के लिए मिले। हर बार यही लगता है, हर बार मम्मी से ये कहा जाता है कुछ अच्छा खाने के लिए बनाओ ना, और जब कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिलता है, यानी कि वो चटपटा कैसा वाला, बाहर वाला, जंक वाला नहीं मिलता है, तो फिर हम सीधा ऑर्डर करते हैं। हमारे यंगस्टर्स, हमारे जो यंग बच्चे हैं ना, बस मोबाइल सबके पास है, पापा मम्मी पैसे दे देते हैं या हम कमा लेते हैं, तुरंत ऑर्डर किया और घर पर सामान आ जाता है, अगर मम्मी कुछ अच्छा वाला ना बनाए तो। तो खाइए, खूब डट के खाइए, लेकिन उसके साथ कीजिए खूब सारी एक्सरसाइजेस और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए। ये सोच लीजिए लास्ट टाइम जो है ना वो अच्छा वाला कब खाया था, आज सुबह तो नहीं खाया था, आज सुबह तो ऑर्डर नहीं किया था। तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितने दिन पहले खाया था। एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपना स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत है, और उसके बाद आप एंजॉय कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए। लेकिन जब आप खुद ही अपने सिस्टम में, यानी कि अपने दिमागी सिस्टम में एक ट्रैकर लगा देते हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बैलेंस होने लगती है। आप आज को जीते हैं और आप जीते हैं आने वाले कल को भी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन तब जब आप खुद

आराम करेंगे। तो खूब सारी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन आपकी आंखों को, हाँ, आंखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आंखें टिकी रहती है ना दिन रात। आप थोड़ी देर के लिए भी अपनी आईलैशेस को झपकाते नहीं, अपनी पलकों को झपकाते नहीं हैं, और फिर जब मोबाइल देखने के बाद, सोशल मीडिया पर रील्स देखने के बाद जब अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं तो मम्मी कहती हैं किन लाल पीली आंखियों को ना मैं और लाल पीला कर दूंगी। फिर डांट खाने वाली बात। तो जनाब अपना ख्याल रखिए प्लीज़, फॉर मी, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर सेल्फ। थैंक यू।

वेलकम वेलकम वेलकम, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीता कौनियाल, और शो चल रहा है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। वैसे ना जब मेट्रो में मैं ट्रैवल करती हूँ तो बहुत सारे यंगस्टर्स मुझे दिखते हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स अपने हाथों में किताबें और आंखें हर पन्ने पर हर शब्द पर, और देख करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो इसलिए अच्छा लगता है जो काम आप नहीं कर पाते हैं ना और दूसरा कर रहा होता है, बहुत खुशी मिलती है। हैट्स ऑफ टू यू। आप सब कैसे कैसे पढ़ लेते हैं। मेरे मुझे तो ना पढ़ने के लिए सुकून आराम चाहिए होता है, और आसपास कोई नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक पन्ने को मैं चार चार बार पढ़ती हूँ, क्योंकि समझ में आता है मुझे बातें समझ में आती हैं, पर कभी कभी ना इतना डूब जाती हूँ कि चार चार बार पढ़ने में मज़ा आता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो कहने का अर्थ बस इतना सा है कि ये जो रीडिंग की हैबिट है ना कहीं हम लाइफ में कुछ भी क्यों ना कर रहे हों, लेकिन पढ़ना हमें हमेशा आत्म केंद्रित रखता है। हम फोकस्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा। वही बच्चे जो मुझे देखते हैं, यंगस्टर्स देखते हैं मेट्रो में, कि दुनिया जहान में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उनकी आंखें मोबाइल फ़ोन पर नहीं, अपनी किताबों पर, हर पन्ने पर चिपकी हुई होती हैं। और उनका कंसंट्रेशन देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो वे सोचते हैं कि क्यों ना किताब को चलो चलते चलते निपटा लिया जाए, पढ़ लिया जाए। मकसद ये होता है। तो मकसद आपका क्या है वो आप जानते हैं, किताब पढ़ना, समय व्यतीत करना, या अपने साथ बहुत सारे नॉलेज को गेन करना। पर जो भी है, किताबों की लिखी हुई हर एक बातें हमेशा आपके साथ चलती हैं। कुछ बातें हो सकता है दिमाग से उड़ जाती हैं, लेकिन कुछ बात आपकी जीवन जीने का फलसफा बन जाती हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, जब मैं कॉलेज डेज में थी तो मैंने किताब पढ़ी थी, टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू, हर्बर्ट स्कूलर की ये किताब है। अब किताब में क्या था शायद अब तक तो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, किताब का जो टाइटल है, टफ टाइम डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू, ये मेरे जीवन का फलसफा बन गया। तो ऐसे ही ये किताबें, उनमें लिखी हुई बातें हमारे जीवन का फलसफा बन जाती है, और हम उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो हमेशा हमारे साथ चलती हैं। इसलिए जो भी काम हम यंग एज में करते हैं वो हमारे लिए हमारी जान बन जाती है। अब जैसे हमारा दिल है ना, हमसे बहुत कुछ कहता है, बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ करता है, और हम इसे बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं मैं नहीं कह पाऊंगी, पर जो भी हम इसे कहते हैं ना, फिर हम इसे समझाते हैं और फिर ट्रैक पर लेकर आते हैं। तो आप भी अपने दिल को ट्रैक पर लेकर आइए, क्योंकि ये गाना आप सिर्फ आपके लिए मैं प्ले कर रही हूँ। वैसे मौसम मैं यहाँ से देख पा रही हूँ खिड़की से बाहर स्टूडियो की, और पूरा काले काले बादल हैं, और आज सोच रही हूँ कि अम्ब्रेला नहीं लाई हूँ तो क्या मुझे कोई लिफ्ट दे सकता है। अगर दे सकता है तो थैंक यू सो मच, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। फिलहाल ये गाना आपके लिए, बस आपके लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी पर अभी तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्धवाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वियतनाम में पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने अब तक कुल 37 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर मुख्य समाचार।

नमस्कार। आज जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेने के साथ साथ उनके जीवन और शिक्षाओं से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए और अपने शहर, अपने समाज और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसी भावना के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। सिटी लाइट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, क्योंकि आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के अवसर पर ये गीत अगर ना सुना जाए तो बात कुछ अधूरी रह जाएगी। सिटी लाइट्स में बहुत सारी बातें हैं आपके लिए, आप बस हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम सिटी लाइट्स।

त्योहार खुशियां लेकर आते हैं, रंग रोशनी भक्ति और उल्लास से शहर पूरा इस वक्त जगमगा रहा है। आज दिल्ली भी जन्माष्टमी के रंगों में पूरी तरह से रंगी हुई नजर आ रही है। मंदिरों में विशेष सजावट भी नजर आ रही है, झांकियां भी सजाई गई हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों का भी रुख

कर रहे हैं। लेकिन जब शहर में लाखों लोग एक साथ किसी उत्सव का हिस्सा बनते हैं तो भाई हमारे यहाँ कोई जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। खासतौर से अगर हम यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में और बात कर रहे हैं आपके साथ, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि आपको अपडेट करते रहें। जी हाँ, क्योंकि त्यौहार सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा करने का नाम नहीं, त्यौहार हमें ये भी सिखाता है कि हम जिस शहर में रहते हैं उसके बारे में हम कितना जानते हैं और कितना हम अपने शहर को समझते हैं। जी हाँ, शहर भी हमारा है, त्यौहार भी हमारे हैं। दिल्ली में जन्माष्टमी के आयोजनों को देखते हुए कई इलाकों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर, बिरला मंदिर और रोहिणी सहित कई इलाकों में भारी भीड़ की संभावना बताई गई है। कुछ मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन भी किया गया है, लिहाजा आपको थोड़ा सा समय से पहले निकलना होगा और ख्याल रखना होगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जा रहे हों मंदिर में और आप मंदिर पहुंच ना पाएं या आप लेट हो जाएं। इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा दोस्तों और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कार्यक्रम है सिटी लाइट्स, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर। और इस वक्त मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा गीत है और आप तक मैं पहुंचाने वाली हूं, इसलिए क्योंकि ये गीत सिर्फ और सिर्फ है आपके लिए। गीत को सुनिए, हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम कौन सा। जी हाँ, कार्यक्रम है सिटी लाइट्स।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में हम आपके साथ बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के त्यौहार की। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली वाले बेहद उत्साहित हो जाते हैं बहुत अच्छे से हर त्यौहार को मनाने के लिए, और वैसे भी आज तो जन्माष्टमी है तो भाई मंदिर तो जाना ही है, है ना, झांकी देखने भी जाना होगा, या फिर ये कह लीजिए इस तरह की बातों में हमें कुछ छोटी छोटी बातों का तो ख्याल रखना ही पड़ता है। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम ट्रैफिक अनुशासन की बात करें तो भाई ये भी काफी अहम हो जाता है।

बेटे की परेशानी बन सकते हैं। लिहाजा थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती ही है हमारी। थोड़ा सा ध्यान रखिए और खूब एंजॉय कीजिए जन्माष्टमी को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सब आज के दिन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कैसे, ज़रा सुनिए।

आकाशवाणी रेनबो चैनल पर इस वक्त सिटी लाइट्स में हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, बता रहे हैं आपको कि जन्माष्टमी का त्यौहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और हमें किन बातों का रखना है ख्याल। ये बातें तो हो चुकी हैं आपके साथ, अब आइए जरा सी बात कर लेते हैं कला की भी। जब हम कला की बात करते हैं तो कला सिर्फ रंगों और कैनवस का नाम नहीं है दोस्तों। कला हमारे समय को देखने, समझने और सवाल करने का एक तरीका भी है। आपको बता दें कि दिल्ली इन दिनों कंटेम्प्रेरी आर्ट के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। राजधानी के अगर बीकानेर हाउस की हम बात करें आपके साथ, तो आपको बता दें कि दिल्ली कंटेम्प्रेरी आर्ट वीक 2026, जिसका ये नौवां संस्करण है, ये आयोजन 31 अगस्त से 5 सितंबर तक जारी रहने वाला है। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा भी कला को करीब से देखना चाहते हैं, रंगों से बात करना चाहते हैं, रंगों के बारे में जानना चाहते हैं, आर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, चित्रों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बीकानेर हाउस ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा वक्त बाकी है दोस्तों। जी हाँ, इस बार दिल्ली की 6 वेमेन लिड गैलरीज जो हैं वो आपके लिए लेकर आई हैं ब्लू प्रिंट 12 एग्जिबिट 320 गैलरी स्पेस और साथ में लैटिट्यूड 28 श्राइन एम्पायर और साथ में वडेरा आर्ट गैलरी। इनके जरिए भारत और साउथ एशिया के स्थापित और उभरते कलाकारों की अलग अलग कलात्मक अभिव्यक्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो भाई बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, बहुत कुछ मैं आपको बताना भी चाहती हूँ, लेकिन जब बात आती है सिटी लाइट्स की, तो जहां हम करते हैं आपके साथ ढेर सारी बातें, वहीं हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसा संगीत जिसे आपको सुनकर बेहद एंजॉय करने का जी चाहे। तो चलिए करते हैं एंजॉय, रहिए साथ मेरे और सुनते रहिए कार्यक्रम सिटी लाइट्स।

तो सिटी लाइट्स में आपको ढेर सारी जानकारी के साथ साथ हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं कि भाई मंदिर तो हो आए, अब किस कार्यक्रम में हम जा सकते हैं, तो आपको हम यहाँ ज़रूर बता देंगे कि अगर आप सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास रहते हैं या आपके घर से थोड़ी बहुत दूर पर है तो आप यहाँ ज़रूर हो आइए, क्योंकि इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ लीग सीजन 2 का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। पारंपरिक मटकी फोड़ उत्सव को खेल की भावना और प्रतियोगिता के आधुनिक स्वरूप से जोड़ते हुए इस आयोजन को बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और इस वक्त ये कार्यक्रम चल भी रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप वहां कहीं आसपास हैं, आपका घर आसपास है, तो आपको यहां जरूर जरूर जाना चाहिए। और आपको यहां ये भी बता दें कि इस लीग का जो उद्देश्य है वो युवाओं को खेलों से जोड़ना और पारंपरिक भारतीय खेलों को नई पहचान दिलाना है। इसी भावना के साथ लीग का जो संदेश है वो है खेलेंगे तो खेलेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जो उनका विजन है, वो भी यही कहते हैं कि खेलेंगे तो खेलेंगे। तो भाई हम तो बस आपसे यही कहेंगे कि अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, आपके पास वक्त है और आप सोच रहे हैं कि कहीं कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, तो मटकी फोड़ लीग सीजन 2 में आप ज़रूर जाएं और डेफिनेटली आप वहाँ जाकर एंजॉय ज़रूर ज़रूर करेंगे। तो भाई जब बात हो जन्माष्टमी की, बात हो कृष्णा की, तो आपको पता है मुझे ये गीत बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, सुनिए। और आज के दिन अगर ये गीत ना सुना जाए तो भाई बात अधूरी रह जाएगी।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हें तो जादू डाला है मुझ पे।

0: मान गए राधा रानी। जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सिटी लाइट्स में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर। और हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या कुछ खास हो रहा है। जी हाँ, जन्माष्टमी का त्यौहार जहां बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, वहीं हमने आपको ये भी बताया कि अगर आप मंदिर होकर आ चुके हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं और साथ ही साथ कुछ प्रतियोगिताएँ भी देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं मटकी फोड़ कार्यक्रम में। और साथ ही अगर आप आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं, कला में दिलचस्पी रखते हैं, रंगों से बात करना चाहते हैं, तो आप बीकानेर हाउस भी जा सकते हैं। तो चलिए जनाब, ढेर सारी बातें कर ली और साथ ही साथ हमने आपको यहाँ ये भी बता दिया कि भाई ट्रैफिक का भी आपको रखना है ख्याल, क्योंकि भाई फेस्टिवल का मौसम है और जब फेस्टिवल हमारे साथ होता है तो डाइवर्जन तो होता ही है। तो थोड़ा सा वक्त हम मतलब मार्जिन लेके निकलें अपने घर से और जहाँ भी जाना हो कोशिश करें कि हम अपनी गाड़ी यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो बस, और मेट्रो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अच्छी बात है साथ ही साथ, क्योंकि ना सिर्फ हमें खुशी मिलेगी बल्कि हमारे साथ साथ जो और लोग भी हैं वो भी बहुत निश्चिंत रहेंगे और उनको भी हमारी बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि एक कदम बेहतर हम ही उठाएंगे। अगर हम ये सोचें कि भाई हम ही क्यों करें, दूसरा क्यों ना करें, तो भाई ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए हम खुद एक अच्छा कदम उठाएँ ताकि सबको ये कह ना सकते हैं कि भाई थोड़ी सी बेदारी भी मिले और लोग आगे अच्छा सा कर पाएँ, क्योंकि दिल्ली, क्योंकि हमारी ही दिल्ली है, ट्रैफिक को भी हम ही को देखना है, यहाँ की सड़कों को भी हमें देखना है। और जब बात दिल्ली की आती है तो भाई यमुना की हम बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, यमुना सिर्फ नदी नहीं बल्कि हम तो कहते हैं कि भाई दिल्ली की पहचान है। दिल्ली की रफ्तार या फिर इतिहास और संस्कृति से जुड़ी यमुना हमारी विरासत है और इसी विरासत को हमारी देखभाल और जिम्मेदारी की भी जरूरत होती है। यमुना को साफ रखना सिर्फ सरकार या फिर प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं दोस्तों, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। नदी में कूड़ा ना डालना, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर करना और आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना, हमारे छोटे छोटे जो प्रयास है ना वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि साफ यमुना का मतलब सिर्फ स्वच्छ पानी नहीं बल्कि स्वस्थ पर्यावरण, बेहतर हवा और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित दिल्ली। यमुना बचेगी तो भाई दिल्ली की जो विरासत है, दिल्ली की जो पहचान है, वो भी दोस्तों ऐसे ही बची रहेगी। तो बस एक जुनून होना चाहिए, एक फितूर होना चाहिए अपनी दिल्ली के लिए, अपने शहर के लिए।

सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं और आप जानते ही हैं कि हम ढेर सारी बातें आपके साथ कर रहे हैं कि दिल्ली में आप कब कहां कैसे जा सकते हैं। तो भाई अगर हम बात कर रहे हैं आपके साथ कि आपको अगर ज़रा सी भी आर्ट में दिलचस्पी अगर आप रखते हैं, आप रंगों को बेहद करीब से देखना चाहते हैं, क्योंकि कुदरत की जब हम बात करते हैं तो कुदरत ने पर्यावरण में और आसपास हम जब भी नज़र उठाते हैं तो ढेर सारे रंगों से इस दुनिया को सजाया है और रंग हर रंग अपने आप में हमें बेहद ख़ास नज़र आता है। और वाकई ये रंग हमसे बातें करना चाहते हैं। ये रंग, ये कहते हैं कि हर एक रंग के पीछे एक कहानी नज़र आती है। अगर आप इन रंगों को और करीब से देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एक और जगह, जी हाँ, इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड आप जा सकते हैं और इंडिया हैबिटेट सेंटर में आप विजुअल आर्ट गैलरी जा सकते हैं। और कब जा सकते हैं भाई, ये भी मैं आपको बता दूं भाई, आज तो जन्माष्टमी है, आपके पास वक्त नहीं होगा, तो आपको मैं बताऊं, आप अगले हफ्ते यानी 8 सितंबर को आप जा सकते हैं शाम 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। और ये जो गैलरी है ना, ये आप 11 सितंबर तक देख सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप उसी दिन जाएं, आप 11 तारीख तक कभी भी जा सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। अगर आप 8 तारीख को

रहते हैं तो आप शाम 5:30 बजे जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा आवेज। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे रंगों से इसको सजाया जाएगा जितना मैं जानती हूँ। और सोलो आर्ट एग्जिबिशन है वसंत डोरा की। तो और अगर हम इसके क्यूरेटर की बात करें तो ज्योति काठपालिया, जी हाँ, इसे क्यूरेट किया है ज्योति ने। आप देखिएगा बेहद करीब से इन रंगों को और जानिएगा कि किस तरह से एक आर्टिस्ट इन रंगों के साथ एक पूरी ज़िंदगी को उतारने की कोशिश करता है कैनवस पर। क्योंकि मैं अक्सर आर्ट गैलरीज जाती हूँ और करीब से इन रंगों को देखती हूँ तो यूँ लगता है कि एक दुनिया आबाद होती है हर एक कैनवस पर। नज़रिया हमारा होता है और कलाकार अपने नज़रिए से उस पर अपनी बात, अपनी सोच उतार देता है, लेकिन हाँ, हमें वो दे जाता है एक नई सोच। तो बस आप इस नई सोच के साथ जाएं और हर एक रंग को करीब से देखें। फिलहाल मेरे साथ रहें क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: तो वही, अब तो ढेर सारी बातें और भी करना चाहती थी आपके साथ, लेकिन वक्त अब इसकी इजाज़त देता ही नहीं कि कुछ और बातें आपके साथ हो सकें दिल्ली के बारे में। लेकिन अपनी दिल्ली का ख्याल रखिए दोस्तों, दिल्ली आपकी है, आपका शहर है, और हम सब अपनी दिल्ली को बेहद बेहद चाहते हैं, बेहद इसके बारे में सोचते हैं। तो अच्छा सा ख्याल रखिए, अपना भी, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। और एक बार फिर आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। चलती हूँ, फिर मिलूंगी बहुत जल्द किसी और कार्यक्रम में। अपना अच्छा से तब तक के लिए रखिए ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।
0: मानते हैं ना आप इस बात को?

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉर्ट डी वेवर ने आज भारत और बेल्जियम के बीच हीरा व्यापार साझेदारी को अटूट संबंध बताते हुए कहा कि सदियों पुराना ये रिश्ता आपसी विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग पर आधारित है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1,282 हो गई है, 5,053 लोग लापता हैं। और वियतनाम में पिकलबॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने अब तक कुल 37 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

जन्माष्टमी पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता शाहबादी और ये है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें हम आज मना रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव और बड़े उल्लास में हैं, हम खुश हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, भक्ति से सराबोर हैं हम। और क्यों ना हो, ये बहुत बड़ा महोत्सव है और कृष्ण के बारे में बहुत सारी सीख हमने ज़िंदगी में ली है और भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो आम जिंदगी में हर एक दिन हमारे काम आता है। तो एक बात जो श्री कृष्ण जी ने उसमें बताई है हमें कि आपके हाथ में कर्म है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, जब आप पूजा कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं, तो आज के दिन आप अपनी ज़िंदगी की कौन सी चिंता उनके श्री चरणों में रखेंगे, ये बताइए हमें ऑन 9868107070। आपको बताना है कि आज आप ज़िंदगी की कौन सी चिंता श्री कृष्ण के श्री चरणों में देंगे और बताएंगे उन्हें कि मेरी ये चिंता दूर कर दो। क्योंकि वो कहते हैं कि जितना तुम समर्पण करोगे और जितना तुम सरेंडर करोगे, मेरे पे विश्वास करोगे, उतना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बनाऊंगा। तो आप अपनी ज़िंदगी की कौन सी चिंता उन्हें आज बताएंगे, ये बताएं हमें 9868107070 पर। और आप जल्दी से हमें मैसेजेस कीजिए, हमारे पास अच्छे अच्छे नंबर्स हैं आपके लिए। ये है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूँ सुनीता शाहबादी।

आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं हमारी सबकी तरफ से। और राजकुमार संतोषी अकोला से कहते हैं महाराष्ट्र से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब हमें चाहिए। इस नंबर पे बताइए हमें कहाँ है उसका उत्तर। तो आप भी सुनिए, हमारा प्रश्न आज ये है कि भाई कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, सरेंडर अगर पूरी तरह से मुझ पे करोगे तो मैं तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय बना दूंगा और अच्छा बना दूंगा। तो आप अपनी ज़िंदगी की कौन सी चिंताओं उनके हवाले आज करने वाले हैं, बताइए हमें। गुड इवनिंग आरजे हितेंद्र दास आसाम से, एंड दिस वन इज़ एमएमएम। ओके, सिर्फ एमएमएम, ओके, उसके आगे क्या लिखा है। ऑलराइट, जय श्री राधे। पहले होने के बाद भी यदि ये पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 यानी 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा जैसा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य करें तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह है अमित सिंघवाल, सेक्टर 14 सोनीपत हरियाणा से। बहुत सुंदर लिखा, बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे मैं, हमारे दोस्त का मैसेज आया है, आप सभी लिसनर्स हमारे दोस्त हैं और सभी हमको प्रिय हैं और आप लोगों ने जो आज हमें हमेशा प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ओर से समस्त देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और नेपाल बाढ़

त्रासदी में जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनके प्रति मेरी गहरी, बहुत गहरी संवेदनाएं इस आशा के साथ कि फिर से ऐसी आपदा कहीं पर भी ना आए, प्रेमचंद जी ने कहा ये। थैंक यू सो मच। रेडियो से ये पल सुहाने मिले हैं, खुशियों के दिल को तराने मिले हैं। ज़रा पास आओ नाचो जी, गाओ गाने के लाखों बहाने मिले हैं। प्रेमचंद जी थैंक यू सो मच, आपके मैसेजेस हमेशा खूबसूरत होते हैं। मैसेज मसाला मिक्स में आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब। कृष्ण जन्माष्टमी पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो, मुबारक हो। सुनीता शाहबादी जी आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप हैं आदिल कमर गुन्नौर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बधाई हो। सुनीता शाहबादी जी अपनी चिंता भगवान कृष्ण के आगे रखूँगा कि ढलती उम्र बुढ़ापे में स्वस्थ रहूँ जब तक सांसें हैं। कृष्ण तेरे अनेक रूप, कोई तुझे माखन चोर कन्हैया कहता होगा, कोई लड्डू गोपाल, कोई बांसुरी वाला कृष्ण कन्हैया पुकारता होगा। साहित्य में दर्शाया तेरी कृष्ण लीला, राधा से प्यार, मीरा से प्रेम, यशोदा किस रूप वाले कन्हैया को दंड कैसे दिया करती होगी। अनिल शर्मा जी सरिता विहार से ने बहुत सुंदर सा मैसेज है, एंड और भी लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हैं उनके मैसेजेस में पढ़ना चाहूँगी, और वो है ये कि गुड इवनिंग सुनीता जी, और आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कृष्ण जी के चरणों में अपनी यही चिंता व्यक्त करेंगे कि हमें निरोगी काया दे और चलते फिरते अपने चरणों में बुला ले। कृष्ण मंजानी, नीलम स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार। ये तो सबसे बड़ी बहुत ही अच्छी मांग है, जो हम इस संसार से जाएं तो अपने पैरों से जाएं, चल के जाएं, किसी पर बोझ बन के ना जाएं, है ना, हम सभी ये चाहते हैं। नमस्कार, शुभ संध्या, हम भगवान को हमारा कर्म अच्छा हो और मनोबल बढ़ाएं ये अर्पण करेंगे। यशवंत आठमोड़े धारा शिव महाराष्ट्र से, वाह क्या बात है। एंड मेनी मोर मैसेजेस कृष्ण जन्माष्टमी के उस पर बहुत सारे खूबसूरत मैसेजेस भेजे हैं। पहला ही गाना बहुत खूबसूरत है, और सुनीता जी श्री कृष्ण जी के चरणों में हम बारिश हो ऐसी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में बारिश नहीं है। और विजेंद्र घाट को अकोला विदर्भ से, ओके भगवान जल्दी ही सुने आप तथास्तु। तो पंकज अमरावती महाराष्ट्र, गुड इवनिंग सुनीता, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, मैं आज अपनी ज़िंदगी की चिंता जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो कहना चाहूँगा वो ये है कि सभी पर कृपा बरसाएं और सभी का जीवन खुशियों से भर दे, और कोई भी किसी बात की ज़्यादा चिंता करे ऐसा कोई बात ना हो, सभी का शुभ मंगल हो यही कामना करता हूँ। वाह क्या बात है पंकज जी, थैंक यू सो मच, एंड आपका भी मंगल हो। और सुनीता जी शाहबादिया, ओके आगे क्या, आगे आप अभी मैसेज टाइप ही कर रहे हैं, ओके जब तक आप टाइप करते हैं तब तक हम दूसरे मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं, वो ये हैं कि हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? शुभ संध्या, मैसेज मसाला मिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ, थैंक यू सो मच। मैं भविष्य में एक अच्छा सा मकान बनाना चाहता हूँ, तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन थोड़ा तनावग्रस्त रहता हूँ। इस चिंता को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित करना चाहूँगा, भगवान करे आपकी चिंताएं दूर हो। हीरामणि वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से, ओके एंड दिस वन इज हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और सुदर्शन मुखी, अनीता एंड सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, हमारी ओर से आप सभी को रेनबो परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम तन से स्वस्थ और मन से संतोषी रहें, श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करते हैं। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो, कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 9868107070, और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर आपने अपनी कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि कर्म आपके हाथ में, परिणाम मेरे हाथ में है, तुम बस अपने आप को सरेंडर करो और मुझे अपनी चिंताएं दो, बस तुम खुश रहो, तो कौन सी चिंता आप आज उन्हें बताएंगे अपनी? हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगा कि मैम, आज जब बात कृष्ण जी के आगे कोई लाइफ की चिंता रखने की आती है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास गुस्सा कम हो जाए, और जो भी मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एंड जल्दी ही सभी की मनोकामनाएँ पूरी हो जाए। आई एम अंशी शर्मा हस्तिनापुर से, तथास्तु भगवान कहें, और सबके जीवन में उजियारा हो, खुशियां हो, सुकून हो, सेहत हो, यही कामना करते हैं।

0: ट के साथ बेजोड़ पकड़ सेल सिक्योर टीएमटी बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय गजब का स्वाद।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
8: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
9: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
0: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
10: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट

6:28 हुए हैं और हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स. मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी एंड ऑफ कोर्स मेरे पास मैसेजेस आ रही हैं आपकी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस लेना चाहती हूँ ताकि किसी को शिकायत ना रहे. थैंक यू मैसेज शामिल करने के लिए. थैंक यू सो मच विजेंद्र घटोल जी, आपने ये कहा है. एंड ये लिखा है इन्होंने, शुभ संध्या शाहबादी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूरी FM टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, देहरादून से आलोक पंवार और मीनिंग. थैंक यू, आपको भी बहुत शुभकामनाएं. एंड मेहम, आज मैम आज ये बात है तो खुदा की तुम्हें ऊपर वाले से दुआ मांग के आया हूँ कि जो नेपाल में बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको वक्त से खाना नसीब मिले और उनको अपनी माँ पापा जल्दी मिले. ओके, थैंक यू सो मच जावेद आलम और मोहम्मद जायन जी. एंड दिस वन इज़, चिंता को दिल में रखोगे तो रातें यूं ही ढल जाएंगी, हौसला रख कर चलोगे तो राहें खुद समर जाएंगी. जो बदला नहीं जा सकता उसे हंसकर स्वीकार करो, चिंता छोड़ कर्म पर भरोसा रखो, जिंदगी निखर जाएगी. मोहम्मद सरफराज आलम जोकियर, दर्शना बाजार, जिला अररिया से. ओके, एंड दिस वन इज़, सुनीता जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. अच्छे कर्म से श्री कृष्ण अच्छे फल की प्राप्ति करवाते हैं. कृष्ण का अर्थ ही आकर्षण है, इसीलिए इनका नाम सच्चे भाव से जपना ही सब कुछ प्राप्त करवा देता है. रवि जोशी मेरठ से, थैंक यू. यस, दैट्स ट्रू. एंड ये वाला लिखा है, शुभ संध्या, मैं सनी बिमला पोहाल सीनियर अंबाला कैंट से आज आपके माध्यम से समस्त AIRFM रेनबो परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. महादेव जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त निरंतर होता ही रहता है. कृष्ण जी के समक्ष कुछ समस्या का समाधान मांगूं तो प्यार मांगना चाहूंगा. लड़की अच्छी दोस्त तो बहुत बनती है पर प्रेमिका नहीं बन पाती, पता नहीं कहाँ है कोई जो मिलेगी. वैसे एक खास बात है, जो लड़कियां दिल को लुभाती हैं वो ज्यादातर सावन और भाद्रपद माह की ही जन्मी होती हैं. अभी वही माह चल रहा है. वाह जी वाह, बहुत रिसर्च करी है आपने. बट ये है ना कि राधा वाला प्रेम जो कृष्ण राधा का है, जिसमें समर्पण है, कुछ मतलब पाने की इच्छा नहीं है, प्रेम बांटने की है, तो वो वाला भाव तो हम में से बहुत कम लोगों में होता है ना, ये भी तो आप मानेंगे ना. तो ये वाला मैसेज है कि हेलो कैसे हैं आप. दिस वन इज़, ओके दिस वन आई रेड एंड दिस इज़, हेलो आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार.

How are you? I'm good. And today's topic, I'd like to say that the tension which I want to put in front of Lord Krishna is that on any day when my mother is not well, I feel very sad. So I want Lord Krishna that she always remains fine and healthy. Hi, so sweet. That's so sweet of you. And God bless you and your mother always. और सबकी माँओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका उनकी सेहत अच्छी रहे, उनकी उम्र लंबी रहे, ताकि वो अपने बच्चों का साया बनी रहे। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। वाह, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप क्या कहना फिल्म का दिल का है, कोई टुकड़ा कभी गीत चला दीजिए। हमने गीत बहुत अच्छे निकाले। अच्छा, आपने कहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और आपको और आपके पूरे रेनबो फैमिली को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बधाई। और ये लिखा है बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी ने कि आपको मेरा प्यार भरा सलाम, कैसी हैं आप? आपका स्वागत है और हैप्पी जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मौसम सुहाना है, बारिश हो रही है, मौसम कैसा है? काफ़ी दिन बाद सुन रहा हूँ आपको, आपने याद भी नहीं किया मुझे। ऐसी बात नहीं है, हम सबको याद करते हैं। और आप भी हमें मैसेज करिए, 9868107070 बताइए हमें कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर आप कौन सी अपनी चिंता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहेंगे और उनसे कुछ मांगेंगे। मैडम जी नमस्कार, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा है, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हों आपको। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और बताइए हमें कि आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आज अपनी जीवन की कौन सी चिंता रखना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सुने। पर पूरी श्रद्धा से आपको, पूरा फेथ, पूरा विश्वास उन पर रखकर जब आप ये बात उनसे कहेंगे तो वो तुरंत आपकी मदद के लिए आएंगे। सच में, यकीन जानिए।

राइट जी, हमारे पास मैसेजेस आए हैं। राधे राधे राधे जी, आपको और आपकी सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा से आज बस इतना कहना है, मेरी इच्छाएं नहीं मेरा अहंकार ले लो, मेरी परेशानियां नहीं मेरा डर ले लो, और बदले में बस अपना भरोसा दे दो। बाकी जीवन की डोर तो आपकी बांसुरी की धुन पर ही छोड़ दी है। कृष्णमय रहें आपके सुर और हम सभी के दिन। निधि पंचकुला से, बहुत सुंदर मैसेज है, बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। और सभी कृष्णमय रहें, राधे राधे। और ये लिखा है जोया ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कि हैप्पी जन्माष्टमी टू रेनबो टीम एंड ऑल माई इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लुक आफ्टर ईच अदर एंड स्प्रेड लव एंड डू लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच। एंड ये लिखा है कि कार्यक्रम पेशकर्ता आदरणीय प्यारी दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दीदी जी, ओके, नमस्कार। आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है, हमने तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सब कुछ निछावर कर दिया है, कर्म ही प्रधान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य यानी कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जी, निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, उसे जीवन में सच्ची शांति और संतोष मिलता है। क्रोध और अहंकार का त्याग, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और अहंकार मनुष्य की बुद्धि का नाश करता है, और इसीलिए हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। सच्चा प्रेम और मित्रता, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता ये सिखाती है कि रिश्ता भौतिक लाभ का नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का है। वाह, क्या बात है। एंड ये लिखा है, और समर्पण का है होना चाहिए धर्म की स्थापना। जब जब पृथ्वी पर अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब तब सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। रघुनाथपुरा जिला, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी एंड हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, थैंक यू सो मच सुंदर मैसेज के लिए। नंद के आनंद भव्यो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यायपारा भिरई से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, थैंक यू सो मच। एंड आपको भी शुभकामनाएं, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम जी आपका राजीव रावत, ओके। एंड गुड इवनिंग, मेरे सबसे बड़ा चिंता ये है कि भगवान श्री कृष्ण मेरी छोटी बेटी को जॉब लगाने में मदद करते हैं। शी हैज़ कम्प्लीटेड अ बी टेक और इन बायोटेक्नोलॉजी। राधे राधे, परमेश्वर जमशेदपुर से। अगर उसने मेहनत किया है, अपना कर्म ठीक से किया है, तो फल भी मिलेगा, चिंता ना करें। गुड्डू धाकड़, उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से, बस जो जिंदगी है वही सुकून से कट जाए, यही कान्हा जी से मांगेंगे। क्या बात है, वाह, बस जो जिंदगी। और आप ये हमेशा कहें कि हे नाथ, आपको हम कभी ना भूलें, आपका नाम हमेशा हम जपते रहें, और आपका धन्यवाद देना हम कभी ना

बस ये रहें। आपने कहा है कि आपका टॉपिक बहुत सार गर्भित है, मेरी ये चिंता मुझे हमेशा कचोटती रहती है कि सारी दुनिया के युद्ध कब बंद होंगे। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं जिसमें हम अपना सब कुछ खो देते हैं, ये कब बंद होंगी। वैसे मैं जानता हूँ कि ये सब आपदाएं अब हमने ही अपने स्वार्थ बस पैदा की हैं। मैं बड़े दुखी मन एवं आशा से प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपनी यही चिंता रखूँगा कि हे प्रभु, आप मेरी चिंता का निदान करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और बिखरी हुई फिजाएं, ये दौर जिंदगी का देखा है मैंने नक्शा कुछ और जिंदगी का, हर फूल के चेहरे पे मातम है, उदासी है, लाशों से उठ रहा है एक शोर जिंदगी का। भगवान श्री कृष्ण हमारी ये चिंताएं दूर करें, बस मैं यही कहना चाहूँगा। प्रेमचंद जी, थैंक यू सो मच। आप भी हमें अभी मैसेज कर सकते हैं, टाइम हुआ 6:41 आपका ये प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आज आप शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं हमें जन्माष्टमी की, उसके अलावा आई नो इस वक्त आप शायद पूजा में बिजी हैं, थोड़ा सा आपको कान्हा जी के लिए दिए जलाने हैं, पूजा करनी है, मिठाइयाँ लानी है और बहुत लोगों का व्रत है आज। और ये ना, मैंने सुबह उठकर अपना मंदिर सजाया था, बहुत सुंदर। काश मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखा सकती उस मंदिर की, बहुत क्यूट सा, और छोटे छोटे कपड़े जो हैं कान्हा जी के, मालाएं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे अच्छा लगता है और आई एम श्योर बहुतों को अच्छा लगता होगा। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कहिए आज कौन सी चिंता आप कान्हा जी को देना चाहते हैं, कि उनसे प्रार्थना करें कि हमारी सारी चिंताएँ आप दूर करें। सबसे पहले पूरे तन मन धन से उन पर विश्वास करें।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए। तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से

दुश्मनों के खात्मे तक। ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

हाँ जी, मेरे जाने का टाइम हो चला है, लेकिन प्रणाम आपको। गांव खिड़की, जिला बिजनौर से दिव्यांशु यादव, वासुदेव जी कन्हैया जी, आशुतोष यादव, विनायक यादव, वसुंधरा यादव, नंदिनी यादव, कार्तिकेय यादव, आप सभी आकाशवाणी में कार्यरत लोगों को और सभी आकाशवाणी रेनबो दिल्ली के को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सभी को सद्बुद्धि देने की कोशिश करें, बस दे दें, और ऐसी हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हेलो एवरीवन, आई एम यांगजोम भूटिया फ्रॉम सिक्किम। हाय, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर उन सभी लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। एब्सोल्युटली हम सबकी प्रार्थना है आज के दिन पर तो ख़ास तौर से, और रोज़ ही अपने प्यारों को खो दिया है और जो अस्पताल में ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हें हिम्मत, ताकत, शांति और उम्मीद दे दें। यस, मेरा नाम है सुनीता शाहबादी, और जिन्होंने भी अभी पूछा है मैं उनको बता दूँ कि मेरा नाम है सुनीता शाहबादी। आप सभी के जीवन की सारी चिंताएं दूर हों और आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, सेहत हो, और एक दूसरे के लिए प्यार हो और कोई घृणा ना हो, क्रोध ना हो। बस यही इच्छा है, यही प्रार्थना है आज श्री कृष्ण जी से। और सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे मिलूंगी 8 बजे, और अभी के लिए विदा। और आप अपना ख्याल रखिए, और बहुत बहुत अच्छे से आज आप जन्माष्टमी का ये त्यौहार मनाएं, और खुशी से मनाएं, सुकून से मनाएं, और सबके साथ मनाएं, और श्री कृष्ण की बातों को हमेशा याद रखें, और आपके जीवन में उन्हें लागू ज़रूर करें, क्योंकि भगवद्गीता का जो भी ज्ञान है वही जीवन का सार है। सो आई टेक योर लीव, एंड ये बहुत प्यारा खूबसूरत सा गाना है आपके लिए बजा रही हूँ। टेक गुड केयर, बाय बाय।

0: We go. That was "Save My Love" by American producer Marshmello and English singer Ellie Goulding. There we go. Alrighty, time right now is 7:32 this Friday evening. The show is called Friday Fiesta. Don't go anywhere. We'll be right back after these messages. There we go.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
8: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
9: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
10: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: There we go. That was Illenium featuring Ryan Tedder in this track called With Your Love. And yes, time right now is 7:45, so we're going to take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने

0: की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
8: All right, it's time for me, Dev Vizit, Tarun Baba. I see you guys soon on a show called Weekender tonight at 10 p.m. Till then, take care. Bye-bye.

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के भारत मंडप में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां शुरू की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत कल नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने GSLV-F17 के माध्यम से EOS-5 के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली नगर निगम की विभिन्न समितियों के नवनियुक्त अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से मुलाकात कर दिल्ली के विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बड़गाम जिले के अशदर गली इलाके में एक आतंकी को मार गिराया। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलेनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलेनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1,282 हो गई है, 5,053 लोग लापता हैं। और वियतनाम में

पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने अब तक कुल 37 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आपको फिर से मेरा नमस्कार, आभार और जन्माष्टमी की इस महोत्सव पर आपको सबको शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके जीवन में सुकून हो, खुशियां हो, सुख हो, प्यार हो और सेहत हो। धन्यवाद। और मैं हूँ आपकी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है म्यूज़िक मस्ती, और आज तो हमारा वैसे ही डांस करने का मन है, नाचने का मन है। हम भक्ति विभोर हो गए हैं, तो इस विभोर होने में हम नाचेंगे तो ज़रूर। तो ये है प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती, मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: आए हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत।

0: वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

ऑलराइट जी, मेरे जाने का वक्त हो चला है, मैं आपसे फिर मिलूंगी. आप अपना ख्याल रखें, हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड एंड कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं सुनीता शाहवादी लेती हूँ आपसे विदा. आई सी यू द नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व. बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.

पेश है अब तक के मुख्य समाचार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से मुलाकात की। उन्होंने नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत कल नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बड़गाम जिले के अशदर गली इलाके में एक आतंकी को मार गिराया। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोना और सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1,282 हो गई है। 5,053 लोग अभी तक लापता हैं। वियतनाम

में पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने अब तक कुल 37 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। तो ये थे रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए रेनबो इंडिया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। यादों का पिटारा है तैयार, दिनों का, महीनों का, फिर बात हो सालों की तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यादों की मस्ती के साथ हाजिर है आपकी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी। जन्माष्टमी का दिन हो और कृष्ण जी का कोई सॉन्ग ना हो, ऐसा कैसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपकी जो जन्माष्टमी है ना, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मन रही होगी। और जन्माष्टमी के उत्सव में बहुत बहुत से लोग बहुत मस्ती करते हैं। भाई, दिन भी बनता है मस्ती का, क्योंकि ये पर्व है जन्माष्टमी का। तो चलिए अपने इस पर्व को और भी प्यारा बनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। सुनते रहिए रेनबो इंडिया। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आपकी याद आती रही, यादों की बात भी होगी और उसकी बारात भी निकलेगी यादों की। तो चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, क्योंकि ये गीत आज तो सुनना बनता ही है।

जहाँ आज सब आस लगाए बैठे होंगे कि कब कब हमारे नटखट जो बंसी वाले हैं कृष्ण कन्हैया का दर्शन होगा। जी हाँ, 12 बजे का सभी इंतज़ार करते हैं और ठीक 12 बजे तैयार हो जाते हैं उनके दर्शनों के लिए। कोई कोई मांगता है विद्या, कोई मांगता है धन, कोई मांगता है अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कि सब सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और सच बोलूं, जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं ना, तो ऊपर वाला हमें खुद सबसे पहले देता है और कहता है कि आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अब देखिए ना, ये तो बात सही है कि अगर किसी के पास विद्या नहीं है तो वो विद्या मांगता है, अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो वो बुद्धि मांगता है, और अगर किसी के पास धन नहीं है या फिर कम है, बहुत कम है, तो वो यही कहता है कि गिरधर गोपाल हम हैं ठनठन गोपाल। तो इसलिए हमें थोड़ा सा तो धन और चाहिए और चाहिए।

जी हाँ दोस्तों कभी कभी कोई इस तरीके से ऊपर वाले से मांगता है कि ऊपर वाला भी कहता है कि अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गया, इसको तो देना ही पड़ेगा। इसलिए आप शिद्दत से मांगिए, मिलेगा ज़रूर। चलिए आपके मैसेजेस ले लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया है सौरभ अनेजा का, गाज़ियाबाद से। वो लिखते हैं वेलकम दोस्तों, थैंक यू सो मच। और सौरभ बनीजा, आप जब मैसेज करते हैं ना तो जान लेती हूँ कि सबसे पहले मैसेज आपका ही आने वाला है। एक और मैसेज ले लेते हैं। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग जी, आरजे रेखा जी, वेलकम जी, आप जी कैसे हो जी। गीत संगीत आपकी बातचीत गीतों के साथ मधुर है जी। हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी, शुभकामनाएं जी। भाई आप इतने जी लगा देते हैं ना कि जी पढ़ते पढ़ते मैं खुद सोचती हूँ कि इतने जी भी होते हैं ज़िंदगी में। और उन्होंने कार्यक्रम के लिए बोला है कि मैं बहुत मज़े से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ और आपकी बातचीत ख़त्म ही ना हो ऐसा सोचता हूँ। तो थैंक यू सो मच। लेकिन दोस्त अगर हम बातचीत करते रहेंगे तो आपको हम दिल पर देते दस्तक गीत कैसे कैसे सुनाएंगे, है ना। एक और मैसेज मेरे पास आया है, पंकज अमरावती महाराष्ट्र, गुड इवनिंग रेखा मैडम जी, आपकी याद आती रही, बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत है और आरजे गीत हमें बहुत पसंद आ रहे हैं। हैप्पी जन्माष्टमी, थैंक यू सो मच। आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और मेरे पास मैसेज है। अब ये मैसेज जो है बड़ा अजीबो गरीब मैसेज है, उन्होंने मेरा वेलकम किया है, चौधरी साहब जी, रेखा चौधरी और राधे मैया जी, ये लिखा है, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा है, पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिखकर भेजा करिए। एक और मेरे पास मैसेज आया है, गुड इवनिंग कृष्णा, जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, कार्यक्रम शानदार चल रहा है, हम भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, नाइस प्रेजेंटेशन कृष्ण, वंजुनी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं। मेरे पास और भी मैसेजेस हैं लेकिन किंतु परंतु हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेने की सोच रही हूँ। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और बहुत जल्द लौटते हैं आपके साथ, आपके पास, बने रहिए हमारे साथ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

ये भी खाली खाली सा लगता है और इसको भरने के लिए कोई तो साथ होना जरूरी है, है ना। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही, और यादों का पिटारा लिए आपके साथ है आपकी दोस्त रेखा चौधरी।

जी हाँ दोस्तों, आपके मैसेजेस लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। वो लिखते हैं, आदरणीय आरसी रेखा चौधरी जी, सादर प्रणाम। हमारी ओर से आपको और एफएम रेनबो परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपकी मधुर वाणी, मोहक प्रस्तुति, मन भावन गीत, मस्त कार्यक्रम। मन से बधाई, बड़ी वाली बधाई, मंगलमय हो आपकी संध्या और जीवन, कोटि कोटि धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, हेलो नमस्कार, मेरठ से वीरू प्रकाश, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप बहुत दिनों के बाद आई हैं। हाँ दोस्त, कुछ दिन के बाद तो आई हूँ, लेकिन जब किसी का इंतज़ार होता है ना, और जब किसी की बातें अच्छी लगती हैं, तो ऐसे ही लगता है कि अगर 2-4-6 दिन भी बीत गए और उसके बाद कोई आया, तो लगता है कि 2-4 दिन नहीं, 10-20 दिन बीत गए हैं। ऐसा ही है आप सबके साथ और मेरे साथ। एक और मेरे पास मैसेज आया है जर्मनी से, जय श्री कृष्णा रेखा जी, सन्नी कपूर का। तो देखिए ना, अब इतनी दूर बैठे भी हमें वो सुन रहे हैं। और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि अब ऐप के ज़रिए आप हमें कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। एक और मैसेज ले लेते हैं, काशगंज से मास्टर राधेश्याम जी लिखते हैं, गुड इवनिंग आरसी जी, आकाशवाणी की पूरी टीम और समस्त श्रोताओं को जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेजेंटेशन उनको बहुत अच्छी लग रही है और गीत भी बहुत पसंद आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। चलिए चलते चलते एक और हम ले लेते हैं मैसेज, और ये मैसेज आया है शर्मा जी का। शर्मा जी लिखते हैं कि मेरा पिछली बार आपने मैसेज नहीं पढ़ा था, तो दोस्त ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने पढ़ा ना हो। हाँ, अगर मैंने इस वाले प्रोग्राम में आपका मैसेज ना पढ़ा होगा, तो फिर मैंने 11 बजे वाले प्रोग्राम में तो ज़रूर पढ़ा होगा। और आपने आगे शिकायत भी लिखती है, तो चलिए आपकी शिकायतें भी सराखों पर। अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि इतना प्यारा मौसम हो रखा है कि बस

बस जी चाहता है इस मौसम को इंजॉय करते रहें और यूं ही रात बीत जाए। और 12 बजे तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। जी हाँ, दर्शन करने के लिए बेताब हो रहे होंगे बहुत बहुत ज़्यादा आप सब। और इस बेताबी को मैं समझ रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं लफ्ज़ों के ज़रिए बयां नहीं कर पाते हैं लेकिन समझ में आती हैं। तो मैं अच्छी तरह से आपके मैसेजेस के ज़रिए आपके दिल का हाल समझ सकती हूँ। जी हाँ, मौसम इतना प्यारा है, बारिश हो रही है और देखिए ना, सुबह तो खिली खिली धूप थी और फिर अचानक से इतनी प्यारी बारिश हुई कि अब तक रिमझिम बरसात चल ही रही है। तो ऐसे में अगर एक और प्यारा सा सॉन्ग हो जाए फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में तो कितना अच्छा हो, है ना। तो चलिए आपके मैसेजेस भी लेंगे और आपको और गीत भी सुनाएंगे जो दिल पर देंगे खास दस्तक। फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

एक और मेरे पास मैसेज आया है दोस्तों, वो शायद बहुत दूर से आया है, कहाँ से लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो वो लिखते हैं कि रेखा मैडम जी, आपको हैप्पी जन्माष्टमी, श्री कृष्ण गोकुल अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम वो सुन रहे हैं, बोल हरि बोल ये सॉन्ग उन्हें बहुत पसंद आया और प्रोग्राम सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और आप रेडियो मित्रों को सभी को नमस्कार लिखते हैं, राजेश खोबर खेड़े, शिव सागर खोबर खेड़े, इंदिरा ताई खोबर खेड़े और खोबर खेड़े परिवार पूरा हमारा जो प्रोग्राम है वो सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्त, अगर आपने लिख दिया होता कि कहाँ से लिख रहे हैं तो मैं उसे ऑन एयर जरूर करती। नमस्कार रेखा मैम, शुभ जन्माष्टमी। और वो लिखते हैं कि आगे बहुत बड़ा मैसेज लिख दिया इन्होंने तो भाई। और ये मैसेज मेरे पास आया है तुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से, उन्हें भी हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और उन्होंने बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्त, और आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों बात हो रही थी यादों की, यादों के सफ़र की। बात तो सही है कि यादों का पिटारा किसी के लिए नदी के मीठे पानी सा होता है तो किसी के लिए समंदर के खारे पानी सा। कोई इसे जी का जंजाल मानता है तो कोई इसे खूबसूरत पलों का खजाना मानता है। लेकिन किंतु परंतु अगर कुछ चीज सिमिलर है या एक जैसी है तो सोचिए क्या। मैं बताती हूं, इनमें तो एक ही चीज सिमिलर नजर आती है या एक जैसी नजर आती है, वो है यादें। देखने सुनने या महसूस करने का नजरिया भले ही सबका अलग अलग हो पर यादें यादें तो यादें हैं दोस्तों। जिनका जिक्र ना हो हर इंसान की जिंदगी में, ऐसा कैसे कैसे हो सकता है ना। हाँ वो अलग बात है। अब आप अपनी जिंदगी में या यादों के सफर में किस चीज को ज्यादा पकड़ते हैं वो आपके हाथ में है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ आपके पास।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों मेरा ये मानना है कि सफ़र मतलब यादों का सफ़र कैसा भी रहा हो, लेकिन दिल की किताब में उन्हीं पन्नों को जोड़ने की कोशिश करिए जिन पन्नों में खुशियों और मुस्कुराहटों का जिक्र हुआ हो। जानती हूँ कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल, पर कोशिश करने वालों की अक्सर जीत हो जाया करती है दोस्तों। और ये यादों का सफ़र ना जितना मीठा मीठा प्यारा प्यारा रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मीठी चीज़ें हम अगर खाते रहेंगे तो फिर ज़्यादा मिठास नहीं हो जाएगी। इसलिए यादों के सफ़र में कुछ खट्टा मीठापन होना बेहद ज़रूरी है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल दिल्ली और एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन सकते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और ऐप के ज़रिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपको सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, ये सॉन्ग जो है ना, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा।

मैं जब से इस मैसेज को पढ़ रही हूं तभी से मुझे हंसी आ रही है और मैं चाहती हूं कि आप भी जरूर हंसें। एक मेरे पास मैसेज आया, अब इन्होंने लिखा नहीं है कि कहाँ से भेजा है और किसने भेजा है, लेकिन ये मैसेज मैं आपको पढ़कर जरूर सुनाना चाहती हूँ। वो लिखते हैं, मैडम जी, मैं तो किसी का जन्मदिन मनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिसके भी जन्मदिन में शामिल होता हूँ उसके जो उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है या किसी संकट में आ जाता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे भगवान संकट में आ जाए और मुझ पर गुस्सा करें। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और दोस्त आपको मैंने सभी को बोल रखा है कि अपना नाम जरूर लिखकर भेजा करिए, तो वो तो लिखा ही नहीं है आपने। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, चलिए उसको भी ले लेते हैं। थोड़ा देर से शामिल हुए हैं ये। आदाब जी, आज काफ़ी देर से हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है जी। गीत तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त, बहुत ही पसंद आया। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान पूरी फैमिली के साथ हमें सुन रहे हैं। और जिस मैसेज की मैं बात कर रही थी, राजेश खोबर खेड़े के जो मैसेज थे वो वाकई दूर से आए हैं, और ये आए हैं वडाली देशमुख महाराष्ट्र से। और एक और मेरे पास मैसेज है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। तो दोस्तों, अगर आप अपना नाम लिखकर नहीं भेजेंगे तो मैं आपका मैसेज कोई भी ऑन एयर नहीं करूंगी। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मेरे जहन में आ रहा है, चलिए सुनते हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, टिक टिक करती घड़ी दिल की धड़कनों को बढ़ा रही है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक 11 बजे हमारी और आपकी मुलाकात जरूर होगी। हाँ, प्रोग्राम बदल जाएगा, प्रोग्राम का नाम बदल जाएगा, लेकिन आप और हम तो वही रहेंगे गजलों के प्रोग्राम में। तो फिलहाल छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। सुनते रहिए FM रेनबो इंडिया, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।

लगता है ये गीत अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये भी नाराज हो गया कि अब आप आने ही वाली हैं, यानी कि जाने के लिए आना, और आने के लिए जाना बहुत जरूरी है। तो फिर आपको यही कहूंगी कि सुनते रहिए FM रेनबो इंडिया, दिल से दिल तक।

0: There we go. From their smash hit album Hysteria, that was the English rock band Def Leppard with their amazing track Armageddon, which was also a smash hit when it came out with the album. Alrighty, time right now is 10:32 this Friday evening. We're going to take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: From their 13th studio album, Pure Instinct, that was the German rock band Scorpions with their smash hit number, You and I. There we go. Hope you guys enjoyed that track over there. Time right now is 10:43 this Friday evening, and we're going to take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ ऐसे दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ।

0: इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

फिलहाल वक्त हुआ है रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का, तो सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता हैं। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने के बाढ़ की स्थिति गंभीर हो चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से मुलाकात की। उन्होंने नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा भी की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत कल नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ करने की चर्चा की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बड़गाम जिले के अशदर गली इलाके में एक आतंकी को मार गिराया है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1,282 हो गई है। 5,053 लोग अभी भी लापता हैं। वियतनाम में पिकबॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने अब तक कुल 37 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो ये थे रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है रंगे महफिल में। वादा किया था तो कैसे ना आती आपकी ये दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी। दोस्तों, कभी कभी हाले दिल जुबां के जरिए बयां कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना अच्छा हो ना अगर आंखों को पढ़ने वाला कोई ऐसा हो जो हर बात समझ जाए बिन कहे बिन सुने। पर ऐसे दोस्त, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हाले दिल आंखों के जरिए समझ जाया करते हैं। खैर, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ। और ये आवाज़ आप जानते ही हैं, दिल के सबके करीब है, मेरे भी।

जी दोस्तों, आपके मैसेजेस लगातार मेरे पास पहुंच रहे हैं, लेकिन सोच रही हूँ एक और गज़ल या गीत हो जाए उसके बाद पढ़े जाए, क्या कहते हैं आप? जी हाँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ, ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हर कदम पर सवाल करता चल, हर कदम पर सवाल करता चल, पांव अपने गुलाल करता चल, पांव अपने गुलाल करता चल, खुशनुमा दौर यूं ही नहीं आते, तू रंगों में, जी हाँ, गुलाल भरता चल, तू रंगों में गुलाल भरता चल। सही कहा है दोस्तों किसी ने कि हर चीज़ पाना आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन मंजिल को पाने के लिए जब आप दिल से जद्दोजहद करते हैं और एक जुनून पैदा करते हैं अपने अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि मंजिल पाना आपके लिए नामुमकिन हो, क्योंकि कुछ चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती हैं, लेकिन नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि ज़िंदगी में जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं और उसको पाने की पूरी तरह से शिद्दत से कोशिश करते हैं, तो हाँ, देर ज़रूर हो सकती है मंजिल पाने में, लेकिन किंतु परंतु वो मंजिल आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, और रंगे महफिल के सफ़र में आप हैं इस वक्त अपनी दोस्त रेखा चौधरी के साथ। एक और प्यारी सी आवाज़ आपके कानों के ज़रिए दिल में उतरेगी, जी हाँ, दस्तक भी बेहिसाब देगी।

खूब मीठी हो जुबा तय ये शक होता है। खूब मीठी हो जुबा तय ये शक होता है कि ये मोहब्बत है या फिर सिर्फ और सिर्फ लब कुशाई है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वेलकम बैक दोस्तों। कितना अच्छा होता ना जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं या कोई भी मंजिल पाने की सोचते हैं। अब हमारा स्कूल, कॉलेज, ऑफिस अगर घर के बहुत ही पास हो तो कितना अच्छा हो, है ना, या फिर थोड़ी सी ही दूरी पर, वॉकिंग डिस्टेंस। तो ये सोच सोच कर कितना अच्छा लगता है लगता है ज़िंदगी में और नए रंग जुड़ गए हैं, क्योंकि बहुत दूर जाने की, आने की जद्दोजहद से हम बच जाते कभी कभी। लेकिन किंतु परंतु ऐसा कई लोगों की ज़िंदगी में हो जाता है कि बस घर से निकले और मंजिल मंजिल देख ली

कमाल है दोस्तों, ठीक है मैंने कहा था कि छोटे से छोटा मैसेज भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में ये भी कहा था कम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें और ऐसे शब्द आप लिखें जो कम शब्दों में भी समझ में आपके दिल की बात मुझे आ सके। अब इतना छोटा मैसेज भी नहीं लिखने के लिए बोला था कि सिर्फ आप हाय या हेलो लिखें और अपना नाम तक आपने मेंशन नहीं किया, तो सिर्फ हाय हेलो लिखना क्यों लिखना, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो दोस्तों फिर से यही कहूँगी कि ठीक है मैंने कहा है कम शब्दों का, लेकिन एक या दो शब्द भी नहीं कि बिल्कुल ही हाय हेलो गुड इवनिंग या गुड नाइट, भाई ऐसे मैसेजेस बिल्कुल भी ना करें प्लीज़। और एक और मेरे पास मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। वो लिखते हैं रेस्पेक्टेड रेखा चौधरी जी, वेरी हैप्पी हेल्दी फ्राइडे, गुड इवनिंग गुड नाइट, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम, वेरी गुड। देखिए ऐसे लिखते हैं, कितना प्यारा सा मैसेज लिख दिया, कितनी

सारी ब्लेसिंग्स दे दी और गुड नाइट भी लिख दिया, गॉड ब्लेस भी लिख दिया, और आगे लिखती हैं गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक्स अगेन भी लिखा। अब कब शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। थैंक यू मैम, प्लीज सेंड माय मैसेज टू माय हार्ट। आकाश, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आकाश जी का भी आज बर्थडे है, तो भाई हमारी तरफ से और पूरी पूरी रेनबो इंडिया टीम की तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है आपका मैसेज अब तक उन तक पहुंच गया हो। तुम्बा पॉल रेलवे कॉलोनी से लिखती हैं, न्यू दिल्ली से। एक और मेरे पास मैसेज है, लेकिन देखिए ना अब इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। तो आप क्या चाहते हैं दोस्तों, कि मुझे गुस्सा है? वैसे आप जानते हैं कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आता नहीं है। एक और मेरे पास मैसेज आया अभी अभी, मैं आपका शो पहली बार सुन रहा हूँ, अच्छा शो है आपका, क्या ये डेली आता है? राहुल लिखते हैं दिल्ली से। ये बात हुई ना, अभी देखिए आपने पूरा किया अपना मैसेज। तो राहुल मैं आपसे यही कहूँगी कि हाँ ये शो डेली आता है, लेकिन प्रेजेंटर्स बदल जाते हैं, लेकिन शो डेली आता है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, भाई इनकी नाराज़गी तो लगता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। देखिए आपकी नाराज़गी ज़्यादा बढ़े उससे पहले मैं व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, जिस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। जी हाँ, मैसेज आप भेजिए, कम शब्दों में भेजिए, 9868107070 पर। एक बार फिर से मैसेज के लिए मैं बता देती हूँ, 9868107070, क्योंकि ये जो हमारे लिसनर हैं ये बोल रहे हैं कि आप कभी भी व्हाट्सएप नंबर नहीं बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए लिसनर्स भी हमारे शो में जुड़ते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपकी नाराज़गी दूर हो गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। यूं तो हमारे बात करने का अंदाज बता देता है कि आज हमारा मिजाज कैसा है, पर दोस्तों हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मुस्कुराहट के पीछे न जाने कितने जख्म छिपाए बैठे हैं। और उन दोस्तों से मेरा यही कहना है कि जख्मों को छिपाना अच्छी बात है, पर कुछ समय के लिए। फिर कह डालिए हाले दिल अपने किसी अजीज से, क्योंकि दिल दिमाग जितना हल्का होगा उतना ही ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे आप।

जी दोस्तों, कभी कभी जब हम अपने घर से बहुत दूर होते हैं तो फिर हम अपने घरों को, अपने परिवार को या फिर अपने रिश्तेदारों को बहुत मिस करते हैं, या फिर अपने देश से जब हम दूर होते हैं तो देश के रंगों को भी बहुत मिस करते हैं। मेरे पास ऐसा ही एक मैसेज आया है जर्मनी से। वो लिखते हैं, नमस्कार रेखा जी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिसिंग द सेलिब्रेशन वाइब्स हियर बट एंजॉयिंग विद रेनबो, थैंक्स ईला एंड सौरभ, लिखते हैं। तो भाई, आप हमें इंजॉय कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप यहीं पर हैं, और हमारी तरफ से भी आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखिए ना, सेलिब्रेशन तो मेरे साथ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आप ही के साथ वक्त तो बिता रही हूँ। तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को। एक और मेरे पास मैसेज जो आया है, वो लिखते हैं, डियर मैडम, मैं माय नेम इज़ कविश फ्रॉम मोदी नगर, योर वॉइस इज़ सो स्वीट, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज मेरे पास आया है, हेलो मैम, गुड इवनिंग, इट्स रेनिंग। अच्छा, तो वो लिख रहे हैं कि उनके बिहार में बहुत बारिश हो रही है, और रिचा और अनुराग बोलते हैं कि

0: हम इसे इंजॉय कर रहे हैं। जहनाबाद बिहार से लिखते हैं वो। एक और मैसेज मेरे पास आया है, मैडम प्लीज़ हो सके तो एक सॉन्ग सर मूवी का सॉन्ग हमें सुनवा दीजिए। तो दोस्त लगता है आपने हमें पहली बार सुना है और ये
1: वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और एनसीआर में और पूरे भारत में आप हमें सुन सकते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और अब ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। जी हाँ, देश में भी और विदेश में भी आपके मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। पढ़ती हूँ इस प्यारी सी आवाज के बाद।

0: जी दोस्तों, एक मेरे पास मैसेज आया है विशाल का ग्रेटर नोएडा से। वो लिखते हैं, नमस्ते, आपका शो के दौरान हिंदी और अंग्रेजी के बीच बीच में उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच विशाल जी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ये तो शर्मा जी का मैसेज आ गया है। वो लिखते हैं कि ये तो सच है, तुम्हारी आवाज़ है रसगुल्ला, रसगुल्ले से भी मीठी, रसगुल्ला खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शर्मा जी, अगर रसगुल्ले आपके पास ज़्यादा हैं तो भेज दीजिए, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं और आप सिर्फ आवाज़ से काम चला लीजिए। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, आरजे आरसी जी, मैं अपने देश की सरजमी से आई आवाज़ को सुन रहा हूँ, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। सऊदी अरब रियाद से फैजी फारूक लिखते हैं हमें ये मैसेज। एक और मेरे पास मैसेज आया है, लेकिन किंतु परंतु उन्होंने कुछ इमोजीज भेजने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस आ सकते हैं, टाइप करके आप भेज सकते हैं। थोड़ा सा कष्ट अपनी उंगलियों को देना पड़ेगा बस, फिर क्या है, हमारे पास, हम तक पहुँच जाएंगे आपके मैसेजेस। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यहाँ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। परसों फिर मुलाकात होगी, यानी कि 6 तारीख को फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त RC यानी रेखा चौधरी को इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रेनबो इंडिया सुनते रहिए। गुड नाइट, शब खैर।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर से मुलाकात की। उन्होंने नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां शुरू की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल बड़गाम जिले के अक्षतर गली में एक आतंकी को मार गिराया। गोवा सरकार ने आज से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू कर रही है। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1,282 हो गई है और 5,053 लोग लापता हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए का मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। और वियतनाम में पिकलबॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने अब तक कुल 37 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम द जीरो आर शो। जीरो आर शो की शुरुआत हम करते हैं कुछ ऐसे गीतों से जिनमें आज कान्हा के जन्म की झलक हमको मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कान्हा जी के जन्म की। तो आइए मनाते हैं हम सब मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी आकाशवाणी रेनबो से।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित

0: कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, रात्रि के 1 बजे हैं। FM रेनबो से प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देशभर में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। श्री शाह ने रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से मुलाकात की। उन्होंने नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां शुरू की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली UGC नेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल बडगाम जिले में अशदर गली इलाके में एक आतंकी को मार गिराया। गोवा सरकार आज से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1,282 हो गई है। 5,053 लोग लापता हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 का ग्रुप ए का मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। पिकलबॉल वर्ल्ड कप में भारत ने वियतनाम के डानांग में दूसरे दिन लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, रात्रि के 2 बजे हैं। एफएम रेनबो से प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट द वेवर से मुलाकात की। उन्होंने नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां

शुरू की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल बडगाम जिले के अश्तर गली इलाके में एक आतंकी को मार गिराया। गोवा सरकार आज से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1,282 हो गई, 5,053 लोग लापता हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए का मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। पिकलबॉल वर्ल्ड कप में भारत ने वियतनाम के डानांग में दूसरे दिन लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हाजिर हैं हम लेकर वो नगमे जो भुलाए ना बने।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का, जा जा जा, जा।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

नमस्कार, प्रस्तुत है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज वारसा में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड राजनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों की निगरानी के लिए समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने अपने ई नाविक पोर्टल पर एक सी फेयरर ट्रैकिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां शुरू की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली UGC नेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक Form 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए का मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। पिकलबॉल वर्ल्ड कप में भारत ने वियतनाम के डानांग में दूसरे दिन लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों की निगरानी के लिए समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने अपने ई नाविक पोर्टल पर एक सी फेयरर ट्रैकिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां शुरू की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली UGC नेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अमेरिका ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत तुर्की के एक फाइनेंशियल संस्थान और उसकी 2 सब्सिडियरी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के एक ड्रोन हमले के जरिए मध्य कीव में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए का मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। पिकलबॉल वर्ल्ड कप में भारत ने वियतनाम के डानांग में दूसरे दिन लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वे कल गृह मंत्रालय के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने अपने ई नाविक पोर्टल पर एक सी फेयरर ट्रैकिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गंगा, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ा। महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। पिकलबॉल वर्ल्ड कप में भारत ने वियतनाम के डा नांग में दूसरे दिन लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल्स में पहुंच गई है। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,